एफएमएन 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 जुलाई सन 2026 सवेरे के ठीक 5:57 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स सीईओई और आईसीईएक्स स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।

0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी अलवर के इसका चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।
2: ये कथन है कि कभी भी किसी से ईर्ष्या न करें, क्रोध न करें, वरना मन हमेशा अशांत ही रहेगा। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है वही दुखों से मुक्त हो सकता है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। झरोखा के ठीक बात यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान भाग 248। 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार हैं गायिका विदुषी आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला की आज पहली कड़ी आप सुनेंगे और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। सुबह 7 कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर कार्यक्रम होगा त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। सुबह 10 पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सुनिए रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का 4th। सुबह 11 कार्यक्रम रंग तरंग। दिन में 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल और दिन में 1 का समय है सुरीला सफर इस कार्यक्रम का। दिन में 2 कार्यक्रम त्रिवेणी 2:30 पर सदाबहार नगमे। दिन में 3 आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा कार्यक्रम सुनिए प्रोस्टेट और अन्य बीमारियां इस विषय पर डॉक्टर उमेश ओझा से ममता सिंह की बातचीत का 1। शाम 5 कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

शाम 7 बजे का समय है जयमाला कार्यक्रम का। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से कार्यक्रम। रात 8 बजे कार्यक्रम हवा महल। रात 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम और रात 9 बजे का समय है कार्यक्रम आपके लिए का। रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता

प्राण पर। रात 10 बजे कार्यक्रम छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात ये कार्यक्रम। रात 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान भाग 248।

आराध्य से मनचाहा वरदान प्राप्त कर मुनि सुतीक्ष्ण की साध पूरी हुई। प्रभु की इच्छा के अनुसार तब वो उन्हें अपने गुरु अगस्त्य मुनि के आश्रम ले चले। श्री राम लक्ष्मण सीता का आगमन सुन अगस्त्य मुनि उनके दर्शनों को दौड़े। नाना प्रकार से श्री राम की पूजा वंदना करने हेतु जब उन्हें आसन पर बिठाया तो मुनियों का समूह प्रभु दर्शन के लिए एकत्र हो गया। पूरी ऋषि मंडली में श्री राम इस मुद्रा में बैठे हैं कि प्रत्येक उपस्थित जन को वो अपनी ही ओर देखते दिखाई देते हैं। श्री राम ने अगस्त्य मुनि को वहां अपने आगमन का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मुझे ऋषि मुनि द्रोही राक्षसों के विनाश का उपाय बताएं। अगस्त्य मुनि ने श्री राम से दंडक वन में पंचवटी जाकर गौतम मुनि के कठोर शाप का दमन करने की प्रार्थना की।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 248। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संगीत सरिता। आज से हम आरंभ कर रहे हैं संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला। इसे प्रस्तुत कर रही हैं मशहूर गायिका आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला के अंतर्गत आप सुनेंगे सांध्यकालीन संधि प्रकाश रागों का परिचय। तो आइए पहली कड़ी सुनते हैं, राग है पूरिया धनाश्री।
1: संगीत सरिता सुनने वाले श्रोताओं को मेरा बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको संधि प्रकाश रागों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हिंदुस्तानी रागों के गाने के समय के अनुसार देखा जाए तो हम तीन वर्ग बना सकते हैं। पहला है जिसमें कोमल ऋषभ और कोमल धैवत हो, दूसरा वर्ग जिसमें शुद्ध ऋखभ और शुद्ध धैवत हो, और तीसरा जिसमें कोमल गंधार और कोमल निषाद। आज मैं आपको संधि प्रकाश रागों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। संधि प्रकाश ये समय दिन में दो बार आता है। रात समाप्त होने के बाद जब दिन शुरू होता है उस समय, और जब दिन समाप्त होकर रात शुरू होती है तब। तो ये जो दोनों समय है इनको संधि प्रकाश कहते हैं, और इन समयों पर जो भी राग गाए जाते हैं उनको संधि प्रकाश राग कहा जाता है। हिंदुस्तानी रागों का हम तीन वर्गों में वर्गीकरण कर सकते हैं, उनके गायन के समय अनुसार या उनमें जो स्वर आते हैं उनको उनके अनुसार। ये तीन वर्ग हैं। पहला है जिसमें कोमल ऋषभ और कोमल धैवत है, दूसरा है जिसमें शुद्ध ऋषभ और शुद्ध धैवत है, तीसरा है जिसमें कोमल गंधार और कोमल निषाद। इसमें जो पहला वर्ग है जिसमें कोमल ऋखभ और कोमल धैवत, ये राग सारे संधि प्रकाश रागों में आते हैं, और इन रागों को संधि प्रकाश राग कहा जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें गंधार शुद्ध ही होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि ये संधि प्रकाश का समय दो बार आता है, एक जब रात खत्म होके दिन शुरू होता है और दिन खत्म होके रात जब आती है। और मैं आपको जब दिन खत्म होके रात शुरू होती है उस वक्त जो संधि प्रकाश राग गाए जाएंगे उनके बारे में जानकारी देना चाहूंगी। इन रागों में पूर्वी, पूरिया धनाश्री, मारवा और श्री ये प्रमुख राग हैं, और इनमें जैसा मैंने कहा कि ऋखभ और धैवत कोमल होता है और मध्यम तीव्र होता है। आज मैं आपको इन रागों में से पूरिया धनाश्री उसके बारे में कुछ बताऊंगी। इसमें ऋखभ और धैवत कोमल मध्यम तीव्र है, अन्य सारे स्वर जो हैं शुद्ध हैं, इसमें वर्जित स्वर कोई भी नहीं है। इसकी जाति संपूर्ण है क्योंकि इसके आरोह और अवरोह में सातों स्वरों का उपयोग होता है। इसका वादी स्वर है पंचम और संवादी स्वर है षड्ज। गाने का समय जैसा मैंने बताया तो उसका असर बहुत अच्छा हो सकता है। इसका आरोह अवरोह मैं आपको अभी थोड़ा सा गा के सुनाती हूँ।

मैं पुरिया धनाश्री का आपको थोड़ा सा चलन बता दूं। इसका कारण ये है कि ये संधि प्रकाश रागों में पुरिया धनाश्री, श्री या पूर्वी, इनके स्वर काफी मिलते जुलते हैं। श्री और पुरिया धनाश्री के तो स्वर एक ही हैं, लेकिन उनका आना जाना, स्वरों का आना जाना जो है वो अलग करने की वजह से रागों को अलग आइडेंटिटी मिलती है। हमारा हिंदुस्तानी संगीत इस तरह से बनाया है, बड़ी ताज्जुब की बात है कि वही सब तक है, लेकिन रागों का चलन ऐसा बुजुर्गों ने रखा है कि अलग अलग शक्ल बना देता है राग अपनी। तो पुरिया धनाश्री के स्वर और श्री के स्वर एक होते हुए भी देखिए पुरिया धनाश्री का चलन कैसा है।

अब मैं आपको राग पूर्या धनाश्री सुनाने जा रही हूँ। बंदिश जो है ताल तीन ताल में है। मुश्किल करो आसान ख्वाजा मोरे,

अब हम आपको सुनवा रहे हैं राग पूरिया धनाश्री में एक रचना उस्ताद अमीर खां की आवाज में। इसे हमने लिया है फिल्म बैजू बावरा से।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत ये थी सायंकालीन संधि प्रकाश रागों की चर्चा की पहली कड़ी। राग था पूरिया धनाश्री। तबला संगति ओमकार गुलवाड़ी की थी और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सुधीर नायक।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत सरिता।

FM 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार अलवर।

नमस्कार अलवर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे भारत की सृजनात्मक अर्थव्यवस्था के बारे में, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओ, आज हम बात करेंगे भारत की सृजनात्मक अर्थव्यवस्था के बारे में। भारत अपनी समृद्ध संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत, हस्तशिल्प, सिनेमा और परंपराओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन सभी रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ी आर्थिक व्यवस्था को सृजनात्मक अर्थव्यवस्था कहा जाता है, यानी कि क्रिएटिव इकोनॉमी। इसमें ऐसे उद्योग और व्यवसाय शामिल होते हैं जो मानव की प्रतिभा, कल्पना शक्ति, नवाचार और बौद्धिक संपदा के आधार पर आय और रोजगार का सृजन करते हैं। आज के समय में भारत की सृजनात्मक अर्थव्यवस्था देश की आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और वैश्विक पहचान को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। श्रोताओं, सृजनात्मक अर्थव्यवस्था वह आर्थिक व्यवस्था है जिसमें कला, संस्कृति, डिजाइन, संगीत, फिल्म, साहित्य, फैशन, डिजिटल मीडिया, एनिमेशन, गेमिंग, विज्ञापन, वास्तुकला, हस्तशिल्प तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के माध्यम से नए विचारों और रचनात्मकता को आर्थिक मूल्य में बदला जाता है। आज भारत की सृजनात्मक अर्थव्यवस्था यानी क्रिएटर इकोनॉमी और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज वर्तमान में लगभग 3,00,000 करोड़ से अधिक की है। यह देश के सकल मूल्यवर्धन में लगभग 20% का योगदान देती है और कुल कार्यबल के लगभग 8% को रोजगार प्रदान करती है। श्रोताओं, ऑरेंज इकोनॉमी भी इसे कहा जाता है। कार्यक्रम में हम बातें और भी करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक और गीत सुनने का। तो लीजिए सुनते हैं ये गीत।

आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भारत की सृजनात्मक अर्थव्यवस्था के बारे में। श्रोताओं, आज भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था तेजी से फल फूल रही है, जिसे ऑरेंज इकोनॉमी भी कहा जाता है। भारत की सृजनात्मक अर्थव्यवस्था के बहुत से क्षेत्र हैं, जैसे कि हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग। भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग विश्व भर में लोकप्रिय हैं। इसी प्रकार फिल्म और मनोरंजन उद्योग, भारतीय फिल्म उद्योग विश्व के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक है। संगीत और नृत्य भारतीय शास्त्रीय एवं लोक संगीत तथा नृत्य हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। फैशन और डिजाइन उद्योग, भारतीय परिधान आभूषण और डिजाइंस विश्व स्तर पर पहचान बना रहे हैं। ठीक इसी प्रकार साहित्य और प्रकाशन, जिसमें पुस्तकें, ई पुस्तकें और डिजिटल सामग्री ज्ञान के साथ साथ आर्थिक विकास में भी योगदान दे रही हैं। इसके अलावा डिजिटल मीडिया और एनिमेशन आदि से भी ये भी काफी आगे बढ़ चुके हैं। सोशल मीडिया, गेमिंग, एनिमेशन और कंटेंट निर्माण के क्षेत्र में आज तेजी से विकास हो रहा है। आज ऑरेंज इकोनॉमी के अंतर्गत डिजिटल क्रिएटर और सोशल मीडिया का चलन काफी बढ़ चुका है। भारत में 2.5 से 3.5 मिलियन तक कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिसमें ब्यूटी, फैशन, टेक्नोलॉजी रिव्यू और ट्रैवल व्लॉगिंग जैसे सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले क्षेत्र हैं। साथ ही मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में भी काफी तेजी आई है, जिसमें फिल्म, संगीत, डिजिटल मीडिया और ओटीटी शामिल है, जिनकी बाजार हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। श्रोताओं, ओटीटी मतलब अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार आदि ओटीटी प्लेटफॉर्म से है, जहां पर हम फिल्में, सीरीज आदि देखते हैं। इसके अलावा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, ये क्षेत्र भी काफ़ी तेजी से स्केल कर रहा है। यहाँ गेमिंग उद्योग का आकार ही 230 बिलियन से अधिक हो गया है। श्रोताओं, सृजनात्मक अर्थव्यवस्था का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। इसी के कारण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा

होते हैं, देश की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और प्रचार होता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलता है, साथ ही भारत की वैश्विक पहचान मजबूत होती है। कार्यक्रम में अब सुनते हैं एक और गीत।

श्रोताओं, भारत की सृजनात्मक अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार ने भी इसका समर्थन करते हुए कुछ सरकारी पहल की है, जैसे कि भारतीय रचनाकारों को वैश्विक मंच देने के लिए वेब्स यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट की शुरुआत की गई, जिसमें रचनाकारों के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए का कारोबार जुटाया है। इसके अलावा रचनात्मक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जा

रहा है। साथ ही साथ मंत्रालय स्तर पर भी पहल की गई है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक रचनात्मक अर्थव्यवस्था यानी क्रिएटिव इकोनॉमी वर्टिकल बनाया गया है ताकि कारीगरों और कलाकारों को बाजार से जोड़ा जा सके और उनके बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी कॉपीराइट्स की रक्षा की जा सके। यह एक कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति को उसकी कृति पर उसकी मूल रचना पर मिलता है।

0: पॉकेट खोलो खिलौने ले लो, पॉकेट खोलो खोलो खिलौने ले लो।
1: शुद्ध भारत की सृजनात्मक अर्थव्यवस्था केवल आर्थिक विकास का माध्यम नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और नवाचार की शक्ति का भी प्रतीक है। यदि कलाकारों, डिजाइनरों, लेखकों, कारीगरों और डिजिटल रचनाकारों को उचित अवसर, संसाधन और बाजार उपलब्ध कराया जाए तो भारत वैश्विक सृजनात्मक अर्थव्यवस्था में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम सभी को सृजनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि विकसित भारत के निर्माण में सृजनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में अब चलते चलते सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। हम आकाशवाणी अलवर के सरस्का चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

गोपी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाज में लगान फिल्म से।

0: अंकुश फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना पुष्पा पगधारे और सुषमा श्रेष्ठा की आवाज में। अगला गीत सुनने से पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

बैजू बावरा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज़ में। लीजिए सुनते हैं गाइड फिल्म से ये गीत एसडी बर्मन की आवाज़ से।

0: बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
3: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिस कर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
4: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

रफ्तार फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ में। इसी गीत के साथ हमारा फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री देहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: भोपाल में आज MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल

0: मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, 1 लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी अलवर के इस इसका चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के ठीक 8:15 हो रहे हैं। लीजिए पेश है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे जगजीत सिंह की गाई गजलें।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये भजन।

श्रोताओं, अभी आपने ये भजन सुनी लता मंगेशकर की आवाज़ में। इसी के साथ हमारा सुगम संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। लीजिए, प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहर। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजा जी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
0: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
2: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था। इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
0: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एन आर प्रसाद जी और अखिला जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
2: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षा प्रद, प्रेरणा प्रद और ज्ञान वर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
2: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाए तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी
0: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
2: श्रोताओं इसका जवाब जान लेते हैं। मातृ वृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
0: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
2: जी इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
0: जी अश्वता, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
2: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
0: जी तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कंगारू के कितने पैर होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन दीजिए।
2: कंगारू के कितने पैर होते हैं।
0: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।

0: इंस्टा, फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: अरे भागो भागो, वो देखो हमारे आगे पशु पक्षी का क्या हुआ,
3: हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा। अरे
4: हो गई है
2: क्या, हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे फसल बर्बाद,
4: फसल बह गई।
5: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी, नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
6: लो भाई पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
4: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत। आहा,
6: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। आहा, कितना साफ पानी है।
5: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
6: अरे काट काट काट, अरे मेरा भाई क्या देख रहा, काट।
7: अरे मैंने आज सब पेड़ काट डाले।
5: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा

0: अगवा महसूस कर रही थी।
1: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
2: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
3: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं
4: और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते
4: उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
5: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
6: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
7: हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा,
4: लगता है नदी प्रदूषित हो गई है।
5: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे
4: फसल बह गई।
7: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा, सारा सामान
4: जल्दी
7: ऊपर ले जाना होगा।
4: चलो जल्दी,
7: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी चलो
4: चलो चलो,
7: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
4: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
8: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
9: अभी आप सुन रहे हैं

थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहाँ निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यही तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती,
2: अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
2: किन्दौरी।
3: हाँ चाची।
2: और
1: हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी,
4: अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है।
3: आ रही हूँ चाची।
2: हाँ चाची।
5: क्या है चाची?
1: अरे क्या हुआ?
5: कोई घबराने वाली बात नहीं है रे।
1: हाँ?
5: वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
1: छत्ते? क्या मतलब?
5: हाँ हाँ छत्ते, वो भी दो तीन।

0: बड़े बड़े 7-8 छत्ते लगे हैं। हां
1: 7-8 छत्ते, कमाल है।
2: अरे फिर तो मजा आ गया।
3: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो 2 गगरी फट तो हो ही जाएगा।
1: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
2: चप्पल फाड़ कर आएगा।
3: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
1: क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दातुन भी तोड़ लेंगे।
4: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
2: हां ठीक है, चल चलते हैं।

0: तो ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है। मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा। अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाजें ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो
3: की पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है।
1: हाय राम,
3: ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं, जो पेड़ काटने आए।
3: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे। मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं। अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं। मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं, वो रास्ता छोटा लगेगा।
0: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही, दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
2: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
3: मगर ये औरतें और बच्चे।
2: अरे यार मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
1: बचाएंगी,
2: नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे कोई है?

0: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे। सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
1: सुनो,
2: वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं,
3: बिल्कुल
2: इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब

0: काटी जा रही थी।
1: सुनो
2: वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं,
1: बिल्कुल
2: इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।
3: लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
2: अरे डरो मत, भागकर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो
0: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
4: चिब्बू भाग ले यहां से,
5: भाग ले के बाद में मारने काटने के।
0: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
6: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया।
7: ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही पेड़ को। अरे क्या बात है
8: भाई, गौरा वाह कमाल कर दिया, जीतती रहे मिट्टी जीतती रहे।
2: ये तो हम सबका कर्तव्य है।
0: दोस्तों, इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
9: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
10: और विमलेश को,
9: कुसुमलता,
10: जगबंधु,
9: चेतना
10: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
9: नमस्कार, नमस्कार।
11: उमंग उमंग उमंग उमंग।
12: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

हम आकाशवाणी अलवर के इसका चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर केंद्र से।

आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा, राज्य सरकार मातृ मृत्यु दर कम करने की दिशा में लगातार प्रयासरत। बालोतरा जिले में सरगणना और कैच द रेन अभियान सहित कई प्रमुख विषयों पर चर्चा होगी। नई पीढ़ी के प्रशिक्षणना और कैच द रेन अभियान सहित कई प्रमुख विषयों पर चर्चा होगी। नई पीढ़ी के प्रश्न

जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यों के जल संसाधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा, राज्य सरकार मातृ मृत्यु दर कम करने की दिशा में लगातार प्रयासरत। बालोतरा जिले में सटर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यों के जल संसाधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में

0: में जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। मंत्रालय के अनुसार पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। जिला स्तर की विजेता राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करेंगे। वहीं राज्य स्तर की विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में आमंत्रित किया जाएगा। माय भारत 5 रचनात्मक श्रेणियों, नृत्य, संगीत, रील और लघु फिल्म, नुक्कड़ नाटक और कविता में प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा है कि राज्य सरकार मातृ मृत्यु दर कम करने की दिशा में लगातार प्रभावी प्रयास कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को मातृ स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी प्रोटोकॉल की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने और उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक मातृ मृत्यु अत्यंत संवेदनशील विषय है और राज्य सरकार हर मामले की गंभीरता से समीक्षा कर रही है। मंत्री ने बताया कि भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में हाल ही में प्रसूताओं की मौत के मामलों की निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत जांच कराई जा रही है। अब तक की जांच में चिकित्सकीय लापरवाही का कोई स्पष्ट प्रमाण सामने नहीं आया है। श्री खेवसर ने कहा कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या प्रोटोकॉल के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल ने हृदय रोग उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल का कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी विभाग 2000 से अधिक मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी सफलतापूर्वक करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर डॉ अनिल शर्मा ने बताया कि ये आधुनिक तकनीक पारंपरिक ओपन हार्ट सर्जरी की तुलना में कम दर्द, कम रक्तस्राव, तेजी से स्वस्थ होने और बेहतर परिणाम के लिए जानी जाती है। इस तकनीक से मरीजों को कम समय में अस्पताल से छुट्टी मिलती है और सामान्य जीवन में जल्द वापसी संभव हो पाती है। उन्होंने इसे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
1: हमारे हिंदुस्तान में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जो ये ऑपरेशन हो रहे हैं, ये हमने यहाँ पर 32 तरह के ऑपरेशन कर दिए, जबकि सारी दुनिया में 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं, यहाँ ज्यादा से ज्यादा 5 तरह के ऑपरेशन होते हैं जिसमें भी जान पे चीरा लगाया जाता है। हमारे यहाँ हमने 2000 ऑपरेशन कर दिए कुल मिला के मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी में, जिसमें हमने 32 तरह के अलग अलग ऑपरेशन किए हैं और हमारे सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल हैं और हमारी सक्सेस रेट करीब 99.5% है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। बालोतरा के पास देर रात हुए एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा भांडियावास के पास हुआ, जहां एक एसयूवी आगे चल रहे डंपर से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 घायलों ने जोधपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना में घायल 3 लोगों का जोधपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर पचपदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में पुराने कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए 310 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना पर काम चल रहा है। परियोजना के तहत पुराने कचरे का बायो माइनिंग तकनीक से निस्तारण किया जाएगा और इन स्थानों पर आधुनिक वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इससे संसाधनों के पुनः उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था मजबूत होगी। परियोजना के तहत 152 नगरीय निकायों में लगभग 75 लाख घन मीटर लेगेसी वेस्ट का निस्तारण किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत जीरो डंप साइट के राष्ट्रीय लक्ष्य को गति देना है। इधर राज्य के विभिन्न जिलों में स्वच्छता के क्षेत्र में विशेष कार्य किए जा रहे हैं। पाली जिले में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-2026 के तहत सोजत नगर पालिका द्वारा मुख्य मार्गों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों की दीवारों को आकर्षक कलाकृतियों से सजाया जा रहा है। इस बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाली संवाददाता।
2: राजस्थानी संस्कृति के तहत ऊंट, मैना, हिरन और विभिन्न वन्य जीवों की कलाकृतियों के साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। पेड़ पौधों और हरियाली की पेंटिंग से आमजन को पौधरोपण के प्रेरित कर रही है। वहीं दीवारों पर गीला कचरा, हरे डब्बे में सूखा कचरा, नीले डब्बे

0: जैसे चित्रों के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक और खुले में कचरा नहीं फैलाने का संदेश दे रही है। साथ ही अब यह पेंटिंग्स आकर्षक सेल्फी पॉइंट बन रही है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने कर्मचारी हितों को प्राथमिकता देते हुए पदोन्नति प्रक्रिया को सरल बनाया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-2025, 2025-2026 और 2026-2027 के लिए पदोन्नति हेतु आवश्यक अनुभव में 2 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है, जिससे हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा। श्री शर्मा कल जयपुर में सचिवालय सेवा अधिकारी और सचिवालय कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ गया है, इससे अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने और बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि आगामी 2 दिनों तक बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन धूल भरी तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी अगले 5 से 6 दिन अधिकांश स्थानों पर मॉनसून कमजोर रहने के आसार हैं। जयपुर, भरतपुर और शेखावटी क्षेत्र में आज से 15 जुलाई के दौरान कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। इस बीच पिछले 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान फलौदी में 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यों के जल संसाधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा, राज्य सरकार मातृ मृत्यु दर कम करने की दिशा में लगातार प्रयासरत। बालोतरा जिले में सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। और प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ने से अधिकतर हिस्सों में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी अलवर का सर इसका चैनल है। श्रोताओं लीजिए, अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

ब्रेक के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म का गाना आवाज है अलका याग्निक की, समीर का लिखा हुआ गाना है और संगीत नदीम श्रवण का।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना कभी अलविदा ना कहना। इस फिल्म का गाना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में, गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

निगम और अलका याग्निक की आवाजों में कभी अलविदा ना कहना, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मंजू द्विवेदी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968, प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

0: कदम।
1: हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे। जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ मिलकर उन्होंने बनाई फिल्म

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए समाधि।

0: इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ।
2: मतलब का बात बोलू सर।

0: की।
1: आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाईं।

0: आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976, खून पसीना।
1: अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही।

0: सन 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर। एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
1: सिकंदर का है? मैं आऊं विशाल। पंडित जी शुरू कीजिए।
2: मंगलम भगवान
1: इकबाल भैया, अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ।
2: वस्त्र कंधे पर रख लिया श्रीमान।
1: सिकंदर, सिकंदर, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं हुआ मेरे यार, चरण जी झड़प हो गई। किससे हुई? बहन किससे हुई?
3: नहीं बता।
1: नहीं,
3: दिलावर मुझे उठा कर ले गया था। सिकंदर मुझे बचा कर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं इस दुनिया में नहीं होता।
1: बस बस करो मेम साहब। मेम साहब, क्या काम ना है तेरे मेम साहब जिससे तू?
4: नहीं,
3: मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को
1: करना।
3: सिकंदर आज मुझे कह लेने दो, आज मुझे कह लेने दो। विशाल सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
1: सिकंदर ये तुमने क्या किया? क्या?
0: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
5: तुम?
6: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा, जानती हो लावारिस क्या होता है?
7: मेम साहब, लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती, अधमरा छोड़ जाती है तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना, पर गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
0: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थीं। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया। एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे

एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया, एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई, एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश बेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई। वादा।

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरू राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

0: लाएगा।
1: प्रकाश मेहरा गीतकार भी थे, उन्होंने अपनी कई फिल्मों में गाने भी लिखे हैं, जैसे फिल्म लावारिस का ये गाना भी प्रकाश मेहरा की कलम का कमाल था।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गईं उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है, और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनते हैं ये विज्ञापन।
1: जब जब आप करेंगे हमें याद, हम मिलेंगे आपको अपने ही पास। अगर आप हैं दुनिया के किसी भी कोने में और सुनना चाहते हैं आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल, तो आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी। हमें सुनने के लिए आप जाइए अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पर, वहां से कीजिए डाउनलोड न्यूज ऑन AIR ऐप। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जब आप लाइव रेडियो के ऑप्शंस पर जाएंगे, तो वहां आपको मिलेंगे रेडियो के ढेरों चैनल्स। इनमें से आप सर्च कीजिए अपना फेवरेट ऑल इंडिया रेडियो अलवर, जहां आप हमें पाएंगे अपने साथ, ओनली एट न्यूज ऑन AIR।
0: लीजिए श्रोताओं सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।
2: में काम करते

0: हुए और कई बार एक एक जैसा काम भी हो रहा था। क्या ये वो दौर था 90s का जब उनके भीतर एक तरह का असंतोष आना शुरू हुआ था?
1: डेफिनेटली, क्योंकि ये किसी भी कलाकार के लिए एक ही तरह का काम करना ये एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है। मराठी में शिक्षा कहते हैं, उसका मतलब है पनिशमेंट,
0: सजा।
1: सजा किसी भी संवेदनशील कलाकार के लिए ये एक सजा होती है। और रेस्टलेसनेस तो डेफिनेटली उनमें आ ही रहा था, पर जैसा मैंने कहा कि उन्होंने ये मान लिया था कि मुझे मेरा घर, मेरे परिवार के लिए अगर पैसे कमाने हैं तो मुझे ये करना है। ये उन्होंने एक पॉइंट पे मान लिया था और उन्होंने वो निभाया। लेकिन जैसे हमने बात की कि आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्में करते वक्त वो वास्तु पुरुष दोगी जैसी फिल्में कर रहे थे, वैसे ही आउट एंड आउट कमर्शियल काम करते वक्त, विलनी का काम करते वक्त भी वो सामाजिक कामों में खुद को बहुत बिजी रखते थे। तो उनकी लाइफ में हमेशा ही दो ट्रैक चलते थे, हालांकि तीन ट्रैक भी कह सकते हो फैमिली का अगर ट्रैक पकड़ा जाए तो, वरना करियर वाइज अगर देखा जाए तो दो ट्रैक्स उनके चलते थे। एक तो जो कमर्शियल काम वो करते थे वो, और दूसरा जो सामाजिक काम करते थे वो। उन्होंने कभी सामाजिक काम की तरफ करियर के तौर पर नहीं देखा, उन्होंने हमेशा उसे एक जिम्मेदारी, एक कलाकार, और अगर मैं आज कुछ हूं, अगर मैं जो कहता हूं, मेरे कहने को अगर कुछ वजन है तो उसका उपयोग मैं किस लिए करता हूं, इसका उन्हें हमेशा ख्याल रहता था और वो करते थे। इसलिए वो सामाजिक कृतज्ञता निधि की हमने बात की, वो उनका चल रहा था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में भी वो कार्यरत थे। मुक्तांगन डी एडिक्शन सेंटर जो है पूना में, जो पहला डी एडिक्शन सेंटर महाराष्ट्र में बना, उसमें भी वो इन्वॉल्व थे, बिकॉज डॉक्टर अनिल अवचट और सुनंदा अवचट उनके साथ उन्होंने वो किया था। डॉक्टर आनंद नाडकर्णी के साथ इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ, सो मेंटल हेल्थ में भी वो काम कर रहे थे। फिर अहमदनगर में रेड लाइट एरिया में स्नेहालय करके एक संस्था है, आज भी है और बहुत अच्छा काम कर रही है, कि जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स है उनके बच्चों के लिए वो संस्था ने काम करने से शुरुआत की, और आज के दौर में लगभग 1,000-1,500 बच्चों का, जिनका शोषण अलग अलग तरीके से होता है, जो वायलेंस को फेस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी वो संस्था काम करती है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो अहमदनगर के एक युवक ने जब ये डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, एक ब्राह्मण युवक ने, ये कहना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये अगेन 90s का दौर है जब जाति व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी, और जैसा मैंने कहा कि अहमदनगर एक बहुत ही पैट्रियार्कल सिटी है, आज भी है। तो उस वक्त एक ब्राह्मण लड़के ने ऐसी बस्ती में जाना और वहां की औरतों के साथ काम करना या उनसे बातचीत करना, ये बहुत ही खराब नजरिए से देखा जाता था। पर जब गिरीश वो काम कर रहे थे और पापा जब भी नगर जाते थे तो ये जो सारे काम करने वाले लड़के लड़कियां थे, ये पापा को मिलने आते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब गिरीश आया मिलने, तब गिरीश ने बताया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, और गिरीश पापा के कॉलेज प्रोफेसर के बेटे थे, तो इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तब पापा ने ये स्टेटमेंट दी हुई थी अहमदनगर के लोकल न्यूज़पेपर्स में कि देखो, ये जो औरतें हैं ये भी हमारे समाज का ही एक घटक है, इसलिए इनके लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है। और फिर अहमदनगर में लोगों का नजरिया धीरे धीरे धीरे धीरे बदलने लगा। फिर पापा स्नेहालय के ट्रस्टी भी बने। फिर कुछ दिनों के बाद वो वहां से निकल गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब संस्था अगर खुद से चल रही है तो मेरे होने की जरूरत नहीं है। पर वहां पर आमिर खान को ले जाना हो, सत्यमेव जयते में बिल्कुल पहले एपिसोड में स्नेहालय की केस स्टडी है,
0: बिल्कुल,
1: तो आमिर खान को ले जाना हो या श्याम बाबू को ले जाना हो, ऐसे बड़े बड़े लोगों को उस वक्त वो अहमदनगर लेके जाते थे, ये देखो ये ऐसे काम कर रहे हैं बच्चे, इनको ऐसे हम लोगों ने मदद करनी चाहिए, इस तरह से उनका काम चलता था। तो हालांकि कलाकार के तौर पर थोड़े से अनसेटल्ड वो हो रहे थे, क्योंकि उनकी जो रेंज थी, जिस तरह काम करने की उनकी क्षमता थी, उतना काम उन्हें उस वक्त नहीं मिल रहा था, उतनी रेंज का काम नहीं मिल रहा था, तो वो था। लेकिन वो इन कामों में खुद को बहुत ज्यादा बिजी रख रहे थे, तो इसलिए वो जो एक डिससैटिस्फैक्शन था, वो सैटिस्फैक्शन में इस काम की वजह से वो बदल पा रहे थे।
0: बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बातें हुई इस पूरे सेक्शन में, और मुझे लगता है कि अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, तो कौन सा गाना होगा?
1: पापा का एक बहुत ही पसंदीदा गाना था, इतनी शक्ति हमें देना दाता।
0: वाह, अंकुश फिल्म का ये गाना। और यहाँ मैं दो क्रेडिट जरूरी तौर पर याद करना चाहूंगा, इसे अभिलाष

0: बहुत मजेदार बातें हुई हैं और चूंकि मेरा काम इन बातों को एक दिशा देना है, मुझे पीछे का एक सूत्र याद है जो हम छोड़ के चले आए थे कि इसकी बात आगे करेंगे, डॉक्टर श्रीराम लागू और सदाशिव अमरापुरकर के रिश्ते की बात।
1: हाँ जी, डॉक्टर लागू अब कैसे बताऊं मैं, सो, जैसा मैंने मेरे शो में भी कहा हुआ है, उन्होंने कन्यादान प्ले जो था वो एक साथ किया,
0: तेंदुलकर वाला,
1: और उसमें डॉक्टर लागू को निर्देशित किया था पापा ने।
0: ये बहुत बड़ी बात मानी जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लागू एक दर्जे के कलाकार थे और उनको डायरेक्ट करना कोई आसान
1: काम नहीं, उन्होंने मानना कि ये युवक है और ये मुझे डायरेक्ट करेगा, ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। तो उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ था, जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर लागू ऑलरेडी सामाजिक कामों में काफी बिजी थे और काफी इन्वॉल्व्ड थे, तो ये जो बात है ना जो पापा के अंदर थी, पर उस बात को हवा देना, उस चिंगारी को हवा देने का काम डॉक्टर लागू और नीलू भाऊ ने किया कि हम कलाकार हैं और हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हमें निभानी है। तो इस तरह से पूरी तरह से उन्हें सामाजिक विचारधारा में और सामाजिक कामों में खींचने का काम डॉक्टर लागू ने किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर लागू अगर नहीं होते तो शायद हमारा परिवार फिर से अहमदनगर, मतलब अहिल्यानगर हम जैसे कहते हैं, फिर से अहिल्यानगर जा चुका होता। क्यों? क्योंकि जब हमें वो किराए का घर छोड़ना पड़ा और पापा ने सीएम के पास जाकर तेंदुलकर साहब ने उन्हें चिट्ठी दी थी, तो म्हाड़ा का घर भी अगर लेना हो तो आपको डिपॉजिट भरना पड़ता है, और उस समय इतना पैसा नहीं था पापा के पास कि हम घर ले पाए या डिपॉजिट भर पाए। तब पापा ने जाकर डॉक्टर लागू को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 2 मिनट के अंदर लाके उन्हें वो पैसे दे दिए थे और वो फिर वो डिपॉजिट भर पाए और हमारा घर हो पाया। ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन डॉक्टर लागू की हमारे परिवार के जीवन में रही है। और दूसरी एक जो बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर लागू की वजह से पापा करने लगे और कर पाए, वो बात ये थी कि जो भी तुम कहना चाहते हो वो ठीक ठीक कहो। अभी ये हुआ है कि हम लोग काफी डिप्लोमेटिक हो गए हैं। एक समय था जब कलाकार पॉलिटिशियंस सब लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाया करते थे, आज वो दौर नहीं रहा। तो वो समय था जब डॉक्टर लागू ने पापा को बताया था कि तुम कलाकार हो, तुम नेशनल लेवल पर काम कर रहे हो, तुम काम बहुत करोगे, अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको सबको खुश रखना होता है, पर ये कभी मत भूलना कि तुम्हें ये जो शोहरत मिली है, तुम ये जो मशहूर हुए हो, ये एक इट्स अ वेपन, इसका इस्तेमाल तुम्हें किस चीज के लिए करना है ये तुम डिसाइड करोगे। तो इसलिए कभी भी जब भी मौका मिले और सच की और तुम्हें खड़ा रहने का चांस मिले तो डेफिनेटली खड़े रहना, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख जो डॉक्टर लागू ने खुद के बर्ताव से भी हमेशा सामने लाई हुई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वो डॉक्टर लागू से सीखे पापा, ये बहुत जरूरी है, और मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो सीखे पापा को मिली वो उन तक सीमित नहीं रही, वो उन्होंने अपने बर्ताव से, अपने जीवन से और अपनी बातों से हम तक भी वो पहुंचाई। मुझे याद है जब पापा गुजर गए थे और निखिल बागड़े जी आए थे कि श्रद्धा सभा में, और तब उन्होंने कहा था कि अब हम मराठी न्यूज चैनल्स अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा बड़ा नाम बचा ही नहीं है जो हमें रिएक्शन देगा,
0: विरोध करेगा,
1: जो विरोध करेगा या सामान्य आदमी को, नागरिक को क्या लग रहा है इसके बारे में बात करेगा, ऐसी आवाज ही नहीं बची है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो पापा ने बखूबी निभाई। जब अन्ना हजारे जी का अनशन उन्होंने किया था दिल्ली में, तब भी महाराष्ट्र में वो हवा बनाए रखने में पापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उस वक्त।
0: घर की एक बात मुझे याद आई कि बाद के दिनों में ऐसा हुआ था कि किसी ने उनको सुझाव दिया था कि सरकार कलाकार कोटे से बड़े घर या बंगलो देती है, और उन्होंने रिफ्यूज किया था कि मैं वो नहीं कर सकता।
1: करेक्ट। पापा एक ऐसे कलाकार है, आई थिंक एक अकेले ऐसे कलाकार है जिन्हें म्हाड़ा के 2% में से घर मिला था। और जब उन्होंने खुद का घर खरीदा बाद में, तब उन्होंने वो म्हाड़ा को वापस कर दिया।
0: गजब।
1: हालांकि उन्होंने उसके लिए पैसे भी भरे थे, सब कुछ था, पर उनका कहना था कि जब मुझे जरूरत थी तब मुझे ये मिला था, तो आज किसी और को अगर ये जरूरत है तो ये जरूरत पूरी होना ज्यादा जरूरी है।
0: वो आराम से बेच सकते थे पैसे, वो ले सकते थे।
1: बेचकर वो ले सकते थे, बिकॉज हम वहां पर

0: 7-8 साल रहे थे तो जो 4 साल का लॉक इन पीरियड होता है वो भी निकल चुका था, तो वो बेच सकते थे, पर उन्होंने नहीं बेचा, उन्होंने वो वापस कर दिया।
1: गजब।
0: और इसी तरह उस समय अंधेरी में, जो अभी बहुत ही बड़ा एरिया है लोखंडवाला का, उस वक्त माड़ा के छोटे छोटे छोटे छोटे बंगले हुआ करते थे, जिनके काफी स्टूडियोज बन चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों ने वहां पर वो छोटे छोटे माड़ा के घर लेकर बहुत सस्ते में, क्योंकि मिल रहे थे,
1: आज भी मौजूद है,
0: आज भी मौजूद है, और वहां पर बंगले में स्टूडियोज और ये सब बनाए। तो उस समय जो पापा के सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा सदाजी हम भी ले लेते हैं, एक स्टूडियो बना देते हैं उधर, डबिंग स्टूडियो रहेगा, एडिटिंग स्टूडियो रहेगा, एक इनकम शुरू हो जाएगा। तो पापा ने कहा क्यों मैं करूं ये सब, अगर मैं ये करता हूं तो कोई और जो व्यवसाय के तौर पर करना चाहता है उसका मैं रोजगार छीन रहा हूं, जो मुझे नहीं करना है। तो आपके बच्चों के लिए ये वो, मेरे बच्चों को मैं सिखा रहा हूं, वो बड़े होंगे, उनको जितना कमाना है कमाएंगे, नहीं कमाना है नहीं कमाएंगे, दे डोंट नीड टू डू दिस, मैं उनके लिए जागीरें बना के नहीं रखूंगा, ये उनका एक कहना होता था। तो हाँ, उनको हर बार इलेक्शन जब भी होता था तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से उनको बुलावा आता था कि आप हमारी ओर से खड़े रहिए, आप हमारी ओर से। पापा ने कभी नहीं किया, या कोई भी सामाजिक संस्था में भी उन्होंने कोई भी डेजिग्नेशन नहीं लिया। तो वो कहते थे जो काम करना है ना वो मुझे बताओ, मैं करता हूं, मुझे ये डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, आपने मुझे चेयरमैन बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, ये मुझे नहीं चाहिए। बिकॉज उसके साथ जो जिम्मेदारियां आती है, लीगल हैसल्स आते हैं, वो कौन करेगा? बिकॉज जैसा मैंने कहा वो कलाकार थे,
1: बिल्कुल
0: उन्हें उनकी कला में रस था और जो अच्छा काम करना है उसमें रस था।
1: क्या बात है।
0: पापा का ये हमेशा कहना होता था कि मेरे बच्चों को जो भी कमाना है वो खुद के बलबूते पर वो कमा लेंगे, मैं उनके लिए जागीरें नहीं रखूंगा। और ये मेरे ख्याल से ये हमारी फैमिली का ही
1: ट्रेडिशन
0: है, बिकॉज मेरे दादाजी का भी यही कहना था कि मैं तो धर्मादाय कर दूंगा सब कुछ, तुम्हें देखो जो करना है, जैसे खुद का घर चलाना है तुम चलाओ, ऐसे ही पापा का भी था। तो जैसा मैंने कहा कि सामाजिक काम भी दादाजी करते थे, वही हमारे घर में चलता आया है, और ये भी वैल्यूज आई थिंक वहीं से आई हुई है।
1: बिल्कुल। रीमा जी, अब हम अपनी बातचीत के लगभग आखिरी मकाम पर आ पहुंचे, जहां एक कठिन बात करनी है, और वो है कि जब सदाशिव जी बीमार पड़े और वो जो पूरा आखिरी दौर है, जाहिर है वो सब आपने देखा है, उन दिनों को थोड़ा याद करें।
0: उन दिनों को याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि पापा की आवाज उनकी ताकत थी, और जब वो बीमार हुए और उनको इंटरस्टेशियल लंग डिसीज करके एक डिसीज होता है, जिसमें अपने जो फेफड़े होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, तो सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आप में दम सांस नहीं है तो आप आवाज भी नहीं निकाल पाते। तो इसलिए उनकी आवाज धीरे धीरे धीरे धीरे
1: कमजोर
0: होती गई, और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ट्रेजिक था। और उस समय उनकी उम्र ही क्या थी, ही वॉज 63, 63 साल के थे वो, आगे और बहुत 10-15 साल तो कम से कम वो काम कर पाते अगर
1: बिल्कुल
0: उन्होंने डिसाइड किया होता तो। लेकिन वो डिसीज हुआ, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, इसलिए वो बात नहीं कर पाते थे, और वो इतने ऑनेस्ट थे कि उनके पास प्रोड्यूसर्स तब भी आते थे कि सदाजी ये छोटा रोल है आप ये कर दीजिए। कई कलाकारों को हम भी जानते हैं जो बीमार होते हुए भी काम करते रहते हैं, पर पापा उनको बोल देते थे कि देखो अगर तुम्हें लगता है मैं उसी तरह से बोलूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये मेरी आवाज की हालत है, इस तरह से वो बहुत ओपनली और क्लियरली बात बताते थे। वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट हम सबके लिए था, बिकॉज आप सोचिए कि एक पहाड़ जैसा आदमी जिसको आपने बचपन से इतना स्ट्रॉन्ग, इतना क्या कहते हैं,
1: जुझारू
0: एक्चुअली और रियल लाइफ में भी सिर्फ पर्दे पर नहीं देखा हुआ है, वो जब आपके सामने धीरे धीरे धीरे धीरे वीक होता जाता है तो ये आप सहन नहीं कर पाते, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही तकलीफ वाला दौर था, पूरे 6 महीने जब वो बीमार थे तब। और मैं क्या कहूं, तब लोगों ने, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब आप मशहूर होते हो तो जैसे प्यार भी करते हैं लोग, तो लोग ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है और उसकी भी एक निजी जिंदगी है। तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी उस वक्त कि लोग ये चाहते थे, जैसे अभी धर्म जी के बारे में भी हुआ कि उनका आईसीयू में उनका वीडियो निकाला गया, तो वैसे लोग चाहते थे, मुझे चैनल से फोन आते थे कि रीमा उनका एक आईसीयू में एक फोटो निकाल के आप भेजो।
1: ओहो
0: ओके। या लोग मिलने आते थे, तो उस

0: है, मोबाइल फोन्स कैमरा फोन्स आ गए थे, 2014 की बात कर रही हूँ मैं, तो हम ये देखते थे कि जो भी अंदर जा रहा है पापा से मिलने उसके साथ कोई ना कोई हो, बिकॉज हम ये नहीं चाहते थे कि कोई फोन निकाले, वीडियो निकाले, फोटो निकाले और सर्कुलेट करे, बिकॉज वो एक कलाकार थे,
1: ये होना ही नहीं चाहिए।
0: हाँ,
1: कोई भी रीजन हो, नहीं
0: और नहीं, और लोग उन्हें जिस तरह से याद लोगों ने रखना चाहिए, वो उनकी बुलंद आवाज, वो उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग, उनकी दहशत जो पर्दे पे वो पैदा करते थे, वो याद रखे। ये क्यों याद रखना है?
1: बिल्कुल,
0: जैसे इवन धर्म जी के बारे में जब हुआ तो इतना बुरा लगा कि ही मैन, ही इज द ही मैन ऑफ द इंडस्ट्री, और उनको इतना वीक दिखाकर आप क्या हासिल कर रहे हैं?
1: देखिए, समय और उम्र किसी को नहीं बख्शते हैं।
0: Exactly.
1: तो इसलिए उसका लिहाज कर लेना चाहिए
0: बहुत,
1: और
0: बहुत
1: लोगों को अपनी प्राइवेसी में छोड़ देना चाहिए ऐसे समय,
0: बिकॉज पापा अहमदनगर को अपने दिल में रखे हुए थे, तो ये बात तो पक्की थी कि उनका जो भी अंतिम संस्कार है वो अहमदनगर में होगा। तो जब हम अहमदनगर गए और हमारी जो हवेली है उसके आंगन में ही पापा को रखा हुआ था दर्शन के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 2-3 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी।
1: ओहो।
0: और वो लाइन रुक ही नहीं रही थी। अल्टीमेटली एक 4-5 घंटे के बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि अभी बस, अभी जाना जरूरी है, बिकॉज ऑलरेडी मुंबई से हम वहां गए थे, काफी समय बीत चुका था। तो उस समय लगभग 50-60 हजार लोग पापा के अंत्य यात्रा में थे, और वो सिर्फ अहमदनगर से थे ऐसा नहीं,
1: दूर दूर से आए थे,
0: दूर दूर से आए थे। और बाद के जो 15-20 दिन है, पूरा महीना जो हम लोग रखते हैं, पूरे महीने तक हमारी हवेली में लोग आ ही रहे थे, माथा टेक ही रहे थे और जा रहे थे। राजस्थान से लोग आए, पश्चिम बंगाल से आए, कहां कहां से आए, कुछ नहीं, सिर्फ उनके दर्शन करने, बस उनकी हवेली देख ली, उनके बच्चों को देख लिया, उनके भाई को देख लिया, बस। ये जो लोगों की दुआ मिली है उस वक्त, और ये जो प्यार हमें दिखा है, क्योंकि पापा बाहर जाकर किस किस के लिए क्या क्या करते थे ये कभी घर आकर हमें बताते नहीं थे, पर उसके बाद आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि पापा की याद किसी ने ना निकाली हो, कोई ना कोई वो याद निकालता ही है। और हर एक 2-3 महीने में ऐसा कुछ किस्सा पता चलता है कि अरे पापा ने ये भी किया था, पापा ने ऐसा भी किया था, ये भी मदद की थी, ये कब किया था उन्होंने।
1: गजब।
0: तो ये जो बात है कि जब इंसान, हम उसके बच्चे होते हैं, हम एक तरीके से उसको देखते हैं, वो मेरे लिए मेरे पिताजी थे, वो एक हीरो थे, बहुत महान कलाकार थे, अग्रीड, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरे पापा थे। तो मेरी कुछ पर्सनल शिकायतें, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज वो उनके साथ थे ही, मैं ना नहीं कहूंगी, लेकिन अब लगभग 11 साल हुए हैं, और अभी 11 साल के बाद भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उनका कोई रेफरेंस ना निकलता हो। तब आपको पता चलता है कि जो इंसान आप अपने पिताजी समझते थे वो सिर्फ आपके पिताजी नहीं थे,
1: वो पूरे संसार के लिए क्या थे।
0: एग्जैक्टली। और सिर्फ एक कलाकार भी नहीं थे वो, ही वॉज सो मच मोर। तो एक थोड़ी सी समझ आ जाती है कि फिर आप इंसान को एक ही दायरे में ना देखिए, उसके कई मायने हैं, और उन सारे मायनों में आपने देखना चाहिए इंसान को। तो ये आज भी मैं सीख रही हूँ उनसे, आज भी सिखा रहे हैं वो मुझे।
1: क्या बात है।
0: जैसे आज हम बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे लगा नहीं था मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन जब एक एक एक एक एक एक आप पूछते गए, तो ऐसी भी काफी सारी चीजें मैंने कही जो आज तक मैंने कहीं पर नहीं कही थी।
1: बिल्कुल।
0: अर्थात आकाशवाणी घर ही है हमारा। अभी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि हमने रुकना चाहिए।
1: यहाँ एक गाना बजाते हैं, रहे ना रहे हम महका करेंगे।

0: रीमा जी, उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम यादों के उजाले बिखेरते हैं। आपकी यादों में पिताजी किस तरह से सामने आए, ये सुनते हुए और आपसे बातें करते हुए लगातार मुझे सदाशिव जी की बातें याद आ रही थी जो विविध भारती में उनके आने पर उन्होंने बताई थी और बहुत दिलचस्प बातें थी। तो अब तक आपने पिताजी के बारे में बताया, अब संग्रहालय से पिताजी की आवाज निकालते हैं और हम सब मिलकर सुनते हैं सदाशिव अमरापुरकर की बातें। और हाँ, ये बातचीत हमारी साथी कांचन प्रकाश संगीत ने सदाशिव जी से की थी बरसों पहले, तो संग्रहालय से ये आया ऑडियो।
1: अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
2: अच्छा।
1: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
2: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
1: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
2: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर, ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे, लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारी पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50 टका हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियां खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
1: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
2: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं

0: भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा ये इंसान, ये आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे, तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई, और आप इर्द-गिर्द जाते रहे हैं?
0: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांद बीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है, और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांद बीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना सदाशिव जी? इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें?
0: जी जी जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
0: और उसके बोल है मेरे दिल में है एक बार।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटर बन जाऊंगा।
1: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला, हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं, नाटक करता रहा, धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आई, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी,
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे।
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे?
1: जी जी जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
0: जी।
1: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग।
0: तो वो पलट के नहीं देखती थी?
1: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया, हमारे अंदर, हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी।
0: तो आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
1: जी।

0: चलिया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना, थिएटर की जो बात है वो वहाँ से आपकी शुरुआत हो गई, और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
2: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
2: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मैं मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूं तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो

0: आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए। और थिएटर करने लगा तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
0: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
0: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसा लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
0: नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
0: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी नया होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे।
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे होता है, हेलो फरमाइश।
0: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाए किसी होटल में, चाय पीने जाए, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। हम कहते थे नहीं नहीं भैया पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो।
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
0: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
0: बहुत गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
0: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
0: जी।

0: ये सदाशिव जी की आवाज। देखिए ना, इंसान चला जाता है, यादें रह जाती हैं, और विविध भारती में तो ऐसा होता है कि आवाजें रह जाती हैं, और कितनी ही आवाजों के उजाले हमारे स्टूडियो को और हमारे संग्रहालय को रोशन करते हैं। रीमा जी, बहुत सारी बातें हुई हैं, और अब वो वक्त है जहां आपको एक बहुत जरूरी काम करना है। और वो ये काम करना है कि एक बेटी होने के नाते कहना है कि इतने वर्ष बाद भी क्या हैं आपके पिता आपके लिए। हो सकता है कि ये एक ऐसी बात हो जो आप उनसे कभी ना कह पाई हो, अपने घर आकाशवाणी में आप कह पाएंगे।
1: एक बेटी होने के नाते मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं बहुत बहुत बहुत नसीबों वाली हूँ कि पापा जैसे पिताजी मुझे मिले। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत बड़े कलाकार थे, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने कभी भी हमें शब्दों में सिखाया नहीं। उन्होंने जो भी किया उसमें से वो चाहते थे, और वो हमें खुला छोड़ देते थे कि तुम्हें जो सीखना है इसमें से सीखो। इसी वजह से आज भी, अभी उन्हें गुजरे हुए 11 साल हो गए, आज भी जब कोई घटना याद आती है, कुछ किस्सा याद आता है, तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसमें से जो मैं सीखती हूँ वो मैच्योर होता जाता है, वो नया नया मुझे सीखने को मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि मैं लकी इसलिए भी हूँ कि ये आज़ादी उन्होंने मुझे दी, हम सब बहनों को इनफैक्ट दी, कि आपको जो करना है वो आप करो, सिर्फ सही करो, कभी भी कुछ गलत मत करो जिससे किसी इंसान को दुख पहुंचे या कुछ गलत हो। उनका सिर्फ एक ही कहना होता था कि आप जो करते हो वो करने के बाद रात में जब आप घर पे आते हो और बिस्तर पर लेटते हो तो एक भी मिनट आपका ऐसा नहीं गुजरना चाहिए कि यार ये मैंने क्या किया। बिस्तर पर लेटते ही आपकी आंखें बंद हो जाए और आपको नींद आ जाए शांति से, ऐसा आपका बर्ताव पूरे दिन में हो, फिर वो आपके काम में हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, कहीं पर भी हो। तो ये जो सीख है, ये जो पापा ने दी है, और ये उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि शब्दों में नहीं, उनके खुद के बर्ताव से उन्होंने हमें सिखाई है। और साथ ही मैं ये कहूंगी कि उन्होंने जो लॉयल्टी उनके अंदर थी वो उनकी बीवी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, उनके पिताजी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, हम बच्चों के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, वैसी ही लॉयल्टी उनके काम के प्रति भी उनकी थी। जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना उतना मैं ये समझ पा रही हूँ कि उनके जीने के और उनकी पर्सनालिटी के काफ़ी सारे ऐसे पहलू थे जो जब वो थे तब मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैं पापा से ये कहना चाहूँगी कि पापा, आपने जो भी करके रखा है एज एन आर्टिस्ट, एज अ फादर, वो शायद समझते समझते पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आज भी रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा याद आता है, कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है आपके, कोई मीम हो या कोई रील हो, कि एक ऊर्जा मिलती है आगे जाने की, और ये ऊर्जा हमारे साथ इतने प्रकार से है आपके होने से, ये नसीब वालों को ही मिलता है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि आप मेरे पापा थे। मैंने बहुत झगड़ा किया हुआ है पापा के साथ, काफी बार हम काफी झगड़ते थे, लेकिन वो भी एक फ्रीडम उन्होंने हमें दिया था, उनसे झगड़ा करने का फ्रीडम। बुरा लगता है कि मेरी बेटी उन्हें मिल नहीं पाई, खैर वो अलग अलग तरीके से उसे मिलते रहते हैं।
0: क्या बात है रीमा जी, पिताजी इतने मशहूर कलाकार थे और उनका कामयाबी का झंडा बहुत बुलंद था, जब आपके सामने करियर का सवाल आया तो उनके सामने जाके क्या ऐसा कुछ हुआ कि मैं भी इंडस्ट्री में?
1: हाँ, एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया है पूना से, कोखले इंस्टीट्यूट से, तो पापा एकदम सेट थे कि अभी सबसे छोटी बेटी है वो इकोनॉमिक्स कर रही है, वो शायद उसमें पीएचडी करेगी, हो गया, एवरीथिंग इज सेट। पर मैं जब पूना में जॉब कर रही थी तब पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ,

और तब जाके मैंने राशुमान देखी अकीरा कुरोसावा की, और सिनेमा की ताकत जो है वो सडनली मुझे ऐसे लगा कि यार ये करना चाहिए। मैंने अगर पीएचडी किया तो मैं रिसर्च पेपर लिखूंगी, वो किसी मैगजीन में छप के आएगा, खत्म। ऐसा कुछ करना चाहिए। और मैंने जाकर पापा से ये कहा तो सबसे पहले तो पापा की रिएक्शन थी, पर तुझे तो इकोनॉमिक्स करना था। मैंने कहा हाँ करना था, लेकिन अभी मुझे ये करना है। तो फिर वो कहते थे, फिर

0: आप अजेंडा नहीं देख पाए थे तो मुझे कैमरा के सामने नहीं जाना है, मैं कैमरा के पीछे रह के जो भी करना है करूंगी. ओके
1: राइट.
0: तो फिर पापा ने कहा कि ठीक है, फिर आपको अगर करना ही है ये तो उसमें पहले आपको सीखना जरूरी है. फिर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में मैं जाकर सीख कर आई, फिर मैंने असिस्टेंटशिप की और फिर मेरा करियर जैसे बनना था वैसे बना. पर अगेन जैसे पापा का सामाजिक एक ये रहता था वैसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझ में भी है. तो मैं एनजीओज के साथ ज्यादा काम करती हूँ, कमर्शियली मैं थोड़ा कम काम करती हूँ.
1: बहुत सारी बातें पिताजी के बारे में हुई और कई ऐसे पहलू सामने आए जिनके बारे में शायद कभी किसी ने नहीं जाना था. तो इसीलिए सार्थक होता है ये कार्यक्रम जिसका नाम उजाले उनकी यादों के है. तो आपके जरिए यानी रीमा की यादों के जरिए पिताजी सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले आपने सजाए. बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे ये लंबी बातचीत करने के लिए.
0: थैंक यू सो मच. ऐसे होता है ना, कभी कभी डर लगता है कि हम बहुत ज्यादा उनकी बातें करेंगे तो रो देंगे, इसलिए कई बार हम खुद से भी दूर भागते हैं और बातें नहीं करते हैं. पर यहाँ बुलाकर वो पुराने दिन, किस्से, घटनाएं और पापा, उनको याद दिलाया. थैंक यू सो मच. मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन आपने जिस तरह से मुझसे बातचीत की है वो बहुत ही, मुझे इट हैज बीन एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस.
1: थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया.
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी. कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले. अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और मशहूर हस्ती की यादों के उजाले लेकर. अब दीजिए इजाजत. नमस्कार.

0: हम आकाशवाणी अलवर के संस्कार चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं ये विज्ञापन।
1: युवाणी कार्यक्रम में हर बुधवार अब आप सुन सकेंगे अपनी पसंद का कोई भी गाना हेलो फरमाइश में। इसके लिए आपको डायल करनी होंगे हमारे स्टूडियो के नंबर और बताना होगा आपका मनपसंद गाना। हमारे फोन नंबर है 2940675। मोबाइल से कॉल करने पर एसटीडी कोड 0144 अवश्य लगाएं। हेलो फरमाइश के इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है बुधवार शाम 5:30 पर आपके अपने युवाणी में। सुनते रहें FM 103.1 MHz पर आपका अपना आकाशवाणी अलवर।
0: लीजिए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

दुनियादारी, इस फिल्म का गीत अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। विश्वेश्वर शर्मा ने इसे लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत।

अनुराधा पौड़वाल और तलत अजीज की आवाजों में सुनिए इब्राहिम अश्क का लिखा ये गीत। राजेश रोशन का संगीत है, एल्बम का नाम बहार आने तक।

आइए अब आपको सुनवाते हैं अशोक खोसला की गाई ये गजल, जिसे लिखा है डॉक्टर राही मासूम रजा ने, जगजीत सिंह का संगीत।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में सुनिए कमर जलालाबादी की ये गजल। धुन बनाई है जगजीत सिंह ने।

एक हमारे दोस्त थे, लंदन में रहे, ऐसे बहुत पैसे आ गए उनके पास, जैसे फेंक गए ना अभी, तो वो पंजाब जब वापस गए 15-20 साल के बाद, वहाँ उन्होंने बंगला बनाया और उसकी जो हाउस वार्मिंग सेरेमनी थी उन्होंने बुलाया सब दोस्तों को, बोले देखिए हमारा ड्राइंग रूम है, ये बच्चों का रूम है, ये किचन है, ये वो है, सब करके बड़ा अच्छा बंगला था। फिर पीछे लॉन में ले गए तो वहाँ 3 स्विमिंग पूल बना रखे हैं, तो एक में गर्म पानी, तो वो समझ आ गई बात सर्दियों में नहाने के लिए, एक में ठंडा पानी तो वो गर्मी में नहाने के लिए, तो एक खाली पड़ा हुआ है। तो उनको पूछा भाई ये खाली क्यों पड़ा है स्विमिंग पूल, बोले बात यह कि कभी कभी नहाने को दिल नहीं करता है। कई वैसे पंजाबी में कई ऐसे जोक हैं जो जिनका कुछ मतलब नहीं है लेकिन हंसी आती है, जैसे मैं जगजीत सिंह हूं, ये सुरेंद्र सिंह है, अभी हंसने वाली बात नहीं है। सुरेंद्र सिंह जी अपने घोड़े पे आ रहे हैं और जगजीत सिंह जी पूछते हैं उनको, सुरेंद्र सिंह जी थोड़ा घोड़ा कितने है? तो सुरेंद्र सिंह कहता भी घोड़े पे तो मैं बैठा हूं, तुमको दिखता नहीं। कहता फिर भी पूछने की हर जाएगा।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में अभी आपने सुनी ये गजल। राणा अकबर बदी का ये रचना थी।

आकाशवाणी अलवर के साइसका चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकिनगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए

0: इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई थी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देशभर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। वियतनाम के फुकुओक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। ये दावे अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आया है जिसमें ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों, तटीय रडार ढांचे और सामरिक नौसैनिक संसाधनों को निशाना बनाया गया था। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,153 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।
2: தலையை குனிந்து கொள்வது நல்லது, தலை தரையை தொடக்கூடாது, மரத்தடியிலோ உயரமான கம்பம் கொடிமரம் அருகிலே
3: कर जयकिशन का संगीत।

0: हम आकाशवाणी अलवर के साइंस का चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं ये विज्ञापन।
1: आकाशवाणी के 9 दशक, जी हाँ पूरे 90 साल। आकाशवाणी आपके भरोसे का साथी, आपकी आवाज, आपके दिलों की धड़कन, निरंतर सेवा में समर्पित। ज्ञान, सूचना, मनोरंजन और संस्कृति का ये है अथाह सागर। पीढ़ियों से सदा है हमारा मार्गदर्शक, गांव से शहर तक है हर घर में इसकी गूंज। आकाशवाणी के 90 वर्ष, ये सिर्फ एक संख्या नहीं, ये है हमारी विरासत, हमारा गौरव। सुनते रहिए आकाशवाणी, सदा बहार, सदा आपके साथ।
0: लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

गाने से पहले जो गीत आपने सुना वो था फिल्म अखियों के झरोखों से। हेमलता की आवाज और गीत संगीत था रविंद्र जैन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दोस्ती फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म का गीत, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज में अमृत फिल्म का गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की धुन।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम पर्वत, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। बोल हैं जानिसार अख्तर के, धुन बनाई है जयदेव ने।

और आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए। गीत गाता चल इस फिल्म से आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजें हैं, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है और डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आज जयपुर में ऋण पुनर्गठन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि ऋणों की रीप्राइसिंग से डिस्कॉम्स को हर साल पर उल्लेखनीय बचत हो रही है। बैठक में बताया गया कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से पीक आवर्स में महंगी बिजली की खरीद पर निर्भरता कम होगी और बिजली आपूर्ति अधिक विश्वसनीय बनेगी। मुख्य सचिव ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वांगीण विकास प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित करता है और इससे राष्ट्र की प्रगति को नई गति मिलती है। आज सोशल मीडिया पर संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश इस प्रेरणादायक भावना के साथ भारत की क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसमें कहा गया है कि महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित करना, युवा पीढ़ी की रक्षा और पोषण करना और राष्ट्र की एकता, सुरक्षा, समृद्धि तथा सुशासन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का निरंतर कर्तव्य है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य भारत के स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को मजबूत करना है, साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले नैतिक और इनोवेटिव अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा स्वास्थ्य परिणामों और समानता में सुधार के लिए राष्ट्रीय और उभरती स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करना है। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया है। वे आज नई दिल्ली में जल बजट और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी के साझा प्रयासों से ही सार्थक परिवर्तन संभव है। श्री भारद्वाज ने बताया कि मंत्रालय पिछले 1.5 साल से इस पहल पर काम कर रहा है। उन्होंने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी करने और अपने अपने क्षेत्रों में जल संरक्षण और जल प्रबंधन से जुड़े कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 की पहली ट्रेन आज दोपहर बाद जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम मदुरई के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन को देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत हरी झंडी दिखाएंगे। इस उपलक्ष्य में दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित होगा। श्री कुमावत

0: रावत वरिष्ठ जन से मुलाकात भी करेंगे। जैसलमेर जिले में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत इस साल करीब 47 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए वन विभाग ने अपनी नर्सरियों में विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार कर लिए हैं। इस बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: जिले का सबसे बड़ा टारगेट वन विभाग का है। वन विभाग को इस बार 32.53 लाख पौधे लगाने हैं। कुल 34 विभागों को 46.95 लाख पौधे लगाने हैं। जिले के सभी नर्सरियों में वितरण के लिए 17.62 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 32 लाख पौधे अलग से तैयार है, इन्हें वन विभाग स्वयं लगाएगा। उपवन संरक्षक कुमार शुभम ने सभी विभागों से अपील की है कि वे अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पौधे ले जाएं और पौधरोपण सुनिश्चित करें। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: सवाई माधोपुर जिले में पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ने के लिए ग्राम पंचायतों में वन मित्र बनाए जाएंगे। ये वन मित्र पंचायतों की बंजर चारागाह और सिवाय चक भूमि पर लगाए गए पौधों की देखभाल करेंगे, साथ ही वन और वन्य जीव संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक भी करेंगे। जिला प्रशासन के अनुसार इस पहल का उद्देश्य हरियाली बढ़ाने के साथ ही स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना है। एचपीवी टीकाकरण अभियान में बारां जिले ने एक ही दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले में शुक्रवार को एक ही दिन में 247 किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन लगाई गई, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

जी हाँ, तो आप में से कई साथियों ने बिल्कुल ये गीत सही पहचाना था और ये शब्द था ज्योति। एक साथी ने लिखा है कि सच कहूँ तो सुरीला सफ़र इस कार्यक्रम की वजह से हमारी बातचीत भी एक प्यारे सफ़र जैसी बन गई है। हर दिन कोई नया शब्द, कोई पुराना गीत, कोई मीठी याद और कुछ दिल से निकली बातें, यही इसकी सबसे सुंदर बात है। हम सब श्रोता मिलकर इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, एक परिवार की तरह से बैठकर अपनी बातें कहते हैं, उससे ही तो इसकी खूबसूरती है। और साथ में जो गीत बजते हैं वो सबसे प्यारा साथ होता है होस्ट का। जी हाँ, जब हम और आप इस तरह साथ होते हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है आपकी टिप्पणियाँ पढ़कर, और लगता है कि हाँ, हमारी बात सुनने वाला भी उतने ही रुचि के साथ हमसे बात कर रहा है। एक साथी ने

लिखा है, हमारी इबारत पे से इन्होंने लिखा है, संवेदनाएं शब्दों में नहीं हृदय की निस्वार्थ धड़कनों से जन्म लेती हैं। जहां संवेदनाएं जीवित रहती हैं, वहां प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, विश्वास कभी नहीं टूटता। जहां मानवीय एहसास जीवित रहता है, वहां रिश्ते आत्मीय बनते हैं। जहां शब्द कम पड़ जाते हैं, वहां हृदय स्वयं बोलने लगता है। यही एहसास जीवन को अर्थ देते हैं और संबंधों को गरिमा देते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने लिखी है, जब संवेदनाओं की बात हो रही है तो आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी ऐसी याद को साझा कर सकते हैं जब आपने अपनी संवेदनाओं को पूरे हृदय से महसूस किया हो। और तब तक आइए आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत फिल्म खामोशी से। हेमंत कुमार के ने इस गीत को गाया है, गुलजार के बोल हैं और हेमंत कुमार का संगीत।

हाँ तो भाई, किसी ने लिखा था कि पूरा गाना आखिरी तक बजाना विसिल के साथ, विसिल के तक। तो लीजिए, आपने जैसा कहा था, पूरा विसिल तक आपको गाना सुनवाया है। एक साथी ने लिखा है, जीवन में कुछ तस्वीरें समय के साथ कभी धुंधली नहीं पड़ती, वे यादें यादों की दीवार पर हमेशा टंगी रहती हैं। कुछ बिगड़ने, कुछ अधूरे सपने और कुछ अनकहे एहसास मन को तपाते हैं, लेकिन यही तपन इंसान

अंदर से मजबूत भी बनाती है। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमारे व्यक्तित्व को और अधिक निखार देती हैं। एक साथी ने लिखा है, ये इबारत केवल जीवन का चिंतन नहीं बल्कि मनुष्य के अंतर्मन की उस मौन यात्रा का सजीव चित्रण है, जहां संवेदनाएं ही जीवन का वास्तविक आलोक बनकर मार्ग प्रशस्त करती हैं। संबंधों का सौंदर्य अधिकार में नहीं बल्कि आत्मीयता, विश्वास और निस्वार्थ समर्पण में निहित होता है। जीवन में बिछड़ना, टूटना, छल और विरह जितने भी कठोर अनुभव हो, यदि वे मनुष्य की संवेदनशीलता को जीवित रखें तो वही उसके व्यक्तित्व को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। स्मृतियां समय के साथ धूमिल नहीं होती, वे आत्मा की धरोहर बनकर हमें भीतर से परिपक्व करती रहती हैं। अंततः जीवन की सबसे बड़ी विजय परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपने भीतर की करुणा, सत्य और प्रेम को अक्षुण्ण बनाए रखने में है। जी हाँ, और जो पिछला गीत था उसका शब्द था पुकार, और आप में से कई श्रोताओं ने इसे सही भी पहचाना। लीजिए अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं, सरस्वती चंद्र फिल्म से मुकेश की आवाज में इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

चंदन शब्द था इस गीत से और हमारे एक साथी लिखते हैं, संवेदनाएं सदैव स्वभाव पर हावी होती हैं, कितने भी मन को कड़ा करें। बच्चे जब दूर कार्य क्षेत्र पर जाते हैं सब्र का बांध टूट ही जाता है। जी हाँ, इस बात को हर वो व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ सकता है जो किसी काम के चलते या फिर किसी मजबूरी के चलते अपने परिवार से दूर जा रहा है। और जब व्यक्ति दूर जा रहा होता है तो जाने वाले को लगता है उसका गम बड़ा है, और जो घर पे अकेला रह जाता है उसे लगता है उसका दुख बड़ा है। लेकिन सच मानिए, दोनों अपनी अपनी स्थिति में

अपनी अपनी जगह पर बड़ा दुख झेल रहे होते हैं जब वो एक दूसरे से बिछड़ रहे होते हैं। एक साथी ने लिखा है, आज कुछ खास किस्म के गाने बज रहे हैं, अच्छा लग रहा है। संबंधों की पड़ताल करते ये गीत अमर हैं, इन्हें सुनते बड़ा सुकून मिलता है। आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है, गीत अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे और आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म मेरा साया से, लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहदी अली खान के बोल, मदन मोहन का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, सचमुच ही मनुष्य का वक्त गुजर जाता है, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ लम्हे याद रह जाते हैं, कुछ सुकून रह जाते हैं, कुछ संवेदनशीलता होती है जो कि उम्र भर जीने की राह सिखाती है। कभी कभी उन यादों के सहारे भी रोना पड़ता है जो बीत गए हैं। उन पुरानी यादों के गलियारों से रूबरू कराती है विविध भारती परिवार। सुरीला सफर सचमुच विविध भारती का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विविध भारती परिवार सुख दुख की बातें और जीने की राह सिखाती है। विविध भारती को कोटि कोटि धन्यवाद, ऐसा इन्होंने लिखा है। एक साथी लिखते हैं, दूसरों के दुख को समझना, महसूस करना, किसी के प्रति सहानुभूति रखना और करुणा रखना, यही संवेदनशीलता व्यक्ति की पहचान है। संवेदना समाज में प्रेम, विश्वास और भाईचारे को बढ़ाती है। यही एक स्वस्थ समाज की नींव है। जीवन में कभी कभी अपने भी गैर लगते हैं, लेकिन कभी ऐसा वक्त भी आता है जब गैर भी अपने लगने लगते हैं। यही सच्चाई है, ये भी एक साथी ने लिखा है। और जरूर आपको ऐसा कोई अनुभव आया होगा जिससे आप ये बात कह रहे हैं। और ये बिल्कुल सही है कि जब भी हम किसी अनजान शहर, अनजान जगह पर होते हैं तो कभी कभी कोई इस तरह मदद कर जाता है, इस तरह साथ दे जाता है कि हमें लगता है जैसे ये हमारे लिए भाई समान है, बहन समान है जिसने हमारी इतनी मदद कर दी। तभी तो हम कहते हैं ना कि वो व्यक्ति हमें ईश्वर रूप में मिल गया। ये हम तभी तो कहते हैं जब कोई अनजान व्यक्ति यूं ही हमारी मदद कर जाता है, वो भी बिना किसी अपने मुनाफा के, बिना किसी लालच के। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। और अभी जो गीत आपने सुना उसका शब्द था साथ। यही साथ तो है जो हमें लोगों से मिलता है, जिसके जरिए ये समाज जिंदा रहता है। आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर और आपको सुनवाते हैं ये गीत अनोखी रात फिल्म से, मुकेश की आवाज में, इंदिवर के बोल, रोशन का संगीत।

तो साथियों, मुझे लगता है ये गीत भी आप ही की लिस्ट में से होगा। बहुत सारे लोगों ने इस गीत को भी सही पहचान लिया था। हमारे एक साथी ने लिखा है कि सुरीला सफर कार्यक्रम वास्तव में सुरीला महसूस हो रहा है। आज की इबारत में शामिल शब्दों पर आधारित गाने लाजवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ये लिखते हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। एक साथी ने लिखा है, जीवन में केवल बौद्धिक ज्ञान का प्रकाश पर्याप्त नहीं है। सार्थकता तब है जब हम दूसरों के सुख दुख को अपनी अनुभूति से समझें, और ये संवेदना हृदय का स्पंदन है जो हमें मानवता से जोड़ती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण है कि बाहरी प्रकाश यानी कि ज्ञान भी आंतरिक संवेदना रूपी दीपक से ही प्रकाशित होता है। वहीं चंदन की तरह शीतल रहकर संबंधों के मूल को समझना सहज बोध, भावनात्मक परिपक्वता और गांभीर्य का प्रतीक है, क्योंकि चंदन की प्रवृत्ति बिना भेदभाव के सुगंध देने की है। सागर अपनी विशालता और गहराई में सब कुछ समाहित कर लेता है, जो सागर की विशेषता है, जिसे हम प्रज्ञा यानी गहरी बुद्धि या स्थिरता के रूप में जाना करते हैं, जो बिना विचलित हुए रिश्तों की गहराई और उसके महत्व को आंकती है। काफी बड़ी बात इन्होंने लिखी है। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और चलिए अब आपको सुनवाते हैं तीसरी कसम फिल्म का ये गीत, मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन। आपको बताना है इस गीत का कौन सा वो शब्द है जिससे इस गीत को लिया गया है।

जी हाँ, तो इस गीत से जो शब्द था वो था झूठ, और आप सभी ने सही पहचाना है। एक एक टिप्पणी अभी मुझे दिखी, एक श्रोता ने लिखा है कि मजाल है कोई भी गीत श्रोताओं की लिस्ट में से बच जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपने कोई दूसरा चैनल ट्यून तो नहीं कर लिया है। एक बार आप चेक कर लीजिए कि आप विविध भारती ही सुन रहे हैं या कोई दूसरा चैनल आपने गलती से लगा लिया हो, क्योंकि अक्सर जो गीत हमें यहाँ पर, यानी जो कमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं, उनमें से कई लोगों ने सही गीत पहचाना है और वो गीत बज भी रहे हैं। तो एक बार आप देख लीजिए। एक साथी लिखते हैं, इस गीत के लिए दिल से शुक्रिया, पर हमारे घर में आज गेस्ट आए हैं, हम लिख नहीं पा रहे हैं, पर जैसे ही ये गीत बजा खुद को रोक नहीं पाए और चाय भी गिर गई। देखिए, ऐसा मत कीजिए वरना आपकी चाय गिरने का सारा दोष विविध भारती पर आ जाएगा। आपने तो लिख ही दिया है सारेआम। एक साथी ने लिखा है, जीवन में केवल, अच्छा ये कमेंट तो हमने पढ़ दिया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कमेंट है, आत्मा का संगीत तब तक गूंजता रहता है जब तक हृदय में दूसरों के प्रति करुणा जीवित हो। हिमालय जैसी अटूट स्थिरता और नदी जैसी निश्चल आत्मीयता से किसी के मौन को पढ़ना ही परिपक्व व्यक्तित्व की पहचान है। दिखावे और छल से कुछ पल की वाहवाही तो मिल सकती है, मगर अंतरात्मा को कभी संतोष नहीं मिलता। इंसान अक्सर अजनबियों की भीड़ में उस एक आत्मीय स्पर्श की तलाश करता है। कुछ लम्हे वक्त के पन्नों पर धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन उन यादों की तपिश और संघर्षों की हर एक चोट मनुष्य को भीतर से और अधिक निखार कर फौलाद बना देती है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है, इस टिप्पणी को पढ़कर सच मानिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी ही इबारत को दूसरे तरीके से लिखा गया हो, इतना मेल खाती ये टिप्पणी है। और चलिए अगले एक गीत की ओर बढ़ते हैं। अनुरोध फिल्म का गीत है, मन्ना डे और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

देखिए कितनी अच्छी बात कहता है ये गीत। इसका अर्थ कितना अच्छा है कि यदि आप बेसहारा हैं और किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो आप दूसरे का सहारा बन सकते हैं। जो तकलीफें आपने सही हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक साथी ने इसी तारतम्य में लिखा है कि महामारी के समय में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। उस वक्त मेरे अपने सगे मेरे साथ नहीं आए, लेकिन एक पड़ोसी मेरे साथ आया और मुझे हॉस्पिटल में दाखिल कराया। इसलिए कहता हूँ, कभी अपने ही गैर होते हैं और गैर अपनी जान जोखिम में डालकर मददगार साबित होते हैं। ऐसे शख्स उम्र भर अपने रहते हैं। बिल्कुल, आपने जो अनुभव किया, ईश्वर करे ऐसी नौबत किसी पर ना आए, लेकिन यदि ऐसी स्थिति में आपका उस व्यक्ति ने साथ दिया है, तो सच में लगता है मानो भगवान हमारे सामने आ गए हो, साक्षात भगवान ने ही अपने देवदूत को भेजा हो हमारे लिए। और अभी जो गीत आपने सुना था, उसका शब्द था सहारा। आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये गीत चित्रलेखा फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत।

एक साथी लिखते हैं, संवेदनाएं शब्दों में नहीं हृदय की निस्वार्थ धड़कनों से जन्म लेती हैं। जहां संवेदनाएं जीवित रहती हैं, वहां प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, विश्वास कभी टूटता नहीं। जहां मानवीय एहसास जीवित रहता है, वहां रिश्ते आत्मीय बनते हैं। जहां शब्द कम पड़ जाते हैं, वहां हृदय स्वयं बोलने लगता है। यही एहसास जीवन को अर्थ देता है, संबंधों को गरिमा देता है। एक साथी ने लिखा है, जीवन का गणित कोई समीकरण नहीं है कि जब चाहा सुलझा लिया। संवेदना का तत्व जीवन की को ज्योति देता है। जीवन तब तक अधूरा है जब तक इसमें अशांति बनी रहती है, और शांति के लिए ही इंसान तमाम प्रयास आजीवन करता रहता है। जीवन एक प्रयोगशाला है, यहाँ चंदन सी शीतलता है और अग्नि सी दाह भी। जीवन का पूरा सच केवल एक है, इसका पूरा संसार बहुत रहस्यमय है। परिस्थिति कोई भी हो, हमें बस जीते जाना है। और लीजिए, इसी के साथ सुनवाते हैं मौसम फिल्म का गीत, भूपेंद्र की आवाज में, गुलजार के बोल, मदन मोहन का संगीत। और इससे पहले जो गीत आपने सुना, उसका शब्द था मन। और पहचानिए कि इस अगले गीत का शब्द कौन सा है।

0: फुर्सत के।
1: किसी ने लिखा दिल शब्द है, किसी ने लिखा ढूंढता शब्द है। वाकई इस गीत में दोनों ही शब्द शामिल है, लेकिन हाँ, जिस शब्द को लेकर हमने इस गीत को चुना था वो शब्द है ढूंढता। तो आपने बिल्कुल सही कहा, कई साथियों ने लिखा है कि ये गाना बहुत ही शांति भरा और सुकून भरा लगता है, अच्छा लगता है, पसंद करने के लिए धन्यवाद। और अब आइए आपको सुनवाते हैं येसुदास की आवाज में सावन को आने दो फिल्म का गीत। फोक जामी ने इस गीत को लिखा है, राज कमल का संगीत।

तस्वीर शब्द आप सभी ने सही पहचाना है। एक साथी ने लिखा है कि हमें दुनिया से अलग गांव, यही विविध भारती का प्लेटफॉर्म जहां हम श्रोता रोज मिलते हैं। कितना प्यारा गांव है ये। जी हाँ, ये गांव ही तो है जहां हम सब मिलते हैं, बातें करते हैं, अपने दिल की बातें एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ये वो मंच है जहां हम दिल खोलकर बोल सकते हैं, और यदि कोई बात, यदि कोई नाराजगी हो

हो, कुछ हो तो हम यहाँ पर साझा करके उसका समाधान भी कर सकते हैं। जी हाँ, यूं ही हल्की फुल्की बातों के साथ आज का सुरीला सफर अब संपन्न करने की दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को।

0: 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in the final at the All England Club last night. This is Sinner's second consecutive Wimbledon men's singles title and his fifth Grand Slam crown. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court says determination of citizenship and foreigner status must be carried out through a fair, lawful and reasonable process. Sets aside Guwahati High Court's decision declaring 27 appellants as foreigners. Apex Court seeks status report from the SIT probing alleged misappropriation of donations in Ram Janmabhoomi Temple. President Draupadi Murmu takes cognizance of matter regarding Jharkhand workers affected by ammonia gas leak in Tamil Nadu, directs immediate action. Mortal remains of 15 Indians who died in Vietnam boat tragedy to be brought back home tonight by a Vietnam Airlines flight. Iran strikes U.S. military bases in Jordan, Bahrain and Kuwait in retaliation to U.S. attacks on its military targets. And in women's cricket, hosts England to resume their second innings at 130 for 6 against India in historic one-off test at the Lord's. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे।

0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र 1 महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज INS महेंद्र गिरी है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि INS महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है, जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का 3रा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने 2 वर्ष के अंदर जो झलक लगाई, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे कुछ नहीं हुआ, अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने FDI के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी

0: संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो, तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी

0: मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। तस्वीर फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में। डी एन मधोक ने इस गीत को रचा है, सी रामचंद्र का संगीत।

शोर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी मन्ना डे, महेंद्र कपूर और श्याम चित्तर की। राजकवि इंद्रजीत सिंह और तुलसी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी। मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को, रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
1: सुनने वाले सभी सखियों, श्रोताओं और सखा भाइयों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार और ममता जी आपको भी नमस्कार।
0: जी देखिए दीपा, कई बार क्या होता है कि कुछ परेशानियां आती हैं या कोई विपरीत परिस्थिति आती है, बस मन अधीर हो जाता है, बेचैन हो जाता है और कई बार दो राह पे हम खड़े होते हैं तो निर्णय की क्षमता लेने में बड़ी असुविधा होती है, समझ में नहीं आता कि हम इस तरफ जाएं कि उस तरफ जाएं, क्या करें। कई बार सड़कों पर भी ऐसा होता है कि हम खड़े होते हैं कि रास्ता राइट को जाएगा कि लेफ्ट को जाएगा। हालांकि अभी गूगल नाम के मास्टर ने बहुत आसानी कर दी है कि आपको मैप के जरिए आप सही रास्ते पर चले जाते हैं, बस कि नेट चल रहा हो आपका। तो ये जो मन जो अधीर हो जाता है, इस मन को साधने के लिए, शांत करने के लिए बहुत सारे नुस्खे अपनाने पड़ते हैं।
1: बिल्कुल, और इसी बारे में बात भी करेंगे हम ममता जी आज की, क्या किया जाए जब मन बहुत बेचैन है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, तो निर्णय लेना चाहिए या नहीं, या कभी गलत हो गया है आपके साथ तो हमारे सभी सुनने वाले बताएं कि क्या हुआ था, कभी कुछ गलत उनके साथ हुआ है या कहीं उन्होंने मन को शांत करके फिर बताई है बात, या कुछ ऐसा निर्णय को थोड़ा सा टाला है और बाद में उसको लिया है, ऐसा कुछ अनुभव उनके साथ अगर रहा है तो हमारे साथ अवश्य,
0: मतलब किन परिस्थितियों में वो अधीर हो जाते हैं और किस तरह से वो निर्णय ले पाते हैं अपने जो भी कार्य हैं, तो हमारे श्रोता बताएं विविध भारती के फेसबुक पेज पर आकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और सिर्फ इसी के बारे में उन्हें नहीं टाइप करना है बल्कि बारिश और लकड़ी के फर्नीचर, ये हमारा अगला मुद्दा है, अगला विषय है जिस पर उनकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहेगा कि बारिश में लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं वो खराब हो जाते हैं, कई बार दरवाजे तक बड़े टाइट हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, और कहीं पे दीमक लग जाती है, कहीं फूल जाते हैं या कहीं टेढ़े हो जाते हैं, तो इस तरह की कई सारी चीजों को हम

0: देखते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं, हम तो यहाँ विचार विमर्श करेंगे, चर्चा होगी, आपको भी क्या लगता है आप वो भी बताइएगा।
1: मैं नहीं, हमारे श्रोता जी। और इसके अलावा जब सुबह सुबह उठते हैं तो मन में सवाल सबसे पहले ये उठता है कि आज नाश्ते में क्या खाया जाए, नाश्ते में क्या बनाया जाए।
0: जी,
1: तो इस मुश्किल की आसानी के लिए पराठे, कई तरह के पराठे बनाए जाते हैं, कभी गोभी के पराठे, कभी आलू के पराठे, कभी पनीर के पराठे, और आप भी बनाती होंगी कई तरह के पराठे, दो चार पराठों के नाम बताइए आप भी।
0: जी, मूली के पराठे होते हैं, फूल गोभी के पराठे होते हैं,
1: पत्ता गोभी,
0: तो पत्ता गोभी की भी थी,
1: लौकी का पराठा भी बनता है,
0: लौकी का भी होता है,
1: प्याज का पराठा
0: जी, और अगर जरूरत पड़ जाए तो अचार का मसाला लगा के वैसा भी,
1: और सत्तू का पराठा बहुत टेस्टी होता है। तो आज हम श्रोताओं से जानना चाहेंगे पंजाब के भरवा पराठे कैसे होते हैं, अगर उन्हें जानकारी है, अगर वो नहीं लिख पाएंगे तो हम उन्हें बताएंगे पंजाब के भरवा पराठे के बारे में
0: जी,
1: कि कैसे बनते हैं। और कथा सुधा जो हमारी सीरीज चल रही है, आज इसका दूसरा भाग सुनवाएंगे, दो बहने का। तो फिलहाल एक गाना सुन लें हम।
0: चलिए।

0: ममता जी, पिछले सोमवार को हमने सुना कहानी, प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। इसका हमने पहला जो कड़ी उसकी सुनी थी, आज हम सुनेंगे उसकी दूसरी कड़ी और ये अंतिम कड़ी होगी। तो चलिए, हमारे सारे श्रोता भी बहुत आतुरता से इसका इंतजार कर रहे हैं।
1: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। पिछली कड़ी में आपने सुना
2: दो बहनें

0: दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है।
1: इस दो साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी दो चार दिन के लिए मांग लिए हो, उसे ये स्वांग मुबारक रहे। मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं।
0: राम दुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा,
2: जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं?
0: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़ोरे दिमाग, गोया उसका शौहर लाठ ही तो है। अकड़ कर बोली,
1: हाँ तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है।
0: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी।
3: रूप कुमारी क्या राम दुलारी की असलियत जान सकेगी? छानबीन कैसे करेगी, असलियत क्या है, जानने के लिए सुनिए अत्यंत रोचक कहानी दो बहने की दूसरी कड़ी।
1: मगर क्या सचमुच इस ख्याल से मुझे तस्कीन होगी? यहाँ कौन ईमानदार है, वही जिसे बेईमानी का मौका नहीं है और न ही इतनी हिम्मत है कि वो मौका पैदा कर ले। मेरे शौहर 75 रुपए माहवार पाते हैं, मगर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाए तो वो खुश होकर न लेंगे? उनकी ईमानदारी और उसूल परवरी उस वक्त तक है जब तक मौका नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला सारे उसूल परवरी धरी रह जाएगी, और तब तक मुझ में इतनी अखलाकी कुवत है कि मैं अपने शौहर को नाजायज आमदनी से रोक दूं। रोकना तो दरकिनार, मैं खुश होऊंगी, शायद मैं अपने शौहर की पीठ ठोकूं। अभी उनके दफ्तर से वापसी के वक्त मन मारे बैठी रहती हूं, तब दरवाजे पर खड़ी होकर उनका इंतजार करूंगी, और जूं ही वो घर आएंगे उनकी जेबों की तलाशी न लूंगी।
0: आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा। कोई गाए कोई नाचे, उसे कोई सरोकार नहीं। वो बदनसीब है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात के मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, यक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा,
2: इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन, मुझे लेने के लिए अभी कार आती होगी, 2-4 दिन मेरे यहाँ रह लेना फिर चली जाना, मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी।
0: रूप कुमारी का आखिरी हरवा भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर दरियाफ्त हाल की ख्वाहिश यकायक फना हो गई। अब वो अपने घर जाएगी और मुंह ढाप कर पड़ रहेगी। इन फटे हालों क्यों किसी के घर जाए। बोली,
1: अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, फिर कभी आऊंगी। हाँ अभी नहीं।
2: बहन क्या रात भर भी नहीं ठहरोगी?
1: नहीं, वो मेरे सर में जोर का दर्द हो रहा है, फिर कभी।
2: अच्छा तो बताओ फिर कब आओगी, मैं कार भेज दूंगी। कार
1: अब खुद कहला दूंगी। हाँ
2: अरे बहन तुम्हें याद न रहेगा, साल भर तो हो गया, भूल कर भी याद नहीं किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलाए तो चलूं। एक शहर में रहते हैं फिर भी इतनी दूरी कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात ही न हो।
1: घर के फिक्रों से फुर्सत ही नहीं मिलती। कई बार इरादा किया कि तुझे बुला भेजूं, मगर मौका ही न मिला।
0: इतने में राम दुलारी के शौहर मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली

0: तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने खाना पकाने का ठेका तो नहीं लिया है, और जो रात भर वहीं रह जाती, आखिर एक महराजिन क्यों नहीं रख लेते? या जिंदगी भर मुझे को पीसते रहोगे?
1: उमानाथ ने उसकी तरफ मजलूम और सवाले हैरत की निगाह डाली। इस व्यवहार का कोई सबब उसको समझ ना आया। रूप कुमारी से इन्होंने हमेशा बेउज्र इताअत पाई थी, बेउज्र ही नहीं खुश दिलाना भी। उन्होंने कई बार उससे महराजिन रख लेने की तजवीज और ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर उसने हमेशा यही कहा,
0: अब आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूंगी? हाँ, आप भी 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फायदा? और हाँ, ये रकम जो बच रहेगी तो बच्चों के लिए मक्खन आ जाएगा, है कि नहीं?
1: वही रूप कुमारी आज इतनी बेदर्दी से शिकायत कर रही है। अपनी सफाई पेश करते हुए उमानाथ बोले,
2: महराजिन रखने के लिए मैंने तुमसे कई बार कहा है।
0: तो लाकर क्यों नहीं दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते? तुमने कभी सच्चे दिल से कहा? महज महराजिन लाने के लिए कहा। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का ख्याल आया ही नहीं। तुम तो खुश थे, अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है। इतनी सस्ती लौंडी और कहां मिलेगी? महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर भर की जरूरतों से बचे। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्योत करनी पड़ती है। क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं? तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। वो मर्द ही होते हैं जो बीवियों के लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाते। गुरु सेवक को ही देखो, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है। और राम दुलारी रानी बनी बैठी है। तुम्हारे लिए ये 75 ही बहुत हैं। तुम नाहक ही मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी बासी साग हूं। तुम्हें कोई तकलीफ होती ही नहीं। तुम्हें तो भाई अच्छे कपड़े भी चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि तुम मर्द हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं, तुम्हारी बला से।
1: यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे। अपने दानिश्त में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया।
2: अब मेरी तनख्वाह कम है जरूर, मगर ये मेरे बस की बात तो है नहीं। दिल लगाकर अपना काम करता हूं, अफसरों को खुश रखने की हमेशा कोशिश करता हूं। इस साल बड़े बाबू के छोटे साहबजादे को 6 महीने तक बिला नागा पढ़ाया, इसलिए तो वो खुश हैं। और अब मैं क्या करूं?
1: रूप कुमारी की नाराजगी का राज तो उन्हें मालूम हो गया। अगर गुरु सेवक 500 रुपया लाता है तो बेशक खुशनसीब है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। उसे ये मौका मिल गया, दूसरों को ये मौके कहां मिलते हैं? वो तहकीक करेंगे कि वाकई उसे 500 रुपये मिलते हैं या महज गप है। बिलगरज मिलते होंगे तो इस पर क्या रूप कुमारी को यह हक है कि उन्हें निशाना या मलामत बनाए? अगर वो इसी तरह रूप कुमारी से ज्यादा हसीन खुश सलीका औरत देखकर उसे कोसना शुरू कर दे तो कैसा हो? रूप कुमारी हसीन है, शीरी जबान है, खुश मजाक है, बेशक, लेकिन इससे ज्यादा हसीन, ज्यादा शीरी जबान, ज्यादा खुश मजाक औरत दुनिया में मालूम नहीं है। एक जमाना था जब उनकी नजरों में रूप कुमारी से ज्यादा हसीन औरत दुनिया में न थी, लेकिन वो जुनून अब बाकी नहीं रहा। जज्बात की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आए उन्हें एक मुद्दत गुजर गई, एक दूसरे के ऐब और हुनर मालूम हो गए। अब तो साबिर और शाकिर रहकर ही उनकी जिंदगी आफियत से कट सकती है। रूप कुमारी इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से हमदर्दी हुई। उसकी सख्त कलामियों का उन्होंने कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन का ठाट देखकर एक लम्हा के लिए रूप कुमारी के दिल में ऐसे दिलशिकन

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली, और कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब मन में अगर कुछ ठान ले तो बहुत मुश्किल काम आसान लगता है, क्या कहेंगी दीपा जी आप?
1: ये बात सही है कि जब मन को अगर आपने ठान लिया तो बात आसान होगी, लेकिन जब ये मन अधीर हो जाता है ममता जी, अधीर मन में निर्णय लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से जो परिणाम आते हैं वो भी हो सकता है कि गलत हो सकते हैं, है ना?
0: अब जी, हमारे जी, बहुत सारे श्रोता देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, इनका क्या कहना है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अधीर मन अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है और छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता है। इसके विपरीत क्षमता और धैर्य मनुष्य को परिस्थितियों को समझने, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। जबकि मन में धैर्य और क्षमा का भाव होता है तब संबंध मधुर बनते हैं और जीवन में शांति बनी रहती है। बहुत कुछ इन्होंने कह डाला है और भी कुछ लिखा है, तो आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है, जरा देखिए आप।
1: ये कहते हैं कि अधीर मन निर्णय की गति को बढ़ा सकता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता है वो घटा सकता है, और वहीं शांत और संतुलित मन अधिक विवेकपूर्ण और टिकाऊ निर्णय लेने में मदद करता है।
0: और अब अगले श्रोता ये कह रहे हैं कि अधीर मन मतलब जल्दबाजी या व्याकुलता, इसमें निर्णय क्षमता एक दूसरे से विपरीत काम करते हैं। जब मन अशांत होता है तब सटीक या सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, इसके चलते अधूरे तथ्यों पर प्रतिक्रिया दे देते हैं, जिसके कारण बाद में पछतावे की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी निर्णय लेना हो उसे शांत चित्त से लें।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक और संदेश ये कहता है ममता जी कि मनुष्य का मन जितना चंचल है उतना ही अधीर भी। हर एक बात का उत्तर वो तुरंत चाहता है और हर समस्या का समाधान बिना प्रतीक्षा के खोजता है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर सही दिशा नहीं दिखाता और कई बार जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर पछताना भी पड़ता है, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए जब भी मन अधीर हो तो स्वयं को थोड़ा सा हमें समय देना चाहिए, थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें, उसके बाद ही निर्णय हमें आगे लेना चाहिए जीवन।
0: और थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कि अभी तुरंत निर्णय ले लें, वक्त पे छोड़ देना चाहिए, ये भी जरूरी होता है। हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि इंसान का मन तालाब के जल की तरह होता है, मन में उत्पन्न हो रहे विचार पानी में फेंके गए कंकड़ की तरह है, खासकर उस परिस्थिति में जब हम हर वक्त अधीरता में रहे। अधीरता यानी कि बेचैनी, अधीरता में किया गया निर्णय मन की शांत सतह पर लहरों की तरह आता जाता है और हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं, लेकिन अगर हम अपनी बेचैनी पर थोड़ा सा अंकुश लगा लें तब हम स्पष्ट रूप से शांत पानी के नीचे तक देख सकते हैं। जब मन बहुत अधिक बेचैन हो तो उसे कुछ समय के लिए तन्हा छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। वैसे भी जब आपको कुछ ना सूझे तो आप अकेले शांत चित्त होकर बैठ जाएं, वो कहते हैं कि खाली बर्तन की तरह मन को खाली कर दें।
1: बिल्कुल,
0: तो देखिए आप
1: थोड़ा सा हम अगर
0: सोच सकते हैं सही तरीके से,
1: सही, और थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए। मान लीजिए बहुत ही ज्यादा व्याकुलता अपने अंदर घिर आई है, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा अपनी सांसों को देखिए, गहरी सांस लीजिए, तो सच में कुछ वक्त के बाद हमें लगता है कि हम मन भी शांत हो गया है और शायद हम कुछ अच्छे से सही और सकारात्मक भी सोच सकते हैं। एक संदेश ये कहता है ममता जी कि एक चंचल और अधीर मन कभी भी तार्किक और सही निर्णय नहीं ले सकता। जीवन या कार्यस्थल, यहाँ पर तरक्की के लिए मन की स्थिरता को बढ़ाना और जल्दबाजी की आदत को छोड़ना ही एकमात्र मार्ग है। और एक और संदेश ये कहता है कि अधीर मन के निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल जीरो रहती है। कुछ धैर्यवान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति धैर्य से थोड़ा शांत होकर सही निर्णय ले सकते हैं, फिर कुछ लोग जो सही में हमदर्द होते हैं उनसे अपने मन की अधीरता को आप साझा कर सकते हैं और वहां से भी शायद आपको सही निर्णय मिल सकता है।
0: अब ये तो अधीर मन से कैसे निर्णय लेते हैं ये बताया, लेकिन कभी किसी श्रोता ने अपना अनुभव नहीं साझा किया है कि कब ऐसी परिस्थिति आई जब आपको निर्णय लेना पड़ा, निर्णय आपका सही था या गलत था। एक गाना सुन लेते हैं, शायद तब तक हमारे श्रोता लिख भेजे और हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा सके। फिलहाल ये गाना

0: ममता जी, फिर भी अगर ऐसा है कि मन तो अधीर ही रहता है और एंजाइटी बनी रहती है, तो बहुत जरूरी है कि अपने आप पर हम काम करें। जैसे कि हम शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि हमें लगे कि तनाव कम हो, कि कहीं पे सैर के लिए निकल जाना या कहीं कोई ऐसा ग्रुप क्लास कर लेना जहां पे कि आपको अच्छा लगे, मिलके लोगों के साथ व्यायाम करना या कोई मनोवैज्ञानिक सहायता ले लें। अगर आप बार बार ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातें हमें बहुत परेशान कर जाती हैं, हम एक थोड़ी सी अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जरा सा हलचल हुआ या कुछ उठा पटक हुई तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या किया जाए, हम क्या करें।
1: अब देखिए ना, हमारे एक

0: श्रोता ने लिखा है, इनकी टिप्पणी अभी अभी आई है, मुझे ऐसा लग रहा है। मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जिसे जितना अधिक प्राप्त होता है ये उतने ही अधिक की कामना करने लग जाता है। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं तो सीमित हैं, लेकिन मानसिक रूप से हर क्षण जन्म ले रही इच्छाओं के कारण मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं रह पाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि तन की भूख सहज है और जैसे कि तीन पाव की सेर, मन की भूख अनंत है, निगले मेरु समेरु। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन इच्छा करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, अधीर मन से तो हम बीच रास्ते में ही अटक या लटक सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा कि अधीर मन से हम बीच रास्ते में अटक जाते हैं और यही प्रतिकूलता को का सामना करने के लिए हमें अपने आप को एक समर्थ बनाना पड़ता है। कोई शौक हम अपना सकते हैं, पसंदीदा गीत सुनिए, कोई ऐसी क्लास कीजिए, कहीं पे जाइए जहां से आपका मन हमें कुछ प्रसन्नता पाए, अच्छा लगे उसे। तो जब आप घर वापस लौटें तो आप जब खुद एक अंदर से सकारात्मक वाइब्रेशन लिए हुए होंगे तो घर में भी वही चीजों को आगे फैलाएंगे। तो मन को शांत रखने के लिए अपनी आदतों को बदलना जरूरी है, कुछ व्यायाम करना जरूरी है, आत्मविश्वासी थोड़ा बनना जरूरी है और आगे भविष्य के लिए एक स्पष्टता के साथ फिर हम निर्णय भी ले सकते हैं।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि अधीर मन शांत दिमाग से निर्णय लेने का किस्सा मैं बताना चाहूंगा कि बात 2023 की है। छोटे बेटे ने MBBS का एग्जाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और काउंसलिंग सेकंड राउंड में मेडिकल कॉलेज अजमेर में सीट फुल हो गई थी और अन्य गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था। घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के जो टीचर्स थे वो भी राजी थे, सिर्फ मैंने शांति से निर्णय लिया और थर्ड काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अजमेर में एडमिशन मिल गया। मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा इंतजार करो, इंतजार के बाद भी कई बार आपके निर्णय जो सही निर्णय होता है वो सही हो जाता है।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे साथी ने एक घटना साझा की है, वो ये कहते हैं कि एक बार ऑफिस में मेरी अपने सीनियर के साथ किसी बात को लेके बहस होने वाली थी। उन्होंने मुझे तुरंत बात करने के लिए बुलाया, लेकिन उस समय मुझे लगा कि मेरा मन शांत नहीं है, इसलिए मैंने उस समय चर्चा करने के बजाय थोड़ा समय लिया। शाम को जब हमने बात की तब तक मेरा मन बिल्कुल शांत हो चुका था। हमने आराम से बातचीत की और बात भी अच्छे से सुलझ गई। तो ये कहते हैं कि अगर मैं उस समय गुस्से या आवेश में बात कर लेती तो शायद बात और बिगड़ जाती।
0: तो मतलब क्षणिक और आवेश में लिया गया निर्णय कई बार आपको पछतावा का कारण भी बन जाता है। अब ये बारिश का मौसम तो है ही है, हालांकि मुंबई में भी बारिश रुकी हुई है, लेकिन देश के बहुत सारे हिस्सों में बारिश हो रही है और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर बारिश हो ही नहीं रहे, लोग इंतजार कर रहे हैं बड़ी तत्परता से। लेकिन बारिश आती है तो कुछ सुहावना मौसम कहते हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं तो बुराइयां भी लेकर आती हैं, कुछ परेशानियां भी लेकर आती हैं।
1: जैसे कि
0: बारिश का मौसम सुहाना लगे, फर्नीचर है और लकड़ी के फर्नीचर है खासतौर से, उसमें कई बार दीमक लग जाता है, आपने शुरुआत में कहा था, और कई बार दरवाजे कड़े हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, जो चर की आवाज करते हैं, चर चू, और अगर आप गहरी नींद रात को सो रहे हो और कोई उठे और दरवाजा खूब जोर से आवाज करे तो आपकी नींद भी बाधित होती है। तो इसलिए इनकी देखरेख करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए लकड़ी की अलमारी ठीक से बंद ना हो रही हो, दराज अटकने लगे, चिपकने लगे और हमारे सोफे में से अलग सी गंध आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि बाहर की नमी का असर हमारे फर्नीचर पर होने लगा है और किसी को बुलाकर, किसी मिस्त्री को बुलाकर आपको उसे ठीक करवाना चाहिए,
1: ठीक भी कराना चाहिए। और कई बार ममता जी हम परेशान हो जाते हैं कि ये फर्नीचर क्यों इस तरह फूलने लग जाते हैं, तो छोटी छोटी सी बातें कुछ ऐसे कारण है, जैसे कि हवा में नमी बढ़ जाती है, लकड़ी उसे जल्दी सोख लेती है और इसलिए फर्नीचर फूलने लग जाते हैं या मुड़ जाते हैं। नमी की वजह से दरार और जॉइंट्स भी ढीले हो जाते हैं फर्नीचर के और लंबे समय तक नमी रहने से लकड़ी में फंगस और दीमक लगने का रिस्क बढ़ जाता है। और कई बार हमने ये भी देखा है ममता जी कि पॉलिश भी उतरने लग जाती है, लकड़ी की चमक थोड़ी फीकी सी पड़ जाती है और अगर कमरे में वेंटिलेशन मतलब हवादार कमरा नहीं है तो वहां पे आप देखेंगे कि नुकसान ज्यादा होने लग जाता है अपने जो भी फर्नीचर है उस कमरे के।
0: और हमारी एक सखी है जिन्होंने कुछ नुस्खे भी बताए हैं कि इनकी हिफाजत के लिए फर्नीचर को हमेशा नमी और बारिश की बौछारों से

0: दूर रखें। उन पर पॉलिश या वैक्स की कोट कराएं और नियमित रूप से सूखे कपड़े से पोंछती रहें। इन दिनों में फर्नीचर को कभी भी गीले कपड़े से ना पोंछें। सफाई के लिए हमेशा सूखे और मुलायम कपड़े का उपयोग करें ताकि नमी अंदर ना जाए, और अलमारी और दराजों में सीलन और फंगस से बचने के लिए एक जेल का नाम लिखा है उस जेल के पैकेट का उपयोग करें, या नेफ्थलिन की गोलियां या कपूर की गोलियां वहां पर रख सकती हैं। जबकि होता क्या है कि आपकी जो सहायिका है, काम करने वाली आती है, एक कपड़ा गीला करती है और पूरे घर में वो पोंछ देती है, सारे अलमारी जितने टेबल हैं, कुर्सियां हैं, तो वो नमी तो आएगी ही उसमें।
1: बिल्कुल सही कहा, और इन सब चीजों का भी ध्यान तो रखना ही है। साथ में जब बारिश बहुत ज्यादा होने लगेगी तो मानसून के समय दीवारें, खासतौर पर बाहरी दीवारों में नमी बहुत जल्दी सोख लेती है, तो अगर आपकी अलमारी या बिस्तर दीवार से सटा हुआ है तो वो नमी सोख लेगा, तो उसे बस 2-3 इंच थोड़ा सा इन दिनों में जब बरसाती मौसम रहेगा तो उसे थोड़ा सा आगे खींच लीजिए, और इस छोटे से गैप के पीछे हवा का जब प्रवाह बन जाएगा तो लकड़ी में पानी जाने से रुक जाता है, और तेज बारिश के बाद एक बार फिर इसकी जांच आपको बीच बीच में करते रहना बहुत जरूरी है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी एक प्राकृतिक सामग्री है जो मौसम के बदलावों, पानी और धूल के प्रति बेहद संवेदनशील होती है। इसकी चमक और मजबूती को बरकरार रखने के लिए आपको कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानियां और उपाय दिए गए हैं, और बहुत सारे उपाय इन्होंने लिखे हैं। गहरी सफाई के लिए कपड़े को गुनगुने पानी और माइल्ड सोप के घोल में भिगोकर अच्छी तरह से निचोड़ लें। साफ करने के तुरंत बाद सतह को सूखे कपड़े से पोंछना न भूलें। और इन्होंने लिखा है कि केमिकल से बचें और ब्लीच या अमोनिया युक्त रसायनों का सीधे लकड़ी पर उपयोग करने से उसकी फिनिशिंग पूरी तरह से खराब हो सकती है। धूप और तापमान से सुरक्षा, सीधी धूप से दूरी रखें, और भी कुछ सावधानियां इन्होंने बताई हैं जिससे आप अपने फर्नीचर को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अब हम क्या कर सकते हैं?
0: गाना सुनवा सकते हैं, तो ये रहा गाना।

0: प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म का ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे। और हम बात गाने से पहले लकड़ी के फर्नीचर की कर रहे थे कि किस तरह से हिफाजत करें, लकड़ी के फर्नीचर जल्दी से खराब हो जाते हैं बारिश के मौसम में,
1: और तो जब बहुत शौकीन होते कोई फर्नीचर इकट्ठा करने के, और बड़े कीमती और नक्काशीदार फर्नीचर अगर किसी ने रखा हुआ है घर में और ऐसे में कहीं पे कहीं कोई सीलन से दिख जाती है या कोई फफूंद दिख जाती है तो वाकई में लगता है कि चैन हमारे मन को नहीं मिल रहा है ना।
0: बिल्कुल सही कह रही। और जो फंगस दिखाई देता है खास तौर से सोफा है, कुर्सियां हैं, डाइनिंग टेबल है, तो उसमें उसको जरूरी हो जाता है धूप दिखाना। लेकिन आप बताइए कि मुंबई जैसे शहर में जब बारिश होती है तो लगातार बारिश होती है ना, कई कई दिन तक, यहाँ तक कि 10-10 दिन तक धूप नहीं आती, धूप कहाँ से लाएंगे आप?
1: बिल्कुल लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ सूखे कपड़े से ही अपने फर्नीचर को साफ कीजिए। अगर आपके घर में जो हाउस हेल्प जो आती हैं, मदद करती हैं जो दीदी, उन्हें भी बिल्कुल आप सख्त उस वक्त तो हिदायत दे देनी चाहिए कि गीले कपड़े से बिल्कुल पोंछना नहीं है, सूखे और मुलायम कपड़े से अपने फर्नीचर को पोंछा जाए, क्योंकि धूप का पता नहीं है कब आएगी, खास तौर पे मुंबई जैसे शहर की अगर आप बात करते हैं तो। और
0: फर्नीचर के लिए सही कवर भी जरूरी होता है कि जैसे कॉटन या कोई ऐसा फैब्रिक जिसमें कि हवा आसानी से आ जा सके, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और समय समय पर कवर हटाकर हवा भी लगाते रहना चाहिए। और अलमारी या ड्रॉर को समय समय पर कुछ देर के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, इससे नमी अंदर नहीं जमा होगी। कपड़ों और सामान को पूरी तरह सुखा कर ही अंदर रखना चाहिए। एक तरीका और है कि आप जब अलमारी और दराज खोलें तो तेज फैन चला दें, तो वो जो हवा होती है कृत्रिम हवा ही सही हवा लगेगी, तो हवा लगे। जो नमी है वो बिल्कुल कम हो जाती है।
1: और बहुत ही ज्यादा अगर आपको लगता है कि घर में नमी सोख गई है तो हम डीह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में कपूर की टिकिया आप अलमारी में रख लीजिए, या नीम की सूखी पत्तियां भी कहीं कहीं लोग कहते हैं कि उसको रखने से भी जो अंदर अलमारी के अंदर खासतौर पे कोई सीलन आ गई है या नमी है वहां पे इकट्ठी हो गई है तो वो सब बाहर निकल जाती है या सोख लेता है वो। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख कर सकते हैं। और देखिए ना, फर्नीचर कोई बार बार हमारे घरों में बनते नहीं है ममता जी, तो जो भी है जितने भी हमारे पास ये जरूरी सामान और कीमती चीजें, इनका हम ऐसी छोटी छोटी बातें अपना करके इनका हम ध्यान रख सकते हैं।
0: और दीपा जी, जब फर्नीचर की बात कर रही हैं, जो कुर्सियां होती हैं, टेबल होती हैं, डाइनिंग टेबल भी होता है ना घर पर, डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्या करते हैं हम?
1: खाना खाते हैं।
0: तो आज किस खाने की बातें करने वाले?
1: आज हम चलेंगे पंजाब की तरफ, जहाँ पे कि भरवा पराठे के लिए ये प्रदेश प्रसिद्ध है। यहाँ पे अलग अलग तरह के बहुत तरह के भरवा पराठे बनते हैं। हमारे सखियों ने लिख भी भेजा है कि ये किस तरह बनाया जाए, तो हम रेसिपी बताएं या एक गीत सुने पहले?
0: नहीं, पहले रेसिपी बताएंगे, क्योंकि एक हमारी सखी ने लिख भेजा है कि पेड़ा लस्सी पंजाब का एक प्रसिद्ध और समृद्ध प्रादेशिक पारंपरिक पेय है, जो मुख्य रूप से अमृतसर शहर में बेहद लोकप्रिय है। ये सामान्य लस्सी का एक बेहद शाही और पारंपरिक पंजाबी पेड़े मावा खोए की बनी मिठाई को एक साथ मथ कर तैयार किया जाता है। क्या बात है भाई, ये तो अलग तरह की रेसिपी पता चली है
1: जी। ये अलग की रेसिपी है, लेकिन हमने अपने श्रोताओं से मांगी थी, सखियों से मांगी थी भरवा पराठों की रेसिपी। तो भरवा पराठे में जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, बहुत तरह के पराठे होते हैं, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर का पराठा, मूली का पराठा। तो दो पराठों के बारे में पहले बता देते हैं हम। आलू का पराठा जैसे सभी जानते हैं लोकप्रिय है, सभी का पसंदीदा नाश्ता होता है। उबले हुए, मैश किए हुए आलू में प्याज, हरी धनिया, अजवाइन, मिर्च या आपके घर में जो पसंद आता है वो सब डाल के, मसाले डाल के ये मिश्रण तैयार करना है। और गेहूं के आटे तो जैसे घरों में लगता है वैसा ही लगेगा। इस मसाले को आटे के अंदर भर के लोई बना के हम जैसे साधारण पराठे बनते हैं उस तरह से इसे बनाना है। और इसी तरह से गोभी

0: का पराठा भी बना सकते हैं आप। कद्दूकस की हुई ताजी गोभी ले लीजिए, उसमें मसाले अदरक लहसुन ये सबको डालकर एक हल्का सा इसके भून लीजिए ताकि वो कच्चापन उसमें ना लगे और पराठा भी गीला ना हो, अंदर का जितना भी उसका मॉइस्चर है वो सूख लेता है बघार करने से। और इस तरह से एक और पराठा भी बना सकते हैं, पनीर का पराठा। तो कद्दू किस किए हुए पनीर, फिर लाल मिर्च, गरम मसाला, कसूरी मेथी, या इसके अलावा आप कोई भी मसाले इसमें डाल सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर होता है ये वाला पराठा जो पंजाब में बहुत प्रसिद्ध है।
1: और मटर का पराठा भी बहुत प्रसिद्ध है
0: जी।
1: जो मटर, हरी मटर को अच्छी तरह से पहले तो छिलका निकाल के उसको धोकर और बॉईल कर लें, उबाल लें, और उबालने के बाद उसके दो तरीके होते हैं, या तो उसको मैश कर लें या फिर मिक्सी में उसको क्रश कर लें, क्रश करके आटे में मिला लें। दूसरा तरीका ये होता है कि उसको मैश करके थोड़ा सा कढ़ाई में भून लें ताकि उसकी जो पानी होता है निकल जाए, और उसमें जो भी लहसुन अदरक प्याज हरा धनिया हरी मिर्ची डालकर आटे में, आटे की लोई बना के उसमें भर ले, वो भरवा पराठा जैसा कि हमने कहा ही है, तो तवे पर सेक ले। पराठा बनाने का तरीका तकरीबन एक ही होता है पर स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। तो हमारी जो सखियां और सखा सुन रहे हैं, हमें लगता है कि बनाएंगे, आजमाएंगे और बताएंगे हमें, और फिर किसी दिन किसी और प्रदेश की व्यंजन की हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गाने के, सुनवा रहे हैं ये गाना।

मासूम फिल्म का गाना था, आरती मुखर्जी की आवाज, गुलजार के बोल थे, राहुल देवर्मन का संगीत था। और अब घड़ी की ओर देख रहे हैं दीपा जी, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं, लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत।

0: नामा।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेश ओझा जो यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में। और डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित

0: सेहतनामा।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेश ओझा जो यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में। और डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया है आज प्रोस्टेट विषय पर बात करने के लिए और यूरिन से जुड़ी हुई और जो अन्य बीमारियां होती हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर उमेश ओझा विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। ये मेरी खुद किस्मती है कि मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ और इतने लोगों तक मेरी आवाज पहुँच रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, और विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हैं तो हमें ये पता चला है कि आप गानों के बड़े शौकीन हैं, संगीत से भी प्यार करते हैं, तो एक सवाल हमारा ये है कि विविध भारती के स्टूडियो में आपको आकर एहसास कैसा हो रहा है?
2: पुरानी यादें ताजा हो रही है
1: जी।
2: उस जमाने में विविध भारती ही एक ऐसी चैनल थी जिसके द्वारा हम अच्छे अच्छे गाने सुनते थे। इवन इन मेडिकल प्रोफेशन जब हम थक जाते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, यही रेडियो की आवाज, यही आप लोगों की आवाज और यही अच्छे गाने हमें कुछ एक रिलैक्सेशन देते हैं और अगली चैलेंजेस के लिए वापस तैयार कर देते हैं। सो विविध भारती एक ऐसी संस्था है, इतने सालों से हम विविध भारती के बिना कभी नहीं सकते हैं और आज भी ये देख के बहुत खुशी होती है कि इतने कॉम्पिटिटिव जमाने में विविध भारती ने भी इतना ही प्रोग्रेस किया है कि अभी भी वो इतनी ही पॉपुलर संस्था है और कभी भी चांस मिला वापस विविध भारती में गाने सुनने की हमेशा इच्छा रहती है।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, हमें बड़ा गौरव का एहसास होता है जब आप सबकी इस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। तो आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज सेहतनामा कार्यक्रम में जो हमने विषय रखा है वो है प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी हुई अन्य बीमारियां और बीमारियों के निवारण। तो बताइए हमारे श्रोताओं को कि पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना आजकल बहुत आम हो रहा है, तो प्रोस्टेट का बढ़ना क्या है और शरीर में इसका मुख्य काम क्या होता है?
2: राइट, हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि रहती है
1: जी।
2: उनका कार्य है कि वो जूस सिक्रेट करता है जो हमारे वीर्य या सीमन का पार्ट रहता है और ये जूस जो स्पर्म्स रहते हैं उनको न्यूट्रिशन देता है
1: जी।
2: आफ्टर एज ऑफ 40 धीरे धीरे शरीर में हार्मोन के बदलाव से प्रोस्टेट की ग्रंथि में चेंजेस शुरू होते हैं और धीरे धीरे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है
1: जी।
2: और प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से, क्योंकि प्रोस्टेट की पोजीशन हमारे यूरिन के ब्लैडर के नीचे जो यूरिनरी पैसेज है उसके सराउंडिंग प्रोस्टेट वहां बनी रहती है
1: जी।
2: और जब भी ये ग्रंथि बढ़ती है तो ये यूरिनरी ट्यूब पे दबाव आने से यूरिन करने की दिक्कतें बढ़ने लगती है। सो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रोस्टेट के जो प्रॉब्लम्स है एज एज एडवांसेस, जैसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है प्रॉब्लम बढ़ते हैं। सो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम एज रिलेटेड है और जैसे एज बढ़ती है लोगों की प्रोस्टेट बढ़ने लगती है और उनके प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट डजंट मीन के वो प्रॉब्लम देने वाली है या उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। सो प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है
1: जी। तो आपने जिक्र किया कैंसर का, तो अमूमन जैसे ही प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है लोग यही मानते हैं कि अब उनको कैंसर होना पक्का है, आगे चल के कैंसर हो जाएगा, तो ये कहां तक मिथ है, कहां तक इसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए कि प्रोस्टेट किस तरह की बीमारी है और कैंसर क्या है?
2: राइट, सो हर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से कैंसर होता है ये गलत बात है और ये मिथ है। आजकल लोग इतनी इंफॉर्मेशन के कारण जब ये सब चीजें पढ़ते हैं सुनते हैं बहुत घबरा जाते हैं। दूसरी बात हुए कि रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत अच्छी बात है
1: जी,
2: लेकिन वहां कहां भी रिपोर्ट्स में पढ़ लिए कि प्रोस्टेट बढ़ गई है लोग एकदम चिंतित हो जाते हैं
1: जी, जी।
2: और फिर डॉक्टर गूगल के पास जाके काफी इंफॉर्मेशन जमा करते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन होना महत्व का है
1: हाँ।
2: लेकिन उसके कारण अन्य

0: अननेसेसरी टेंशन लाना जरूरी नहीं है.
1: बिल्कुल.
0: सो हर प्रोस्टेट बढ़ने से उनमें कैंसर होगा, ये बात सही नहीं है. लेकिन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जो बिनाइन है नॉर्मली, उसके साथ में कैंसर भी हो सकता है. सो ओनली थिंग इज रेगुलर चेकअप बाय एन एक्सपर्ट, जिसके कारण अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो समय सर हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और समय सर उसे हम ट्रीट कर सकते हैं. लेकिन प्रोस्टेट बड़ी या एनलार्ज प्रोस्टेट हुई उसका मतलब अभी कैंसर हो जाएगा, ये गलत बात है. और अननेसेसरी उसके बारे में टेंशन रखना वो ठीक नहीं है.
1: बिल्कुल. तो प्रोस्टेट बढ़ा है और क्या है इसके लक्षण, कैसे पता चले एक मरीज को, और दूसरा इसकी जांच की पद्धति क्या है, किस तरह के टेस्ट होते हैं?
0: राइट. पहली बात मैंने बताया, ऐसे हेल्थ चेकअप में काफी समय रिपोर्ट में आएगी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो बढ़ी हुई प्रोस्टेट के लिए या एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है.
1: जी.
0: प्रोस्टेट के लिए हम तीन चीजें देखते हैं.
1: जी.
0: एक कैंसर नहीं, वो हम चेक करते हैं. दूसरी बात, उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस या किडनी डैमेज नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं. और तीसरी बात कि उनके सिम्टम्स के कारण पेशेंट को कितनी दिक्कतें होती है, उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है.
1: जी जी.
0: सो जब रिपोर्ट दिखाता है कि एनलार्ज प्रोस्टेट है, पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं, वो चेकअप किया इसलिए एनलार्ज प्रोस्टेट करके वो दिखा रहा है,
1: जी,
0: ऐसे पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तपास करनी जरूरी है.
1: जी जी.
0: सिम्टम्स जिनको प्रॉब्लम देते हैं उनको दो प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं.
1: जी.
0: एक जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स और वॉइडिंग सिम्टम्स, जहां यूरिन करने में दिक्कत, यूरिन की धार वीक होना, यूरिन के लिए जोर करना, यूरिन के लिए बार बार जाना. और दूसरी जो है इसे हम स्टोरेज सिम्टम्स कहते हैं. उसके कारण जब यूरिनरी ब्लैडर पे असर होता है तो कभी कभी पूरी यूरिन निकलती नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना, कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाना, ये सब सिम्टम्स बाहर आने लगते हैं.
1: जी जी.
0: लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये सब सिम्टम्स खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही, ऐसी बात नहीं है. बाकी रोगों के कारण भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं.
1: जी.
0: जैसे डायबिटीज, जहां डायबिटीज के कारण काफी लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है. न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे पार्किंसंस डिजीज, जिसके कारण, या पथरी ब्लैडर में रही. सो ये सब सिम्टम्स के काफी कारण हो सकते हैं. ये सिम्टम्स हुए उसका मतलब ये नहीं कि ये खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही हुआ है.
1: जी जी जी.
0: इसीलिए हम अब ये सिम्टम्स को LUTS या लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स कहते हैं.
1: जी.
0: और फिर जांच करना जरूरी है जानने के लिए कि ये प्रोस्टेट के कारण है या और कुछ कारण के हिसाब से ये सिम्टम्स से पेशेंट परेशान है.
1: जी जी. तो टेस्ट किस तरह के होते हैं, मतलब ब्लड के जरिए होता है या फिर सोनोग्राफी, या क्या तरीका है?
0: राइट. सो पहले तो हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं कि ये सिम्टम्स कितने बॉदरसम है पेशेंट्स को.
1: जी जी.
0: उसका स्कोर रहता है जिससे हमें आइडिया आते हैं कि सिवियरिटी सिम्टम के हिसाब से कितनी है.
1: जी.
0: बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन महत्व का रहता है कि प्रोस्टेट हम चेक करते हैं कि कितनी बड़ी हुई है, उसमें कुछ चेंजेस कैंसर के फील होते हैं कि नहीं, यूरिन की ट्यूब व्यवस्थित है कि नहीं, ब्लैडर कुछ भरा हुआ नहीं है. सो नेक्स्ट पार्ट इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन. देन वी डू लेबोरेटरी टेस्ट, जैसे इनका हीमोग्लोबिन कैसा है, ब्लड शुगर कैसी है, सीरम क्रिएटिनिन, जिसे पता चलता है कि इसके कारण दोनों किडनी पे प्रेशर आके क्रिएटिनिन बढ़ के किडनी तो डैमेज नहीं हो रही है. यूरिन टेस्ट करते हैं जानने के लिए कि उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, कभी कभी ब्लड तो नहीं जा रहा है, ये यूरिन टेस्ट से हम पता करते हैं. एक महत्व की टेस्ट है जिसे हम PSA या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं, या ब्लड टेस्ट है.
1: जी.
0: ये एक टेस्ट है जानने के लिए कि कैंसर की शक्यता है या नहीं है. जिनको ये नंबर या PSA का रिपोर्ट ज्यादा रहता है उनको प्रॉपर इवेल्युएशन की जरूरत रहती है.
1: जी.
0: ये भी गलत मानना है कि एक बार PSA का नंबर ज्यादा आया मतलब कैंसर ही है. PSA बढ़ने के भी अलग अलग कारण है, कभी प्रोस्टेट बड़ी होने से, वहां इन्फेक्शन होने से, सूजन होने से. बट अगर PSA का नंबर ज्यादा है तो वो हिसाब से चेकअप करना जरूरी है.

0: बिल्कुल।
1: इसके बाद में हम सोनोग्राफी करते हैं
0: जी।
1: सोनोग्राफी करने का यही कारण है जानने के लिए कि इसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्टोन्स या फिर उसके कारण किडनी पे प्रेशर तो नहीं है, ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं। ये भी पता चलता है कि पूरी यूरिन निकलती है या नहीं या अंदर यूरिन रह जाती है। सो ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं और साइज ऑफ द प्रोस्टेट पता चलती
0: जी,
1: है
0: जी।
1: ये भी जानना जरूरी है कि साइज के हिसाब से डर जाना जरूरी नहीं है।
0: okay.
1: बड़ी प्रोस्टेट मतलब प्रॉब्लम होना ही चाहिए या ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सो साइज इज इम्पोर्टेंट, लेकिन साइज के हिसाब से हम पूरी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करते हैं
0: जी, जी।
1: क्योंकि लोग जब देखते हैं रिपोर्ट में सोनोग्राफी में कि 100 ग्राम की प्रोस्टेट है, डर जाते हैं कि इतनी बड़ी प्रोस्टेट, कल ऑपरेशन कर दीजिए। सो ये अगेन गलत बात है। खाली साइज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड नहीं करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सो ये स्टैंडर्ड हम टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट को कितनी तकलीफ है, प्रोस्टेट के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, या कैंसर की शक्यता है कि नहीं। इस इवैल्यूएशन के बाद में वो वी कैन टेक अ डिसीजन कि आगे हमें क्या करना है।
0: जी, बहुत सही बातें आपने बताई हैं, बहुत सही जानकारी। और इसमें बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को होती है कि प्रोस्टेट बढ़ा तो खुद ही टेंशन में आकर खुद ही तय कर लेते हैं। तो बेहतर है कि यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन्हें तय करने दें कि क्या करना है। अब हम यहां पर तय कर रहे हैं कि आपकी पसंद का कोई गाना आना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं।
1: जरूर, इस प्रोफेशन में भी हम मानते हैं कि हमेशा हमें ऊपर वाले के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है।
0: क्या बात है।
1: और लोगों के गुड विशेस की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। सो ऊपर वाले को याद करके, बहुत पुराना बहुत अच्छा गाना है, ए मालिक तेरे बंदे हम,
0: दो आंखें बारह हाथ,
1: दो आंखें बारह हाथ।
0: क्या बात है, सुनते हैं, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: और डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ऊपर वाले का वरद हस्त जरूरी होता है। सचमुच हम तो यही कहते हैं कि डॉक्टर की दवा और दुआ दोनों कारगर होती है मरीज के लिए।
1: आपकी बात बहुत सच है। मैं बताऊं
0: जी,
1: लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हम तो ऊपर वाले जो हमको काम दिया है वो कैसे अच्छी तरह से करे वो हमारी इच्छा रहती है। सो बहुत बड़ा गैप है भगवान और हमारे में। अच्छी बात है क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स को दी गई हुई है।
0: जी, जी।
1: लेकिन हम भगवान नहीं है, हमें हमेशा भगवान की आशीर्वाद की और मदद की जरूरत पड़ती है।
0: जी सही बात है, लेकिन एक मरीज यही मान के चलता है क्योंकि डॉक्टर के बदौलत वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और गाने से पहले डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था कि मरीज प्रोस्टेट बढ़ा हुआ देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उन्हें सर्जरी की जरूरत है। तो श्रोताओं को बताइए कि कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब सर्जरी की जरूरत है और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, दवाइयों से और सर्जरी से दोनों बताइए।
1: राइट, सो प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आया है। एक जमाना था कि पेशेंट के पास और हमारे पास खाली तीन ऑप्शन थे, या तो कुछ नहीं करना, या तो नली डाल के रखना,
0: जी,
1: या तो ऑपरेशन करना। जैसे मैंने बताया कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण अलग अलग रहते हैं, और अगर इवेल्युएशन व्यवस्थित नहीं किया और ऑपरेशन भी किया तो उसका फायदा नहीं होता है। सो पहले तो जिनको कोई तकलीफ नहीं उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ जी, रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है। द सेकेंड पार्ट इज मेडिकेशंस। आजकल काफी दवाएं आई है जिसके कारण यूरिन करने में सुविधा होती है, अंदर ज्यादा यूरिन रहती नहीं है। प्रोस्टेट का जो भाग है वो थोड़ा दवाई से खुल जाने से पेशेंट को काफी आसानी और आराम मिलता है, जिसे हम अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं और फाइव रिडक्टेस इनहिबिटर, ये कुछ दवाएं के ग्रुप्स है जिसके कारण प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आ गया है।
0: जी।
1: अगर दवाई देने के बावजूद भी लोगों की तकलीफ कम नहीं हुई तब उस समय हमें निर्णय लेना पड़ता है कि इस मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
0: जी।
1: कभी कभी उसके लिए भी स्पेशल टेस्ट है जिसे हम यूरोडायनामिक्स कहते हैं।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि यूरिन करने के लिए दो चीजें महत्व की, यूरिनरी ब्लैडर में काफी प्रेशर होना चाहिए यूरिन बाहर फेंकने के लिए, और जो रास्ते में प्रोस्टेट है वो रुकावट नहीं करनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम ब्लैडर का है और हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा।
0: जी जी।
1: तो कुछ केसेस में हम ये स्पेशल यूरोडायनामिक टेस्ट करनी पड़ती है और फिर हम निर्णय लेते हैं ऑपरेशन के लिए।
0: जी।
1: पहले के जमाने में खाली ओपन ऑपरेशन ही हमारे पास एक ऑप्शन था।
0: जी।
1: आजकल दूरबीन से, जिसे हम TUPR और टर्फ कहते हैं, जहां अंदर से ही लेजर से या अलग अलग एनर्जी सोर्सेस से रास्ता बड़ा करके प्रोस्टेट के कुछ चिप्स निकाल देते हैं ताकि रास्ता बढ़ जाता है और फिर पेशेंट को यूरिन करने में काफी आसानी हो जाती है। आजकल कुछ नए नए टेक्निक्स भी आए हैं, जैसे रेज्यूम है या फिर यूरो लिफ्ट है, ये सब नई तरीके हैं जिससे मिनिमल प्रोसीजर करके अगर रास्ता बड़ा कर सके और पेशेंट को राहत दे सके ये कोशिश रहती है।
0: जी।
1: लेकिन अभी तक ये सब नई टेक्निके हैं, एक्सपेंसिव है, और लॉन्ग टर्म इतना आउटकम कैसे रहेगा वो अभी तक हमें वो उसका एश्योरेंस नहीं है। सो ये नई नई चीजें आई है, हम पेशेंट के सामने सब ऑप्शंस रखते हैं।
0: जी, जी।
1: और ये जिसे हम कहते हैं कि शेयर्ड डिसीजन है, क्योंकि हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर भी रहते हैं।
0: जी, जी।
1: हर ऑपरेशन के लिए पैसे भी खर्च पड़ते हैं, और ये सब करने के बाद अगर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो अच्छा ऑपरेशन करने के बाद में भी जो हम सक्सेस चाहते हैं वो नहीं मिलता है।
0: जी।
1: सो इसीलिए पेशेंट के साथ बात करके उनको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सब जगह पे नई नई टेक्निक काफी उसका प्रचार हो रहा है।
0: जी, जी।
1: और पेशेंट वो सोच के आ जाते हैं कि ये बस यही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है, और वो करा के आते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि केस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: इसलिए अनुभवी डॉक्टर के पास जाएं वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आजकल ये जो तकनीक का आपने जिक्र किया, तो जो भी तकनीक है अमूमन कितना वक्त लगता है ऑपरेशन के लिए, क्योंकि ऑपरेशन के नाम से मरीज घबराता है कि हमें दो तीन दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में।
1: सो कुछ टेक्निक है जो एक दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और फिर थोड़े दिन कभी कभी नली लगा के रखनी पड़ती है, कैथेटर और बैग, एंड देन पेशेंट क्वाइट ऑल राइट. जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है जिसे हम TORP कहते हैं या होलेप जो लेजर से करते हैं, उसके लिए 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और नली 3 या 4 दिन रखनी पड़ती है. कभी कभी अगर पेशाब की थैली वीक रही, काफी बड़ी प्रोस्टेट रही, तो फिर नली हमें ज्यादा समय तक रखनी पड़ती है. लेकिन पहले जैसे जो कट करके हमें इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था, वो अब नहीं रहा है. पेशेंट थोड़े ही समय में अपने काम पे वापस जा सकता है.
0: जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब बात थोड़ी सी घबराने की भी हो जाती है, क्योंकि सर्जरी के नाम से कोई भी मरीज थोड़ा ना थोड़ा घबरा ही जाता है, भले ही 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए एडमिट होना पड़े. तो थोड़ी घबराहट कम करने के लिए एक गाना सुन लेते हैं. कौन सा गाना सुनवाए?
1: राजेश खन्ना जी का गाना सफर, जीवन से भरी तेरी आंखें.
0: वाह क्या बात है, किशोर कुमार की आवाज.
1: कुमार की आवाज, क्या गाना है
0: जी. सुनते हैं यही गाना, फिल्म सफर.

डॉक्टर साहब, गाने से पहले बात चल रही थी ऑपरेशन की, सर्जरी की बात चल रही थी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अमूमन लोगों का आजकल वेट बढ़ना और अनियमित दिनचर्या हो रही है और वजन बढ़ना, तो

0: लोग इन सबको भी किसी न किसी बीमारी से जोड़ लेते हैं, और प्रोस्टेट बढ़ने में भी इसको लोग गूगल से, आपने जिक्र भी किया, गूगल से जानकारी लेते हैं कि आपको अगर मोटापा हुआ, तो ये कहां तक तर्कसंगत है कि जीवन शैली का या मोटापा का, वजन बढ़ने का प्रोस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: सो जिसे हम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसमें ये सब चीजें आती है, डायबिटीज, वेट गेन, ये सब चीजों का, क्योंकि इंटरनल बॉडी मिल्यू में चेंजेस होने से अल्टीमेटली ये हार्मोनल चेंजेस के कारण प्रोस्टेट बढ़ता है. सो ये सब का कुछ कुछ जरूर प्रभाव होता है, लेकिन ये सब चीजें अभी थियरी है. सच में आप पूछेंगे कि एग्जैक्ट कारण क्या है, वो किसी को पता नहीं है.
0: जी, जी.
1: लेकिन ये सब चीजें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती है
0: जी.
1: क्योंकि अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंजेस से, आप कितना पानी पीते हैं, कितनी बार आप ब्लैडर खाली करते हैं, आपकी शुगर आप मेंटेन करते हैं कि नहीं, आपको पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है कि नहीं. सो ये सारी चीजें अल्टीमेटली असर करती है, और उसकी कुछ असर जरूर प्रोस्टेट में होती है
0: जी.
1: लेकिन 100% बताना कि इसी के कारण प्रोस्टेट के प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो अभी तक इतना साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है
0: जी. लेकिन मोटापा और वजन बढ़ना तो वैसे भी नुकसान
1: जरूर
0: है.
1: तो जरूर
0: डॉक्टर साहब, कैंसर की बात कर रहे थे जब, तो मेरे जहन में एक बात आई कि प्रोस्टेट जब बढ़ा हो तो किस तरह की असावधानी से वो कैंसर का रूप लेता है, या कैंसर प्रोस्टेट कैंसर एकदम अलग है और प्रोस्टेट बढ़ना बिल्कुल अलग है, क्या असावधानी या लापरवाही से वो कैंसर का रूप ले सकता है?
1: सो प्रोस्टेट का बढ़ना नेचुरल है, और उसमें कैंसर के चेंजेस होने के कुछ कारण हमें मालूम है, कुछ कारण हमें मालूम नहीं है
0: जी.
1: स्मोकिंग इज डेफिनेटली वन फैक्टर. कुछ चीजें जेनेटिक्स है, जिनको फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है उनको सावधानी रखना बहुत जरूरी है, और रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है. सो ये चीजें डेफिनेटली, ऐसा कोई प्रिवेंटिव मेजर हमारे पास नहीं है कि ये करने से कैंसर नहीं होगा. सो इसलिए सबसे बड़ी सावधानी रेगुलर चेकअप है, जिससे समय में पता चलता है कि प्रोस्टेट में कुछ कैंसर चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं.
0: जी जी. यूरिन से जुड़ी और कौन सी समस्या है जो प्रोस्टेट की ओर संकेत करती है?
1: सो जैसे बिनाइन प्रोस्टेट के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डिफिकल्ट इन पासिंग यूरिन, कभी कभी बार बार यूरिन के लिए जाना, यूरिन में ब्लड आना, ये एक ऐसा सिम्टम है कि उसकी हमेशा हमें सावधानी रखनी चाहिए और टेस्ट करनी चाहिए
0: जी, जी.
1: क्योंकि अलग अलग कारणों से ब्लड आ सकता है, लेकिन एक फिक्र रहती है कैंसर की. सो ये अगर कुछ सिम्टम्स रहे तो डेफिनेटली आगे इन्वेस्टिगेशंस करना जरूरी रहता है. लेकिन ज्यादा करके लोग यूरिन के प्रॉब्लम से ही आते हैं, जो बिनाइन प्रोस्टेट और कैंसर प्रोस्टेट के लिए कॉमन सिम्टम्स है. जांच करने से ही पता चलता है कि ये बिनाइन प्रोस्टेट है या उसमें कुछ कैंसर के चेंजेस हुए के कैंसर प्रोस्टेट हो रहा है.
0: तो मतलब किसी को प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं कि आगे चल के कैंसर हो जाएगा.
1: एब्सोल्युटली नहीं. और साइज देख के भी घबराना नहीं है कि बहुत प्रोस्टेट बड़ी हो गई अब मुझे कैंसर होगा, ये गलत बात है
0: जी.
1: सो हर पुरुष को, मैंने बताया, ऐसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है, लेकिन कैंसर बहुत कम परसेंटेज में वो कैंसर में चेंज होती है
0: जी. और डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई और कौन सी बीमारियां होती हैं उसके?
1: सो प्रोस्टेट कभी कभी यंग एज में वहां इन्फेक्शन होने से प्रोस्टेटाइटिस जैसे हम कहते हैं
0: जी हाँ.
1: कभी कभी वहां पस जमा होता है जिसे हम प्रोस्टेटिक एब्सेस कहते हैं. सो ये चीजें भी प्रोस्टेट से जुड़ी हुई रहती है, और अगर इस प्रकार के सिम्टम्स या इन्फेक्शन होने लगे, कभी कभी टीबी की बीमारी भी प्रोस्टेट में हो सकती है
0: जी जी.
1: सो इन्फेक्शन एक बात है, फिर दूसरी बात ही बिनाइन प्रोस्टेट बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकते हैं, या कैंसर प्रोस्टेट के कारण तकलीफ हो सकती है
0: जी. तो इसमें क्या पुरुषों की सामान्य जीवन शैली या मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है किसी को प्रोस्टेट की समस्या है तो?
1: जरूर, क्योंकि अल्टीमेटली इससे काफी लाइफस्टाइल चेंज होती है
0: जी.
1: अब एक जमाना था कि आफ्टर 60 इयर्स लोग मानते थे कि अभी वानप्रस्थ आश्रम है, मुझे दिन में 10 बार या रात को 5 बार यूरिन जाने की अगर जरूरत हुई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था. आज लोग 60, 70, 80 काफी एक्टिव है. और जब यूरिनरी समस्या, बार बार जाना, कंट्रोल नहीं

0: कर सकना काफी टेंशन देती है। अब बंबई की बात देखिए, अगर किसी को बोरीवली से चर्च गेट तक सफर करना है गाड़ी में और उनकी समस्या है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है या कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है कि कहां मुझे सुविधा मिलेगी, कहां मैं यूरिन के लिए जा सकूंगा। और फिर जब ये सब ख्याल नहीं करते हैं, यूरिन अंदर ज्यादा भरी हुई रहती है, तो फिर यूरिन की ब्लैडर भी वीक होने लगती है, फिर उससे कभी कभी इन्फेक्शन की भी समस्या शुरू हो जाती है। सो यस, स्ट्रेस के कारण भी कुछ लोगों को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने लगती है। सो साइकोलॉजिकली ऑल्सो जब लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम रहती है तो दोनों चीज होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ते हैं और यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ने से भी साइकोलॉजिकली स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है,
1: दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर टेंशन रिलीज करने के लिए एक गाना आना चाहिए, कौन सा गाना?
0: एक किशोर कुमार जी का गाना है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो,
1: ब्लैक पैंथर काफी का गाना।
0: जी हाँ जी, रोमांटिक गाना है
1: जी,
0: लेकिन किशोर दा ने बहुत अच्छी तरह से गाना गाया है।
1: जी जी, डॉक्टर साहब आपने भी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले जिक्र किया था, प्रोग्राम्स म्यूजिकल प्रोग्राम में बड़े सक्रिय रहते हैं, देखने जाते हैं स्टेज के प्रोग्राम, और आपने बताया कि पहले गाया भी करते थे
0: तो जी
1: तो यहाँ गा के सुनाएंगे?
0: नहीं, अब क्या है, कुछ वॉइस की तकलीफ हुई है इसलिए गाना डिफिकल्ट हो रहा है लेकिन एक जमाना था गाते थे
1: जी।
0: और यस, म्यूजिक इज सच अ सूथिंग थिंग कि कोई भी स्ट्रेस को कम कर देती है
1: जी जी।
0: और कोई भी स्ट्रेसफुल जॉब हमारा, जब हम कभी कभी ऑपरेशंस में, कभी कभी किडनी ट्रांसप्लांट में, हम 24 घंटे 36 घंटे एक कंटिन्यूसली काम करते हैं, उस समय म्यूजिक का सहारा बहुत जरूरी हो जाता है
1: जी।
0: और आप जानते हैं कि लोग म्यूजिक थेरेपी भी देते हैं
1: जी।
0: सो म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस
1: जी जी।
0: सो मुझे लगता है कि बहुत से हमारे डॉक्टर्स हैं जो गाते भी हैं, म्यूजिक में दिलचस्प भी है, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज है जो स्ट्रेस कम करने के लिए महत्व की हो जाती है
1: जी। तो इन बीमारियों पर भी म्यूजिक थेरेपी काम करती है क्या?
0: क्यों नहीं, अगर स्ट्रेस कम हो जाता है तो आप यूरिन के बारे में सोचेंगे नहीं,
1: बंद हो जाएगा जी बिल्कुल। तो सुनते हैं ये गाना ब्लैकमेल फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले ये बातें हो रही थी स्ट्रेस रिलीज की और यूरिन पास करने की बात आप कर रहे थे बार बार, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन बात हो गई है रात में खास तौर से। कुछ लोगों को देखा है कि 3-4 बार उठ के यूरिन पास करने के लिए जाते हैं और जब जांच कराते हैं तो नॉर्मल रिपोर्ट आती है, तो ये क्या वजह हो सकती है और क्या कुछ सावधानी रखें कि ये स्थिति से मुक्ति मिले उन्हें?
1: राइट, सो पहले तो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करके जानना जरूरी रहता है कि डायबिटीज जैसी बीमारी नहीं है या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है और ज्यादा यूरिन ब्लैडर में रहती नहीं है, ये पहले हम देखते हैं
0: जी।
1: दूसरी बात लाइफस्टाइल, जैसे आप लेट डिनर लेंगे, रात तक पानी पीते रहेंगे, सो फिर वो ज्यादा यूरिन जमा होके वो बार बार जाने की इच्छा बनी रहती है क्योंकि एक समय में पूरी यूरिन खाली नहीं होती है। तीसरी बात है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी, जो हार्मोनल किडनी चेंजेस होने के कारण किडनी ज्यादा यूरिन रात को बनाती है और फिर वापस बार बार जाना पड़ता है। कुछ लोगों को जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसके कारण भी बार बार रात को यूरिन जाना जरूरी हो जाता है। सो काफी ऐसे जिसे हम नॉक्चूरिया कहते हैं और ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब होने से लोगों की लाइफस्टाइल और नेक्स्ट डे काम करने में काफी दिक्कतें आने लगती है। सो ये एक बड़ा विषय है जो ऑलवेज प्रोस्टेट के ही कारण है वैसा नहीं है, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन काफी बाकी भी ऐसे कॉजेस है जिसके कारण ये नाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हो जाते हैं।

0: कुछ लोगों की एसेट स्लीप डिस्टर्बेंस की पैटर्न रहती है और फिर थोड़ा सेंसेशन हुए वो बार बार बाथरूम में जाते हैं. सो ये पता करना डिफिकल्ट हो जाता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस के कारण बार बार जाते हैं या बार बार यूरिन जाने से स्लीप डिस्टर्ब होती है.
1: जी, जी.
0: तो ये सब चीजें एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हर समय खाली दवाइयों से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे या ऑपरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ये नहीं होता है. और ये भी जानना जरूरी है क्योंकि कुछ लोग डेस्परेट होकर आ जाते कहते कि मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर दीजिए ताकि रात की मेरी तकलीफ चली जानी चाहिए. लेकिन ये गलत बात है
1: जी, जी.
0: क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम रह सकते हैं. इसलिए इस पेशेंट्स में ये समझना बहुत जरूरी है कि किस कारण से उनकी ये रात की फ्रीक्वेंसी उन्हें ट्रबल दे रही है.
1: तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो आपने नींद का बताया और दूसरा पानी ज्यादा पीना. लेकिन कई बार लोग अमूमन बार बार बाथरूम जाते हैं, इसमें महिलाओं की संख्या क्या ज्यादा होती है या फिर?
0: सो यस, महिलाओं के प्रॉब्लम थोड़े अलग रहते हैं. जब उनकी मेनली जिसे हम फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी प्रॉब्लम कहते हैं उसके कारण कुछ अलग रहते हैं. पहली बात कि काफी महिलाओं में बचपन से आदत हो जाती है कि समय समय से यूरिन नहीं करते हैं क्योंकि सुविधा नहीं मिलती है. और जब ज्यादा यूरिन जमा होने लगता है तो धीरे धीरे पेशाब की थैली और यूरिनरी ब्लैडर वीक बनने लगती है. फिर उन्हें पेट का प्रेशर लगा के वो यूरिन खाली करनी पड़ती है.
1: जी.
0: जब एक समय में खाली नहीं होती है तो फिर बार बार जाके उनको यूरिन खाली करनी पड़ती है. ये एक प्रॉब्लम हुआ. दूसरा जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर या इरिटेबल ब्लैडर कहते हैं, जो कभी कभी कुछ लोगों को कॉफी टी इसके कारण ब्लैडर इरिटेशन होने से बार बार जाना पड़ता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. तीसरी बात है स्ट्रेस लेवल.
1: जी.
0: कुछ लोगों को जब भी स्ट्रेस बढ़ता है वो इमीजिएट उनको लगता है मुझे जाके यूरिन करनी चाहिए. सो और फोर्थ इन्फेक्शन विच इज वेरी कॉमन इन लेडीज, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के कारण भी ये तकलीफ हो सकती है. बाकी काफी अलग अलग कारण हैं लेकिन ये कॉमन कारण है.
1: जी.
0: और जिसके कारण ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी इतनी तकलीफ बन जाती है और लेडीज में ये काफी इंसिडेंस काफी ज्यादा है. इस पेशेंट्स को पहले तो जैसे मैंने बताया कॉमन इन्वेस्टिगेशंस करके हम रूल आउट करते हैं कि अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है. फिर लाइफस्टाइल चेंजेस, कि काफी लोग मानते कि बहुत पानी पीना चाहिए. सच बात है पानी पीना जरूरी है, लेकिन अगर आपको इतनी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी का प्रॉब्लम है तो वो हमें थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है.
1: जी.
0: तीसरी बात, जिनको डेफिनेटली कैफीन या कॉफी और टी से होता है उसका प्रमाण कम करना जरूरी हो जाता है.
1: जी.
0: और आजकल काफी दवाइयां आई हैं जिससे ब्लैडर को रिलैक्स करने से, ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ने से वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकती है. और फोर्थ, कुछ लोगों को जो स्ट्रेस इतना तकलीफ देता है, आई थिंक योगा एक्सरसाइजेस ऑल दिस थिंग्स हेल्प देम इन रिलैक्सिंग द ब्लैडर मसल्स ताकि वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सके. सो लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बड़ा महत्व है ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी ट्रीट करने में. और दूसरा, यूरिनरी इन्फेक्शन अवॉइड करना जरूरी हो जाता है.
1: जी. तो डॉक्टर साहब, आप इन्फेक्शन की बात आपने कई बार कही, तो इन्फेक्शन को अवॉइड कैसे किया जाए? क्या वजह हो सकती है? महिलाओं में पुरुषों में अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए.
0: सो एक तो एडिक्वेट पानी पीना भी जरूरी है.
1: जी.
0: बहुत कम पानी पीना ठीक नहीं है.
1: जी.
0: दूसरी बात, समय समय से यूरिन कर लेना है. तीसरी बात, हम देखते हैं कि कभी कभी अंतर कोई सिस्टम में कारण नहीं, जैसे ब्लैडर स्टोन से, किडनी स्टोन से, जिसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है. द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज के कारण जब शुगर यूरिन में से जाती है उनको भी इन्फेक्शन की शक्यता बहुत बढ़ जाती है. सो ये चीजें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. देयर आर यंग लेडीज जो आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी आल्सो उनको इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी रहती है. सो आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट को मिलके या यूरोलॉजिस्ट को मिलके किस लाइफस्टाइल चेंजेस पहले चेंज करके अगर इन्फेक्शन के इंसिडेंस कम हो जाए वो पहले कोशिश करनी है.
1: जी.
0: फिर तपास करके ऐसे कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो गए तो उनको ट्रीट करना जरूरी है.

0: और थर्ड फिर जरूरत पड़ी तो दवाइयों से ये सिम्टम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी रेयरली हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस या कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियों भी कभी ये सिम्टम्स के साथ पेश होती है, इसीलिए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर लेना जरूरी है क्योंकि उनसे कारण भी ब्लड में इरिटेशन होने से बार बार यूरिन जाने की उनको टेंडेंसी रहती है। कुछ कंडीशन जैसे हम पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम कहते हैं जो बेसिकली नर्व्स और मसल्स के स्पैजम्स के कारण नर्व्स पे प्रेशर आने से उसकी असर से भी लेडीज को बार बार जाने की टेंडेंसी होती है, पेन होता है, तो ये काफी चीजों से ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट ज्यादा करके कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से और कुछ प्राइमरी मेडिकेशन से काफी लोगों को राहत मिल जाती है। अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट और काफी लेडीज तकलीफ सह लेती है कि कहां किसी को हम इसके बारे में बताएं, ये गलत बात है। आजकल इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं कि इससे ये जो प्रॉब्लम है उसे कंट्रोल करना अभी आसान हुआ है।
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को बता दें विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमेश ओझा से जो कि एक मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट है और बड़े ही जानकार डॉक्टर है। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं हम।
0: जरूर,
1: कौन सा गाना सुनवाए?
0: मुझे लगता है अरिजीत सिंह का नैना जो दंगल मूवी में है
1: जी।
0: बहुत अच्छा गाना है जी। और वहाँ इमोशंस भी बहुत अच्छे फादर डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में बताया है, वो गाना अच्छा रहेगा
1: जी। सुनते हैं यही गाना अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले जो चर्चा हो रही थी वो यूरिन पर हो रही थी, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम अलग होती है, पुरुषों में अलग भी होती है, और एक कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं के पीरियड्स के दौरान उन्हें शायद यूरिन की समस्या से ज्यादा उन्हें जूझना पड़ता है, और एक है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस तरह से बचाव कर सकते हैं या क्या एहतियात बरत सकते हैं, क्या ये नॉर्मल है या कुछ लोगों को ही होता है?
1: सबको होता है ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को जरूर ये तकलीफ देती है, स्पेशली आगे बताए से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ये कुछ हार्मोन चेंजेस के कारण ये सिम्टम्स बढ़ते हैं।
0: ओके।
1: और इन्फेक्शन की शक्यता रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय भी इतने बॉडी चेंजेस और हार्मोन चेंजेस होते हैं कि कभी कभी इसके कारण ये तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात, कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं में पहले रहते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के समय तपास करने से पता चलता है कि उनको स्टोन है या दूसरी कुछ तकलीफ है, सो ये भी कारण से कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ते हैं, बट बेसिकली दिस आर बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस कि उनको ये तकलीफें होती है। अगर इन्फेक्शन होता है तो उस समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली प्रेगनेंसी में
0: जी।
1: और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत महत्व का हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि उसके असर बच्चों पे न पड़े, और उस समय दवाइयां ऐसे यूज करनी पड़ती कि जिसके आड़ असर उस मासूम बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए।
0: जी जी, और थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि इन्फेक्शन का एक बड़ा कारण है रिलेशन आपस में, तो इन्फेक्शन के दौरान क्या ये स्थिति ठीक रहती है, तो ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: वो अवॉइड करना जरूरी है, और अगर बार बार ऐसे इन्फेक्शन हो रहा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की जांच करनी जरूरी है
0: जी।
1: क्योंकि कभी कभी कहां से वो ट्रांसमिट होता है वो बताना मुश्किल हो जाता है
0: जी।
1: सो ये महत्व की बात है कि दोनों की व्यवस्थित जांच होनी चाहिए, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाते हैं
0: जी। इस बारे में बहुत सारी गलत फहमियां भी हैं कई बार आजकल, जब न्यू कपल खास तौर से, और हमने सुना है कई कपल एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, वो तुम्हारी वजह से।
1: सो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये सही नहीं है
0: जी।
1: हर समय पार्टनर्स के कारण ही इन्फेक्शन होता है वैसा नहीं है
0: जी।
1: हर पेशेंट वेदर इज मैन और वुमन, उनके खुद के कारणों से भी इन्फेक्शन हो सकता है
0: जी।
1: दूसरी बात है, हर इन्फेक्शन कंटेजियस है ऐसा भी नहीं है
0: जी।
1: सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि मेडिकल एडवाइस लेके ये जानना जरूरी है कि किस कारण से इन्फेक्शन हो रहा है, और किसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है
0: जी। बिल्कुल,
1: अल्टीमेटली सेक्सुअल लाइफ ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हेल्थी हैप्पी सेक्सुअल लाइफ इज इंपॉर्टेंट। सो कभी कभी इस सोच से, इस डाउट से, इट इफेक्ट्स द सेक्सुअल एक्टिविटी ऑल्सो।
0: बिल्कुल,
1: ये भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यंग कपल या फॉर एनीबडी हेल्थी सेक्सुअल लाइफ इज इंपॉर्टेंट। सो ये बेहतर है कि आप डॉक्टर से बात करें, अगर जरूरत तो व्यवस्थित जांच करें, और एवरीथिंग इज ऑल राइट उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हैं उसके बारे में जरूर हम एडवाइस दे सकते हैं
0: जी। बिल्कुल, हमारा ये प्रोग्राम पूरे देश में जाता है, और बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर ऐसी स्थितियां बहुत सारी आती हैं, तो आपकी इस बात से हमारे वो श्रोता प्रभावित होंगे, और जब कभी ऐसी स्थिति आती है इन्फेक्शन जैसी नौबत आती है तो डॉक्टर की शरण लें और जांच जरूर करवाएं,
1: और पार्टनर को एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: कुछ चीजें हम मान लेते हैं और उसके बारे में बात करना हम व्यवस्थित नहीं समझते हैं, लेकिन इससे शर्म के मारे में कि ये बात हम कैसे करें, लेकिन ये महत्व का है कि ऐसे कुछ रहा तो ये डाउट्स क्लियर करें और फिर मेडिकल एडवाइस ले, ताकि अननेसेसरी इसके कारण रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए
0: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है और वो कॉमन हो रही है, वो है यूरिन लीकेज, कि यूरिन लीकेज

0: मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। संध्या के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम महिला जगत।
1: महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को रश्मि का प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं हमारी सभी सखियां? उम्मीद करती हूँ अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगी और स्वस्थ भी, और अपने मनपसंद कार्यक्रम को सुनने के लिए कर रही होंगी हमारा बेसब्री से इंतज़ार। तो लीजिए सखियों, आज मैं फिर

साथ खुश होंगी और स्वस्थ भी, और अपने मनपसंद कार्यक्रम को सुनने के लिए कर रही होंगी हमारा बेसब्री से इंतज़ार। तो लीजिए सखियों, आज मैं फिर हाजिर हूँ लेकर आपका अपना कार्यक्रम। सखियों, आज हम बात करेंगे हस्तकला की। हमारी हस्तकला हमारी पहचान। सखियों, मानव हमेशा से कला और कौशल का हिमायती रहा है। कला हमेशा संस्कृति का हिस्सा होती है। ऐसे में मानव हमेशा से अपनी संस्कृति को उकेरने के लिए कला का सहारा लेता रहा है। मानव की कला में हस्तकला का बहुत महत्व रहता है। सखियों, समय के कालखंड में भारत में उत्तम गुणवत्ता की हस्तकला के उदाहरण देखने को मिलते हैं। भारतीय हैंडीक्राफ्ट या हस्तकला की मांग दुनिया भर में हमेशा से रही है, क्योंकि यह अपने आप में अलग और विशेष होती है। यही कारण है कि आज न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी भारतीय हस्तकला की मांग है। हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनी हुई ऐसी वस्तुएं हैं जो कला और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। इसके काम के लिए कारीगर या दस्तकारी की ज़रूरत होती है, और यह एक तरह से शिल्प का काम होने से इसे शिल्पकारी अथवा हस्तशिल्प या हस्तकला भी कहा जाता है। मतलब साफ है कि हस्तकला या हैंडीक्राफ्ट से आइटम को बनाने के लिए मशीनों का उपयोग नहीं होता। हस्तकला ऐसे कलात्मक कार्य को कहते हैं जो उपयोगी होने के साथ साथ सजावट के काम आता है। ऐसे कलात्मक कार्य इसके कारीगरों द्वारा हाथ से या सरल औजारों की सहायता से ही बनाए जाते हैं। सखियों, भारत में बनने वाले हैंडीक्राफ्ट के कई आइटम ऐसे हैं जिनकी मांग भारत के बाहर विदेशों तक में है। ऐसे कई आइटम्स हैं जिन्हें अनुभवी कारीगर अपने हाथों से तैयार करते हैं, और उन वस्तुओं की मांग विदेश तक है। ऐसे कुछ हैंडीक्राफ्ट के बारे में आपको बताते हैं। धातु शिल्पकला। भारत में हमेशा से ही धातु के बर्तन और आभूषणों का निर्माण होता आ रहा है, और भारतीय कारीगरों में धातु के उत्पाद बनाने का बड़ा ही उत्तम कौशल है। इस कारण यहाँ धातु के बर्तनों का बढ़िया काम आज भी होता है। धातु को शिल्पकला बहुत व्यापक क्षेत्र है, जिसमें बिदरी काम, तांबे की घंटी, तांबे की मीनाकारी भी शामिल है, लकड़ी का फर्नीचर। सखियों, भारत से निर्यात होने वाले हैंडीक्राफ्ट में एक बड़ा हिस्सा लकड़ी के फर्नीचर का है। लकड़ी के फर्नीचर का भारत में वास्तुकला और बारीकी से काम किया जाता है। हथकरघा शॉल और स्कार्फ। दुनिया भर के बिकने वाले शॉल और स्कार्फ का 85% काम भारत में होता है, और यह काम हथकरघे से होता है। रंगाई। भारत में कपड़े की रंगाई का कार्य भी सदियों से चला आ रहा है। अजरक, बगरू, दाबू और सांगानेरी जैसी रंगाई छपाई बहुत प्रसिद्ध है। कढ़ाई। देश में कपड़ों की रंगाई के अलावा कढ़ाई का काम भी बेहतरीन तरीके से दक्ष कलाकारों द्वारा किया जाता है, और इसमें कशीदाकारी और जरी कच्ची का काम भी बहुत ज़्यादा प्रमुख है। प्राचीन काल से हस्तशिल्प कला हमारे संस्कृति और हुनर की पहचान को बनाने का एक अहम हिस्सा रही है। हस्तकला की लोकप्रियता दूर दूर तक है, चाहे वो विदेश हो या अपना देश। हस्तकला के क्षेत्र में हस्तशिल्पियों की महत्वपूर्ण भूमिका हम सभी जानते हैं, और उसके प्रति उनका समर्पण और उनका योगदान बहुत ही सराहनीय है। किसी भी कला में उकेरी गई आकृति हो या उनमें मन मोह लेने वाले रंग, सभी में कला और रचनात्मकता है। मेरे अनुभव में हम जब भी किसी हस्तकला शिल्प की बात करते हैं तो हस्तशिल्प बनाने वाले पुरुष की परिकल्पना अक्सर सामने आती है। वो इसलिए क्योंकि सामान्य सोच यही है कि कला को आगे बढ़ाने में
पुरुषों के साथ साथ महिलाओं

का भी पूरा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सखियों, इसी बातचीत को जारी रखते हुए अब वक्त हो गया है आपके मनोरंजन का, तो चलिए आपको सुनवा देते हैं एक मधुर गीत।

सगी हम बात कर रहे थे हस्तकला की, तो भारत की असली पहचान उसके महानगरों की चमक में ही नहीं बल्कि उन गांवों में भी बसती है जहां मिट्टी की खुशबू के साथ साथ सदियों पुराना हुनर भी सांस लेता है। कहीं चाक पर घूमती मिट्टी से दिया बनता है, कहीं करघे पर हाथों से साड़ी बुनती है, तो कहीं लकड़ी बांस और पीतल के टुकड़ों में कारीगर अपनी कल्पना का संसार रच देते हैं। ये हस्तकलाएं केवल सजावटी वस्तुएं नहीं हैं बल्कि ग्रामीण भारत की जीवन शैली, परंपरा और आत्मसम्मान की कहानी है। हर कलाकृति में एक कारीगर का अनुभव, उसकी मेहनत और उसके पीढ़ियों से चली आ रही विरासत झलकती है। आज जब देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब पारंपरिक और ग्रामीण हस्तकलाएं इस यात्रा का की एक मजबूत कड़ी बनती जा रही है। सखियों, अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के अल्पसंख्यक कल्याण हेतु छात्रवृत्ति योजना की। सखियों, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित और कमजोर वर्गों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के समान अवसर मिलें और वे देश के समग्र विकास में अपना योगदान दे सकें। सखियों, अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और योग्यता से साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जाती हैं। इनका संचालन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है ताकि योग्य छात्रों को उनकी शिक्षा जारी रखने में वित्तीय सहायता मिल सके। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना यह कक्षा 1 से 10 के छात्रों के लिए होती है ताकि वे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर सकें। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना कक्षा 11-12 स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर तक की उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए लागू होती है। योग्यता सह साधन आधारित छात्रवृत्ति यह उन मेघा

सभी छात्रों के लिए है जो तकनीकी या व्यावसायिक स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहे हैं, और इसके लिए पात्रता आवेदक भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन से होना चाहिए। छात्र के माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से निर्धारित सीमा, जैसे प्री मैट्रिक के लिए 1 लाख रुपए और अन्य के लिए 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सखियों, आइए हम सुनवा देते हैं आपको फिर से एक बार मधुर गीत और करवाते हैं आपका मनोरंजन।

सखियों, उम्मीद है गीत आपको पसंद आया होगा। और अब हम बात करेंगे मिट्टी के बर्तनों की, मिट्टी के बर्तनों के स्वास्थ्य लाभ। सखियों, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने के फायदे। आयुर्वेद में भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि शरीर, मन और ऊर्जा को संतुलित करने वाला माना गया है। पुराने समय में मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाना और खाना आयुर्वेदिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा था। आयुर्वेदिक ग्रंथ जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम में प्राकृतिक बर्तनों और संतुलित भोजन के महत्व का वर्णन मिलता है। अब हम जानेंगे कि मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाने के क्या फायदे हैं। भोजन प्राकृतिक और पौष्टिक बनता है। मिट्टी के बर्तन में खाना धीमी आंच पर पकता है, जिससे भोजन के तत्व सुरक्षित रहते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार धीरे धीरे पका भोजन पचने में आसान और शरीर के लिए ज़्यादा लाभकारी होता है। पाचन शक्ति मजबूत करता है। मिट्टी में प्राकृतिक क्षारीय गुण होते हैं जो भोजन की अम्लता को संतुलित करते हैं। इससे गैस, एसिडिटी और पित्त दोष कम होने में मदद मिल सकती है। शरीर के तीनों दोष वात, पित्त, कफ को संतुलित करता है। आयुर्वेद के अनुसार प्राकृतिक पदार्थों से बने बर्तन शरीर की ऊर्जा को संतुलित रखते हैं। मिट्टी के बर्तन में बना भोजन विशेष रूप से पित्त को शांत करने और वात को संतुलित रखने में सहायक माना जाता है। मिट्टी के बर्तन भोजन का प्राकृतिक स्वाद बढ़ाते हैं, केमिकल और धातु के नुकसान से बचाते हैं। स्टील, एल्यूमिनियम या नॉनस्टिक बर्तनों की तुलना में मिट्टी के बर्तन में कोई हानिकारक रसायन नहीं मिलता, इसलिए यह शरीर के लिए भी सुरक्षित माने जाते हैं। मिट्टी के बर्तन शरीर को ठंडक और संतुलन देते हैं। मिट्टी प्राकृतिक रूप से ठंडी होती है, इसलिए इसमें बना भोजन शरीर की गर्मी को संतुलित रखने में भी मदद करता है। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते समय कम तेल लगता है। असल में जब हम मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते हैं तो खाने में मौजूद प्राकृतिक तेल और नमी को मिट्टी का बर्तन बरकरार रखने में मदद करता है, इसलिए यह दिल के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। सखियों, मिट्टी का बर्तन बाज़ार से लाने के बाद बड़े बर्तनों को 12 घंटे तक पानी में भिगोकर रखें। छोटे बर्तन जैसे गिलास, कटोरी, दही जमाने की हांडी को 6 घंटे के लिए पानी में भिगोएं। दूसरे दिन बर्तनों में हल्का गर्म पानी डालकर धोएं। धोने के लिए ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखें ब्रश मेटल का ना हो। बर्तन धोने के बाद उसे धूप में अच्छी तरह से सुखाएं, फिर उसके अंदर खाने का तेल चारों ओर लगाएं। अब इसमें पानी भरकर गैस पर मध्यम आंच पर गर्म करें और आधे घंटे के बाद पानी को फेंक दें। और लीजिए, इस तरह से आपके लिए मिट्टी का बर्तन खाना बनाने के लिए तैयार है। तो सखियों, आज से क्यों, अभी से ही आप भी अपने घर पर एक एक मिट्टी का बर्तन लेकर आएं और उसको इस्तेमाल करें। तो चलिए सखियों, इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपके गीत संगीत का, तो सुनवा देते हैं आपको ये मधुर गीत।

0: सखियों, उम्मीद है गीत आपको पसंद आया होगा। सखियों, हमारा मन तो करता है कि हम आपसे ऐसे ही बातें करते रहें, लेकिन घड़ी की सुई हमें जाने का इशारा कर रही है। तो फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों और मधुर गीत संगीत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त आपकी सखी रश्मि को, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। संध्या के 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम।

नमस्कार श्रोताओं, मैं भारती स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के युवाणी कार्यक्रम में। दोस्तों, क्या हो अगर हमारी ज़िंदगी में कभी बुरा वक्त ही ना आए तो क्या हमें अपनी असली ताकत का पता चल पाएगा? बुरा वक्त किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन यही वो मेहमान है जो बिना बुलाए आता है और जाते जाते ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख दे जाता है। ठोकरों ने जो सिखाया वो किताबों में कहाँ, बुरा वक्त ही था जिसने बताया अपना कौन और कौन बस नाम का था। वैसे तो दोस्तों, ज़िंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। आपने गौर किया होगा, जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम अपनी ज़िंदगी को कितने हल्के में लेकर चलते हैं, लेकिन जैसे ही ज़िंदगी एक मुश्किल मोड़ पर आकर खड़ी होती है तो वैसे ही हम परेशान हो जाते हैं और चीज़ों को जल्दी जल्दी सही करने में जुट जाते हैं। आंधियों ने ही सफ़र का हौसला देना सिखाया, वरना मंजिल का पता आराम ने कब बताया। जो गिरकर फिर से उठ खड़ा हुआ, असल में वही ज़िंदगी जीना सीख पाया। यदि आज हम किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, और जब गुजर जाएगा तो हम पहले से भी ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा खूबसूरत इंसान बनकर निकलेंगे। जैसा मैंने अभी कहा कि ज़िंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, कभी खुशियों की धूप होती है तो कभी मुश्किलों की छांव। लेकिन एक बात जो हमेशा एक जैसी रहती है वो है, बुरा वक्त चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, वो हमें कोई ना कोई अनमोल सबक ज़रूर देकर जाता है। जब सब कुछ हमारे मन मुताबिक चल रहा होता है तब हमें अक्सर अपनी कमियाँ दिखाई नहीं देती, लेकिन मुश्किलों का दौर हमें अपनी ताकत, अपनी कमज़ोरियाँ और अपने अपनों की पहचान करा देता है। बुरा वक्त सिखाता है कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता और हर चुप रहने वाला इंसान भी कमज़ोर नहीं होता। कठिन परिस्थितियाँ हमें धैर्य रखना सिखाती हैं। वो ये एहसास दिलाती हैं कि सफलता का असली स्वाद वही जानता है जिसने संघर्ष किया हो। अक्सर लोग कहते हैं कि काश वो बुरा समय कभी आया ही ना होता, लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ये महसूस होगा कि वही दौर हमें पहले से भी ज़्यादा मजबूत, समझदार और आत्मविश्वासी बना कर गया है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और इंसान मुश्किलों से गुजरकर। कभी कभी हम भगवान से पूछते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, लेकिन कुछ समय बाद ज़िंदगी मुस्कुराकर जवाब देती है ताकि तुम वो बन सको जो तुम कभी थे ही नहीं।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: दोस्तों, करियर की बातों में हम चर्चा करेंगे आज एग्जीक्यूटिव MBA की। क्या है ये और क्यों मिड करियर

प्रोफेशनल्स अपनी नौकरी के साथ इस कोर्स को करना सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आज के बदलते और कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड में खुद को अपडेट रखना बेहद ज़रूरी हो गया है। यही वजह है कि जिन्हें काम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनके बीच एग्जीक्यूटिव MBA की डिग्री पहली पसंद बन रही है। इस कोर्स की बात यह है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स को बिना नौकरी छोड़े बिजनेस की नई स्किल्स, स्ट्रेटजिक सोच और प्रैक्टिकल अप्रोच सीखने में मदद करता है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि क्या फ़ायदे हैं एग्जीक्यूटिव MBA के। आजकल ऑनलाइन और हाइब्रिड यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई को बड़ी पहचान मिल रही है। अब प्रोफेशनल्स ट्रैवल करते हुए या दूर दराज के इलाकों से भी अपनी पढ़ाई आसानी से कर रहे हैं। कई बड़े बिजनेस स्कूल अब एशियन संस्थानों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। इससे स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल बिजनेस के तौर तरीकों को सीधे समझने और ग्लोबल एक्सपोजर पाने का भी मौका मिल रहा है। इस कोर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि शानदार नेटवर्किंग। यहाँ एक्सपीरियंस फैकल्टी, गेस्ट स्पीकर्स और अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल्स एक साथ आते हैं। ये मजबूत एलुमनाई नेटवर्क आगे चलकर नए बिजनेस पार्टनर्स, जॉब ऑफर्स और स्टार्टअप शुरू करने में बहुत मददगार साबित होता है। इसमें आपको अपनी चलती हुई नौकरी या सैलरी छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये फुल टाइम MBA से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। इसकी पढ़ाई केस स्टडीज़ और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर आधारित होती है। अगर कोई बहुत अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर या वकील है तो ज़रूरी नहीं कि उसे बिजनेस चलाना या टीम संभालना भी आता हो, लेकिन एग्जीक्यूटिव MBA ऐसे ही टेक्निकल एक्सपर्ट्स को फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस और स्ट्रेटजी की भाषा सिखाता है। इसके बाद वे आसानी से कंपनी के बड़े पद जैसे कि CEO, CFO पर बैठने के काबिल बन जाते हैं। इसके साथ ही कोर्स के दौरान मिलने वाली पर्सनल करियर कोचिंग आपकी CV बेहतर करने और इंटरव्यू क्रैक करने में भी मदद करती है। इसके अलावा आज के दौर में जनरेटिव AI बिजनेस का हिस्सा बन चुका है, इसलिए एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम्स में अब AI टूल्स और टेक्नोलॉजी को भी करिकुलम में शामिल किया जा रहा है।

दोस्तों, दूसरे करियर की बातों में हम बात करेंगे इंडियन ओवरसीज़ बैंक में अप्रेंटिस की 750 वैकेंसी की। इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली है। अप्रेंटिस के कुल 750 पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 7 जुलाई से शुरू हो गई है। दोस्तों, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। ऐसे में जो उम्मीदवार इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वो IOB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। हालांकि इससे पहले अभ्यर्थियों का नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम और BFSI रोजगार विनिमय पोर्टल पर रजिस्टर होना भी अनिवार्य है। अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। आवेदकों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 जुलाई के आधार पर की जाएगी। वहीं आरक्षित श्रेणी में आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। योग्य अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा, स्थानीय भाषा की परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंतिम मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स को प्रति माह 14,000 से 15,000 रुपये के बीच स्टाइपेंड दिए जाएंगे। वहीं ऑनलाइन परीक्षा संभावित रूप से 2 अगस्त को आयोजित होने की संभावना है। जनरल OBC EWS पुरुष के लिए आवेदन शुल्क 944 रुपये, जनरल OBC EWS महिला के लिए आवेदन शुल्क 708 रुपये, ST SC और PWBD के लिए 236 रुपये तय किए गए। तो दोस्तों, देर किस बात की, जल्दी से आप भी इस फॉर्म को भर दीजिए।

दोस्तों आज एक खास शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है तीजनबाई। पंडवानी का नाम सुनते ही तंबूरा हाथ में थामे, लाल साड़ी पहने, रौद्र रूप में भीम का आह्वान करती तीजनबाई की छवि हमारे आंखों के सामने आ जाती है। पंडवानी का नाम तीजनबाई के बिना नहीं लिया जा सकता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस तीजनबाई ने पंडवानी को पूरी दुनिया में मशहूर किया, उनके ही परिवार ने सिर्फ 13 वर्ष की आयु में उनका बहिष्कार कर दिया था। गांव वालों ने भी ताने दिए थे और शादीशुदा जो जीवन है वो भी उनका तबाह हो गया था। जी हाँ, तीजनबाई और पंडवानी को एक दूसरे के बिना अधूरा माना जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की इस लोक कला को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने की कहानी काफ़ी मुश्किलों भरी रही है। भले आज तीजनबाई हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी कहानी किसी मिसाल से भी कम नहीं है। चलिए श्रोताओं, आपको बताते हैं कि पंडवानी की मशहूर कलाकार तीजनबाई के जीवन की कहानी। तीजनबाई की कहानी जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि पंडवानी होता क्या है। तो ये छत्तीसगढ़ की एक लोक कला है जिसका मतलब होता है पांडवों की वाणी। इसमें महाभारत के प्रसंगों को संगीत और अभिनय के जरिए पेश किया जाता है। इसमें पांडवों और महाभारत से जुड़ी कहानियाँ सुनाई जाती हैं और गायक हर किरदार का अभिनय करते हुए उस कहानी को गाता है। पंडवानी गायक के हाथ में एक तंबूरा होता है और कहानी सुनाते समय कभी भीम की गदा बन जाती है तो कभी अर्जुन का धनुष। पंडवानी को भी दो शैलियों में गाया जाता है। एक है वेदमती, जिसमें कलाकार बैठकर प्रस्तुति देते हैं, और दूसरी है कापालिक शैली, जिसमें कलाकार खड़े होकर अभिनय करते हुए पूरे जोश के साथ महाभारत की कहानी सुनाते हैं। तीजनबाई का जन्म छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक गरीब पारधी आदिवासी परिवार में हुआ था। बचपन से ही वो अपने नाना को पंडवानी गाते सुनती थी और यहीं से ही उनके मन में इस कला के लिए लगाव जागना शुरू हुआ। वे नाना को पंडवानी गाते सुनती और इसे याद करती थी। उस समय लड़कियों की शादी भी काफ़ी कम उम्र में कर दी जाती थी और उनकी भी शादी कम उम्र में ही हो गई थी। और उस दौर में छत्तीसगढ़ में सिर्फ जो मर्द हैं वो पंडवानी गा सकते थे और महिलाएं केवल सुन सकती थी, गा नहीं सकती थी, खासकर कापालिक शैली में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन तीजनबाई इन नियमों को नहीं मानती थी। वो भी बाकी पुरुषों की तरह पंडवानी गाना चाहती थी और उनके इस फैसले से सब अचंभित थे और उनके परिवार ने उन्हें घर से निकाल दिया और समाज ने भी जात बिरादरी से उन्हें बाहर कर दिया और यहाँ तक कि उनके पति ने भी उनका साथ छोड़ दिया। उन्होंने गरीबी और बहिष्कार झेलते हुए पंडवानी के लिए अपने जुनून को जगाए रखा और 13 साल की उम्र में पहली बार स्टेज पर पंडवानी गाया और तब से वो रुकी नहीं। उन्होंने ना केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है और इसके लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया है।

0: तो इसी के साथ श्रोताओं, अब दीजिए मुझे जाने की अनुमति, फिर मिलने के वादे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है, FM 103.1 MHz पर। संध्या की 6 बजने को है, अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों से विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष जांच दल से जांच संबंधी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को इस मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

0: मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्रियों को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 6 लेन का यह देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। यह स्वचालित और रोबोटिक मशीनों की सहायता से निर्मित देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर ₹275 टोल टैक्स लगेगा। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेजी से विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है। और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर ही सिमट गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग। एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। संध्या के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं आज और कल की सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

व्याधियों के उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंद का उपयोग करें। 7:23 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात्रि के 8:15 पर होगा कार्यक्रम लोक संगीत। समाचार संध्या का समय रहेगा रात्रि के 8:45 पर। अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे रात्रि के 9:00। रात्रि के 9:15 से लेकर रात्रि के 11:00 तक आप सुनेंगे विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 11:00 होंगे हिंदी में समाचार और इन्हीं कार्यक्रमों के साथ रात्रि 11:05 पर संपन्न होंगे हमारी आज की सभा के प्रसारण। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारी कल की सभा के कार्यक्रमों की। कल की सुबह प्रारंभ होगी हिंदी में समाचारों के साथ सवेरे 6:00। कार्यक्रम वंदनवार आप सुनेंगे 6:05 पर। कार्यक्रम झरोखा आप सुनेंगे सवेरे 6:30 पर। रामचरित मानस गान आप सुनेंगे सवेरे 6:35 पर। संगीत सरिता यह कार्यक्रम होगा 6:45 पर। सवेरे 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकेंगे सवेरे 7:30 पर। समाचार प्रभात होंगे सवेरे 8:00। 8:15 पर होंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे सवेरे 8:30 पर। 9:00 होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 9:10 से लेकर संध्या के 5:00 तक आप सुन सकेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। संध्या में ठीक 5:00 होगा कार्यक्रम महिला जगत। चर्चा का विषय रहेगा रिश्ते निभाएं दिल से। जानकारी देंगे क्यों जरूरी है जल संरक्षण और विविधा में आप सुनेंगे मौसम के अनुरूप हो आहार। 5:30 का समय रहेगा युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी का। विषय रहेगा कोई प्रतिक्रिया ना देना भी एक प्रतिक्रिया होती है। रोचक जानकारी में आप सुनेंगे ट्रेन के अंतिम कोच में एक्स लिखने का क्या अर्थ है और होंगे गीत संगीत। हिंदी में समाचार होंगे संध्या के 6:00। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 6:10 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार 6:30 पर। राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर। किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी का समय रहेगा संध्या के ठीक 7:00। कल इस कार्यक्रम में होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम। विषय रहेगा विकसित भारत की कृषि में उद्यानिकी का योगदान। विशेषज्ञ हमारे साथ रहेंगे श्री मुकेश कुमार चौधरी सहायक निदेशक उद्यान विभाग अलवर और साथ ही साथ आपको देंगे मौसम और बाजार भाव की जानकारी। फिल्म संगीत होगा 7:30 पर। रात्रि के 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत। समाचार संध्या आप सुन सकेंगे रात्रि के 8:45 पर और अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 9:00 आकाशवाणी दिल्ली से और 9:15 से लेकर रात्रि के 11:00 तक आप सुन सकेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। रात्रि के 11:00 होंगे हिंदी में समाचार और इन्हीं कार्यक्रमों के साथ रात्रि 11:05 पर संपन्न होंगे हमारी कल की सभा के प्रसारण।

श्रोताओं, हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों में अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 6:30 पर होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:45 पर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार। कार्यक्रम ग्राम भारती का समय रहेगा संध्या के ठीक 7 बजे। चर्चा का विषय रहेगा ट्रे में सब्जी उत्पादन की उन्नत तकनीकी। भेंट वार्ता होगी तिल की उन्नत खेती, श्री मंगतूराम शर्मा सहायक निदेशक कृषि विस्तार अलवर से भेंट वार्ता। और इसके साथ ही साथ आपको जानकारी देंगे मृदा जनित

ये आकाशवाणी अलवर का सरीस का चैनल है एफ एम 103.1 MHz पर। संध्या के 6:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं एस डी बर्मन की आवाज में फिल्म आराधना का

अभी आपने ये गीत सुना एस डी बर्मन की आवाज़ में फिल्म आराधना से, और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत। किशोर कुमार की आवाज़ में आइए सुनते हैं फिल्म दो रास्ते के ये गीत।

लता मंगेशकर के सुर में गाए फिल्म वो कौन थी के इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:30 होने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार व 6:45 पर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वर्ष 2030 तक राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पंचायतवार प्रभावी निगरानी पर जोर दिया। आरजीएचएस में नई व्यवस्था आज से लागू, मरीज 2000 रुपए तक की जांच सीधे करवा सकेंगे। प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति मजबूत करने सहित अन्य विषयों पर जयपुर में बैठक हुई। और राज्य में मॉनसून का पहला दौर थमने के बाद गर्मी और उमस का असर बढ़ा। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने टीबी मुक्त राजस्थान के लिए पंचायतवार प्रभावी निगरानी किए जाने का निर्देश दिए हैं। श्री बागड़े आज लोकभवन में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

0: उन्होंने गांवों को टीबी मुक्त करने के लिए ग्राम सेवकों की जवाबदेही पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि टीबी को आंकड़ों में नहीं बल्कि व्यवहार में हर एक मरीज पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे टीबी को पूरी तरह खत्म किया जा सके। राज्यपाल ने टीबी रोगियों को निक्षय मित्र किट भी वितरित किए। इस मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि राज्य को 2030 तक पूरी तरह टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान में अभियान का 90% लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। अधिक जोखिम वाले 11,000 से ज्यादा गांवों का सर्वे किया गया है। इनमें से 9,000 से ज्यादा गांवों में विशेष शिविर लगाकर टीबी मुक्त राजस्थान के लिए कार्यवाही की गई है। श्री खींवसर ने बताया कि राजस्थान में देश में सबसे अधिक एक्सरे स्क्रीनिंग की गई है। राज्य के NHM निदेशक जोगाराम ने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों में टीबी मुक्त वार्ड अभियान चालू किया जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में जांच के लिए नई व्यवस्था आज से लागू हो गई है। इसके तहत ₹2,000 तक की जांच के लिए पहले से मंजूरी नहीं लेनी होगी। वहीं तत्काल जांच के मामलों में TPA को 1 घंटे के अंदर और सामान्य मामलों में 3 घंटे के अंदर मंजूरी देनी होगी। तय समय सीमा में कोई निर्णय नहीं होने पर आवेदन को ऑटो अप्रूव्ड यानी स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। वहीं आपातकालीन मामलों में पहले की तरह किसी भी तरह की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होगी। गौरतलब है कि TPA का मुख्य काम मरीजों के कैशलेस इलाज और बीमा दावों की प्रक्रिया को संभालना है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर TPA ही अस्पताल के साथ मिलकर इसका अनुमोदन करता है। सरकार ने RGHS से सूचीबद्ध सभी निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों को इसकी कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए हैं। देश भर में जुलाई माह को अंगदान जागरूकता महीने के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में प्रदेश में भी आम लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन सोटो से जुड़े डॉक्टर धर्मेश शर्मा ने बताया कि विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से अंगदान से जुड़ी भ्रांतियां दूर की जा रही हैं।
1: हम आमजन के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए और उनके मन में कुछ भ्रम होते हैं उनको दूर करने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां करते हैं। ब्रेन डेथ के बाद अगर एक अंगदान होता है तो करीब 9 लोगों को जीवन मिलता है और कई सारे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर जाता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 5 लाख लोगों को अंगों की जरूरत है, उसके सामने केवल 20,000 अंग प्रत्यारोपण हो रहे हैं। अगर जागरूकता बढ़े और ब्रांडेड के बाद में अगर उनमें से 50% लोग भी अपना अंगदान की उनके परिजन सहमति दे दें तो हम हिंदुस्तान में लगभग सभी लोगों को जिन्हें अंगों की जरूरत है अंग लगा सकेंगे।
0: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज सिरोही जिले के आबू रोड पहुंचे। उन्होंने मानपुर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने भगवान बुद्ध के शांति, करुणा और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। श्री अठावले ने सद्भाव और सामाजिक समरसता को आज के समय की जरूरत बताया। पत्रकारों से बातचीत में श्री अठावले ने कहा कि सरकार जनहित योजनाओं के जरिए हर वर्ग को राहत देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि MSME सेक्टर को मजबूत कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं।
2: MSME के माध्यम से छोटे मोटे उद्योग इधर अगर आते हैं तो बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। किसानों की जो फसल है इस फसल को भी मतलब कैसा अच्छा भाव मिले उसके लिए भी हमारी सरकार की तरफ से प्रयत्न होता है। किसानों के खाते में 6,000 रुपए डालने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। अब किसान है, गरीब है, युवा है, महिला है, ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और जो जो बैकवर्ड इलाके है उनको न्याय देने के लिए अगर हमारे पास योजना आती है तो उनको पूरी मदद करने का प्रयत्न हमारी सरकार की तरफ से होगा।
0: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत पहली विशेष रेलगाड़ी आज राजधानी के जयपुर स्थित दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलगाड़ी तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम और मदुरै लेकर जाएगी। इस मौके पर श्री कुमावत ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। बुजुर्गों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो इसके लिए यात्रा के दौरान अधिकारी, डॉक्टर्स तथा पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात रहेगा। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur।

0: यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो देख सकते हैं। प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने सहित अन्य विषयों को लेकर आज जयपुर में समीक्षा बैठक हुई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ऋण पुनर्गठन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की प्रगति पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने आधुनिक तकनीक के उपयोग और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और अन्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं से मिलने वाली अतिरिक्त बिजली के भंडारण के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण है। इससे पीक आवर्स में महंगी बिजली खरीदने की जरूरत कम होगी और डिस्कॉम को हर साल बचत होगी। इसका फायदा आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। कोलंबिया में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। बुकारामंगा में हुई इस प्रतियोगिता में कनिष्क जैन, रिद्धेश अनंत बेंडाले, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर भारतीय टीम के सभी प्रतिभागियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने इसे देश की युवा शक्ति का विज्ञान के प्रति जुनून बताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी देश का गौरव बढ़ाने वाले इन प्रतिभाशाली युवाओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। राज्य में मॉनसून का पहला दौर थमने के साथ ही गर्मी और उमस का असर फिर से बढ़ गया है। अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी हुई है। दिन के साथ ही रात में भी उमस बनी हुई है। फलौदी में कल पारा 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, श्रीगंगानगर और अलवर में भी दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। उधर हनुमानगढ़ में तेज गर्मी और उमस के बीच आज दोपहर बाद मौसम बदला और कुछ देर अंधड़ के साथ झमाझम बरसात हुई। सिरोही में बूंदाबांदी हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन दिनों बड़ी संख्या में सैलानी आबू राज की सुंदर वादियों का आनंद ले रहे हैं।
1: सिरोही जिले के कई क्षेत्रों में आज हल्की बूंदाबांदी होने से मौसम सुहाना हो गया। वहीं राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में मौसम बेहद खुशनुमा बना हुआ है। पहाड़ियों पर छाए बादल, धुंध से ढकी वादियां और ठंडी हवाएं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। पर्यटक नक्की झील में नौकायान का आनंद लेते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम में आए इस बदलाव से स्थानीय लोगों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: मौसम विभाग ने 15 जुलाई के बाद मॉनसून का नया सिस्टम सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके बाद 2-3 दिन में कमजोर पड़े मॉनसून के फिर से रफ्तार पकड़ने के आसार हैं। आज राजधानी जयपुर और भरतपुर संभाग के 9 जिलों में कहीं कहीं छुटपुट बारिश हो सकती है। वहीं अगले 2-3 दिन में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्र में हल्की बरसात का पूर्वानुमान है। जोधपुर और बीकानेर में धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से कल जयपुर में राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने बताया कि ये वेबिनार प्रदेश भर के सभी पीएम श्री विद्यालयों के प्रधानों के लिए होगी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, नवाचारों और सह शैक्षणिक गतिविधियों पर मंथन किया जाएगा। जयपुर शहर में ट्रैफिक प्रबंधन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के साथ नई शुरुआत होने जा रही है। इसके तहत जल्द ही सिग्नल का फिक्स टाइमर बंद होगा और सड़कों पर लाइव ट्रैफिक के हिसाब से सिग्नल अपने आप बदलेगा। न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी डॉक्टर सालेहा गाजी की रिपोर्ट।
2: 24 घंटे काम करने वाली AI आधारित ये व्यवस्था पूरी तरह ऑटोमेटिक है। 39 दिनों तक इसका ट्रायल रामबाग सर्कल पर किया गया। इसके तहत बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के 488,000 से ज्यादा वाहनों ने सुगमता से चौराहा पार किया। ये AI सिस्टम सिर्फ ट्रैफिक ही मैनेज नहीं करता बल्कि अनुशासन भी बनाए रखता है। इस नई तकनीक से वाहनधारियों के समय के साथ ही ईंधन की भी बचत हो सकेगी। जल्द ही इसे पूरे शहर में विस्तार देने का निर्णय लिया गया है।
0: कोटा में आज एक सड़क हादसा

0: हादसे में दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं दो अन्य घायल हो गए। दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर हैंगिंग ब्रिज के पास एक बेकाबू कार के पलटने से हुई, जिसमें कार सवार युवक हादसे का शिकार हो गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों NRI तक अपनी पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। आज नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति को बनाए रखने के लिए NRI तक पहुँच बढ़ाने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को RBI की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2030 तक राजस्थान को TB मुक्त बनाने का लक्ष्य। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पंचायतवार प्रभावी निगरानी पर जोर दिया। RGHS में नई व्यवस्था आज से लागू, मरीज 2000 रुपए तक की जांच सीधे करवा सकेंगे। प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति मजबूत करने सहित अन्य विषयों पर जयपुर में बैठक हुई। और राज्य में मानसून का पहला दौर थमने के बाद गर्मी और उमस का असर बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष गोयल। पिछले महीने कोटपूतली बहरोड जिले में कई सामाजिक और प्रशासनिक गतिविधियां संपन्न हुई। इसके अलावा जिले में मॉनसून ने दस्तक देकर लोगों को गर्मी से राहत दी। इन्हीं सब गतिविधियों के साथ सबसे पहले बात करेंगे दिशा बैठक की। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर आयोजित हुई। इसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े विषय रखे। पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास कार्यों से संबंधित लंबित प्रकरणों पर चर्चा हुई और अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 के प्रारूप पर सुझाव लेने के लिए जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। समिति के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि सरकार इस विषय पर सभी वर्गों की राय लेना चाहती है। बैठक में जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, विधि विशेषज्ञों, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इनमें लोगों की राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पेयजल, बिजली, पंचायत, चिकित्सा और अन्य विभागों से जुड़े मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। पात्र लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले दिनों बड़ी संख्या में लोगों ने शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कराया। ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान ग्राम पंचायत पवाना अहीर की एक बुजुर्ग महिला की सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़ी समस्या का समाधान किया गया। तकनीकी कारणों से उनका वार्षिक सत्यापन नहीं हो पा रहा था। प्रशासन की टीम उनके घर पहुंची और OTP आधारित प्रक्रिया से सत्यापन पूरा किया। इससे उनकी पेंशन फिर से नियमित होने का रास्ता साफ हुआ। इस पहल की स्थानीय लोगों ने भी सराहना की। संभागीय आयुक्त और जिला प्रभारी सचिव वी सरवण कुमार ने बांसुर उपखंड के भूपसेड़ा गांव में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से योजना का लाभ लेने की अपील करते हुए कहा कि इससे खेती के साथ ऊर्जा उत्पादन का भी अवसर मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा के उपयोग से किसानों की आय बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। जिले में नशे के विरुद्ध अभियान को लेकर जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति की बैठक जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। इसमें पुलिस और संबंधित विभागों ने मादक पदार्थों की तस्करी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध शराब के मामलों की समीक्षा की। अधिकारियों को संयुक्त कार्रवाई जारी रखने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। पिछले दिनों अवैध खनन की रोकथाम को लेकर जिला स्तरीय खनिज विकास और पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक हुई। इसमें पुलिस विभाग, खनन विभाग, वन और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने

0: उद्देश्य से लागू नया सफर योजना की समीक्षा को लेकर जिला मुख्यालय पर बैठक हुई। अधिकारियों ने बताया कि पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नए वाहन खरीदने पर कर, पंजीयन शुल्क और वाहन ऋण पर ब्याज में छूट का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पिछले दिनों पावटा उपखंड के सुजात नगर में नट समाज उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने नट समाज की कला और सांस्कृतिक परंपराओं की सराहना की। श्री बागड़े ने कहा कि शिक्षा समाज के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। प्रकृति को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला पिछले दिनों आयोजित हुई। इसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। कृषि विशेषज्ञों ने प्राकृतिक खेती, मृदा संरक्षण, जैविक खाद, फसल विविधीकरण और कम लागत वाली खेती की तकनीकों की जानकारी दी। इस महीने जिले में मॉनसून ने दस्तक दी। कई स्थानों पर तेज तो कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई। हालांकि फिलहाल मॉनसून कमजोर पड़ने से बारिश की गतिविधियां थमी हुई है। इसके साथ ही कोटपुतली बहरोड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंचा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, साल 2030 ताई राजस्थान ने टीबी मुक्त बनावण रो लागस। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पंचायतवार असरदार निगरानी माथे जोर दियो। आरजीएचएस माए नुआ बंदोबस्त आज हूँ लागू। मरीज 2000 रुपया ताई री जांच सीधी करा सकेला। प्रदेश ने ऊर्जा हल्का माए आत्मनिर्भर बनावण और डिस्कोमरी माली हालात मजबूत करण समेत दूजा मुद्दा माथे जयपुर माए मीटिंग हुई। और राज्य में मानसून रो पहलो दौर थमण रह पछे गर्मी और उमस रो असर बढ़ियो। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह और अबे समाचार विगतवार। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े टीबी मुक्त राजस्थान सारू पंचायतवार असरदार निगरानी क्रिया जाऊन सारू निर्देश दिया है। श्री बागड़े आज लोकभवन में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन री प्रगति री समीक्षा कर रिया हा। वना गांवा ने टीबी मुक्त करण सारू ग्राम सेवकारी जवाबदेही माथे जोर दियो। राज्यपाल कहो के टीबी रा आंकड़ा माए नहीं बल्कि व्यवहार माए हर एक मरीज माथे ध्यान देवन री जरूरत है जीनू टीबी रो पूरी तरह खात्मो करियो जा सके। राज्यपाल टीबी रोगियां ने निक से मित्र की टी बांटिया। ई मौके चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहो के राज्य ने साल 2030 ताई पूरी तरह टीबी मुक्त कर दिया जाएला। वना बतायो कि राजस्थान में अभियान रो 90% लगस पूरो कर लीजियो है। बत्ती जोखिम वाला 11,000 गांव रो सर्वे करीजियो है। इन मायू 9,000 गांव में खास शिविर लगार टीबी मुक्त राजस्थान सारू कार्रवाई करीजी है। श्री खींवसर बतायो कि राजस्थान में देश में सब 32 एक्सरे स्क्रीनिंग करीजी है। राज्य रा NHM निदेशक जोगाराम बतायो के शहरी स्थानीय निकाय में टीबी मुक्त वार्ड अभियान चालू करियो जायला। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में जांच सारू नुआ बंदोबस्त आज हूँ लागू वे गया है। इन रे तहत 2000 रुपया तायरी जांच सारू पहलाऊ मंजूरी नहीं लेवने वेला। वठे तुरंत जांचरा मामला में TPA ने 1 घंटा में और दूजा मामला में 3 घंटा में मंजूरी देवनी वेला। ते भगत माए कोई फैसलो नहीं होन माथे अर्जीदार ने ऑटो अप्रूव्ड मतलब खुद मंजूरी मानी जाएला। वठे इमरजेंसी मामला माए पहला री तरह किणित रहरी पहलाऊ मंजूरी री जरूरत नहीं वेला। ध्यान जोगे के TPA रो खास का मरीजा ने कैशलेस इलाज और बीमा दवारी प्रक्रिया ने संभालनो है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर TPA अस्पताल रे साथे मिलने इनने मंजूरी करे है। सरकार RGHS हूँ जुड़िया सगड़ा प्राइवेट अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर ने इनरी कड़ाई पालना करने का निर्देश दिया है। देश भर में जुलाई महीना ने अंगदान जागरूकता महीना रा रूप में मनायो जावे है। ये कड़ी में प्रदेश में लोगों ने अंगदान स्वरूप प्रेरित करा जावे। राज्य अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन सोटो जुड़िया डॉक्टर धर्मेश शर्मा बतायो के न्यारी न्यारी जागरूकता गतिविधियां री मार्फत अंगदानों जुड़ी गलतफहमियां दूर करी जायला।
2: हम आमजन के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए और उनके मन में कुछ भ्रम होते हैं उनको दूर करने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां करते हैं। ब्रेन डेथ के बाद अगर एक अंगदान होता है तो करीब 9 लोगों को जीवन मिलता है और कई सारे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर जाता है। हमारे हिंदुस्तान

0: के अंदर लगभग 5 लाख लोगों को अंगों की जरूरत है, उसके सामने केवल 20,000 अंग प्रत्यारोपण हो रहे हैं। अगर जागरूकता बढ़े और ब्रांडेड के बाद में अगर उनमें से 50% लोग भी अपना अंगदान की उनके परिजन सहमति दे दें, तो हम हिंदुस्तान में लगभग सभी लोगों को जिन्हें अंगों की जरूरत है अंग लगा सकेंगे।
1: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज सिरोही जिला रा आबू रोड पुग्या। वणा मानपुर माए भगवान बुद्ध री मूर्त रो अनावरण करियो। ई मौके वणा भगवान बुद्ध रा शांति करुणा और मानवता रा संदेश ने जन जन ताई पुगाउण री अरज करी। श्री अठावले सद्भाव और सामाजिक समरसता ने आज रा भगत री जरूरत बताया। खबर नवीसा साथ बतलमाए वणा कहो के सरकार जनहित योजनावारी मार्फत हर तबका ने राहत देवण री कोशिश कर रही है। वणा कहो के एमएसएमई सेक्टर ने मजबूत करने रोजगार रा मौका बधाया जा रहा है।
2: एमएसएमई के माध्यम से छोटे मोटे उद्योग इधर अगर आते हैं तो बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। किसानों की जो फसल है इस फसल को भी मतलब कैसा अच्छा प्रभाव मिले उसके लिए भी हमारी सरकार की तरफ से प्रयत्न होता है। किसानों के खाते में 6,000 रुपए डालने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। अब किसान है, गरीब है, युवा है, महिला है, ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और जो जो बैकवर्ड इलाके है उनको न्याय देने के लिए अगर हमारे पास योजना आती है तो उनको पूरी मदद करने का प्रयत्न हमारी सरकार की तरफ से होगा।
1: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत पहली खास रेलगाड़ी आज जयपुर रा दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन रवाना हुई। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत इन्हें हरी झंडी दिखा रवाना करिया। आ रेलगाड़ी तीर्थ यात्रियों ने रामेश्वरम और मदुरे लेर जावेला। ई मौके श्री कुमावत कहो के तीर्थ यात्रियों री सुविधा सारू के इंतजाम करी जा है। बुजुर्ग ने किणी तरह री परेशानी नहीं होवे इस सारू यात्रा रे दौरान अहलकार डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहेला। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान माथे सुन सको हो। इन साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और संबंधित फोटो और वीडियो देख सको हो। प्रदेश ऊर्जा हल्का माए आत्मनिर्भरता कानी तेजियों कदम बढ़ा रियो है। इस हारू डिस्कोमरी माली हालात ने मजबूत करण समेत दूजा मुद्दा ने लेर आज जयपुर माए समीक्षा मीटिंग भी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री अगुवाई माए भी ई बैठक माए कर्ज पुनर्गठन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर री प्रगति माथे चर्चा करी जी। मुख्य सचिव आधुनिक तकनीक ने काम माए लेवण और अक्षय ऊर्जा परियोजनावा ने भगत सर लागू करण री जरूरत बताई। वणा कहो के पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और दूजी सौर ऊर्जा परियोजनावा मिलन वाली बत्ती री बिजली भंडारण सारू बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम महत्व है। इणु पीक आवर्स माए महंगी बिजली खरीदने की जरूरत कम होवेला और डिस्कॉम ने हर साल चोखी बचत वेला इन रो फायदो उपभोक्ता ताई पुगेला। कोलंबिया माए भी 56वीं अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड माए भारतीय टीम सोना रो तमगो हासिल करियो है। बुकारा मंगा माए भी ई होड माए कनिष्क जैन, रिद्धेश अनंत बैडाले, ऋषित गर्ग, श्रीश सुरैया और स्वरित जोशी भेड़ारिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई कामयाबी माथे भारतीय टीम रा सगला प्रतिभागियां ने बधाई दी है। श्री मोदी इन्हें देश री युवा शक्ति रो विज्ञान रे प्रति जुनून बताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्माई देश रो मान बढ़ावन वाला आ हुनरवान नौजवाना ने बधाई देवता वारा चोखा भविष्य री कामना करी है। यार भाई मौसम राज्य में मानसून रो पहलो दौर थमण रे साथ ही गर्मी और उमस रो असर फेरू बद गयो है। गणकरी थोड़ा तापमान माए बढ़वार भी है। दिन रे साथ ही रात माए उमस बण्योड़ी है। फलोदी माए काले पारो 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज करीजो। इन रे अलावा बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, श्री गंगानगर और अलवर माए दिन रो तापमान 38 डिग्री सेल्सियस ऊपर रियो। उठी ने हनुमानगढ़ में तेज गर्मी और उमस रे बीच आज दोपहर पछे मौसम बदलियो और कुछ देर अंधड़ रे साथ ही झमाझम बिरखा भी। सिरोही में छांटा छिड़को भी हो। मारा खबर नवीस बतायो के आ दिना घनी तादाद में सैलानी आबू राजरी सुंदर वादियां रो लुत्फ उठा रिया है।
3: सिरोही जिले के कई क्षेत्रों में आज हल्की बूंदाबांदी होने से मौसम सुहाना हो गया। वहीं राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में मौसम बेहद खुशनुमा बना हुआ है। पहाड़ियों पर छाए बादल, धुंध से ढकी वादियां और ठंडी हवाएं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। पर्यटक नक्की झील में नौकायान का आनंद लेते हुए प्राकृतिक

0: सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम में आए इस बदलाव से स्थानीय लोगों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
1: मौसम महकमो 15 जुलाई रे पछे मानसून रो नुआ सिस्टम सक्रिय होने री आस जताई है। इन रे पछे 2-3 दिन माए कमजोर पड़ियो मानसून फिर गति पकड़न रा आसार है। आज जयपुर और भरतपुर संभाग रा 9 जिला माए कटे छुटपुट बिरखा वह सके है। वठे आवता 2-3 दिन माए बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आर एस आर हल्का माए हल्की बिरखारी आस है। जोधपुर और बीकानेर माए धूल भरी आंधी चालन रा आसार है। जयपुर शहर में ट्रैफिक बंदोबस्त सारू आधुनिक तकनीक रह साथ है नौवीं शुरुआत होवन जारी है। इनके तहत बेगाई सिग्नल रो फिक्स टाइमर बंद वेला और सगड़का माथे सीधा ट्रैफिक राशि हिसाब सिग्नल अबे अपने आप बदलेला। न्यूज डेस्क को हमारी सहयोगी डॉक्टर सालिहा गाजीरी रिपोर्ट।
2: 24 घंटे काम करने वाली एआई आधारित ये व्यवस्था पूरी तरह ऑटोमेटिक है। 39 दिनों तक इसका ट्रायल रामबाग सर्कल पर किया गया। इसके तहत बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के 488,000 से ज्यादा वाहनों ने सुगमता से चौराहा पार किया। ये एआई सिस्टम सिर्फ ट्रैफिक ही मैनेज नहीं करता बल्कि अनुशासन भी बनाए रखता है। इस नई तकनीक से वाहनधारियों के समय के साथ ही ईंधन की भी बचत हो सकेगी। जल्द ही इसे पूरे शहर में विस्तार देने का निर्णय लिया गया है।
1: स्कूल शिक्षा महकमा कानियों काले जयपुर माए राज्य थरी वेबिनार रो आयोजन करो जायला। स्कूल शिक्षा महकमा रा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव बतायो के आ वेबिनार प्रदेश भर रा सगड़ा पीएम श्री स्कूल रा प्रधान सारू वेला। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होवन वाला ई कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने असरदार लागूकरण, नवाचार और सह शैक्षणिक गतिविधियां माथे मंथन करो जायला। वस्त्र प्रदर्शनी भारत टैक्स 2026 कालेऊ नवी दिल्ली में शुरू वेला। देशरी सबू मोटी वैश्विक वस्त्र नुमाइश रो आयोजन भारत मंडपम में करो जायला। 4 दिन री नुमाइश माए कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार रा हल्का माए भारतरी बदती अगुवाई रो प्रदर्शन करो जायला। ओ निर्माताओं, निर्यातका, वैश्विक खरीदारा, निवेशका, नीति निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय नुमाइंदा मंडल, कारीगरा, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं ने एक मंच माथे लावेला। कोटा में आज एक सड़क हादसा में 2 लोगों की मौका माथे मौत वेगी, वठे 2 दूजा घायल वे गया। हादसों राष्ट्रीय राजमार्ग 27 माथे हैंगिंग ब्रिज कने एक बेकाबू कार रे पलट जावणु वी हो। ने अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फिर सुन ली रहो। साल 2030 ताई राजस्थान ने टीबी मुक्त बनावण रो लगस। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पंचायतवार असरदार निगरानी माथे जोर दियो। आरजी एचएस माए नुआ बंदोबस्त आज लागू। मरीज 2000 रुपया तैयारी जांच सीधी करा सकेला। प्रदेश ने ऊर्जा हल्का माए आत्मनिर्भर बनावण और डिस्कोमरी माली हालात मजबूत करण समेत दूजा मुद्दा माथे जयपुर माए मीटिंग भी। और राज्य माए मानसून रो पहलो दौर थमण रे पछे गर्मी और उमस रो असर बध्यो। नेंडर साथी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करो जायला। नमस्कार।
3: आकाशवाणी जयपुर
4: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। संध्या के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम भारती।
5: ग्राम भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को और दूर दराज की गांव डाणियों में रहने वाले सभी किसान भाई बहनों को शिम्बू भाई की ओर से घनी घनी राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपनी चर्चा में लेके आए हैं ट्रे में सब्जी उत्पादन की उन्नत तकनीक। देखिए किसान भाइयों, सब्जी उत्पादन के लिए नई तकनीक जो हमारे लिए एक नई ऊर्जा और उम्मीद लेकर के आई है वह तकनीक है ट्रे में सब्जियों की खेती। अगर इसे सरल भाषा में समझें तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कम पानी और कम मिट्टी में अधिक से अधिक सब्जियां उगाई जा सकती हैं। देखिए किसान भाइयों, इस तकनीक में प्लास्टिक की ट्रे में मिश्रण भर करके सब्जियां उगाई जाती हैं। इससे कम लागत में और उत्तम गुणवत्ता वाली सब्जियों का उत्पादन हम कर सकते हैं। इस तकनीक में पोषण तत्वों को ड्रेंचिंग के माध्यम से या छिड़काव कर पौधों को उपलब्ध करवाए जाते हैं और इस तकनीक को सब्जियों में प्रयोग करने से काफ़ी बेहतर परिणाम मिलते हैं। इस तकनीक से मिर्च, भिंडी, धनिया, करेला, ककड़ी, ग्वारफली, टमाटर इन सभी में प्रमुख रूप से उत्पादन

जा सकता है और इन सब्जियों को 3 से 4 इंच मिट्टी में भी आसानी से उगाया जा सकता है। और देखिए, इस तकनीक में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। ट्रे के लिए मिश्रण तैयार करना एक समान मृदा विन्यास वाले मिश्रण में वर्मी कंपोस्ट तथा लकड़ी का बुरादा या नारियल की जटा को मिट्टी में मिलाया जाता है और इस मिश्रण को मिला करके एक जो है एक कर लिया जाता है। बड़े कणों को अलग कर दिया जाता है। यदि मिट्टी अधिक सूखी हो तो उसे हल्का नम कर लिया जाता है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, वर्मी कंपोस्ट में जो है इसको मिलाएंगे। वह मिश्रण गीला या चिपचिपा नहीं होना चाहिए और इस सामग्री को मिलाने के लिए इन्हें परतों में ढेर कर दिया जाता है और बाद में क्या है कि इसे फावड़े से हम मिला देते हैं। मिट्टी मिश्रण इस्तेमाल करने से पहले उपचारित जरूर हमको कर लेना चाहिए क्योंकि मिट्टी में अधिकांशतः निमोटोड्स फफूंद ये जीवाणु पाए जाते हैं जो पौधों को हानि पहुंचा सकते हैं। और देखिए किसान भाइयों,

0: इन्हें परतों में ढेर कर दिया जाता है और बाद में क्या है कि इसे फावड़े से हम मिला देते हैं। मिट्टी मिश्रण इस्तेमाल करने से पहले उपचारित जरूर हमको कर लेना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में अधिकांशतः निमोटोड्स, फफूंद, ये जीवाणु पाए जाते हैं जो पौधों को हानि पहुंचा सकते हैं। और देखिए किसान भाइयों, पौधों में आर्द्र गलन जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं, तो इन बीमारियों को फैलाने वाले कवक जो होते हैं उनको रोकने के लिए मिश्रण को बावस्टीन, ट्राइकोडर्मा या फार्मेल्डिहाइड, इन सबसे उपचारित करके हमको तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद में ट्रे में ग्रीन नेट बिछा करके मिश्रण भर दें, फिर उपचारित बीज या पौधे हम लगा सकते हैं। देखिए ये कितना किफ़ायदी और फायदेमंद है। इस तकनीक को विशेष रूप से क्या है कि इसमें पानी की बहुत कम जरूरत होती है, एक तो सबसे पहली बात यह है। और जिन किसान भाइयों को सिंचाई के साधनों का जो इंतजाम करने में परेशानी आती है या आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हैं कि सिंचाई की व्यवस्था का खर्च वहन नहीं कर सकते, उनके लिए तकनीक जो है वो वरदान साबित हो सकती है। इस तकनीकी से हमारे किसान भाई सब्जियों के बेहतर वो अधिक उपज ले सकते हैं। इसकी दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है? देखो यह उन किसान भाइयों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद लाभदायक है जो सूखे और भूमिहीन यानी जमीन की कमी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा इस विधि से फसल चक्र अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ट्रे के अंदर एक सब्जी की फसल समाप्त होते ही उसमें दूसरी सब्जी का उत्पादन शुरू हम कर देते हैं। दूसरा, कीटनाशकों से भी छुटकारा मिलेगा। भारत में हमारे किसान भाइयों के द्वारा कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से उनके उत्पादन में जबरदस्त गिरावट आई है। हमारे देश में हर साल कीटनाशकों के गलत उपयोग से 18-20% फसलें नष्ट होती जा रही हैं एवं उपज की गुणवत्ता में भी कमी आती है। हमारे किसान भाइयों के जेब पर भी अतिरिक्त भार पड़ता है। इस तकनीक से ट्रे के ऊपर नेट लगा देने से कीड़े मकोड़े सब्जी को नुकसान नहीं पहुँचा पाते। कीट आदि ने लगने से भी सब्जियों की गुणवत्ता जो है वो काफ़ी अच्छी बनी रहती है। और देखिए किसान भाइयों, ज़्यादातर हमारे लोगों में ये धारणा रहती है कि किसान और खेती का मतलब है गांव। किसी स्तर तक ये बात सही भी है कि कृषक वर्ग गांव में ही बसता है, लेकिन ट्रे में सब्जी उत्पादन ने इस बात को काफ़ी हद तक बदल दिया है कि लोग इस तकनीक को शहरों में भी आजमा रहे हैं। शहर में बने मकान के गार्डन में या छत पर ट्रे में सब्जी उत्पादन जो है हम आसानी से कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य के नज़दीकी से भी काफ़ी लाभप्रद है। इस तकनीक को अपना करके किसान भाई कम लागत में ज़्यादा सब्जी उगा करके काफ़ी लाभ कमा सकते हैं और शहर में निवास करने वाले भी अपने हाथों से उगाई गई सब्जी का आनंद ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप भी कम लागत में और अच्छी तकनीक और यानी कि अच्छी सब्जी प्राप्त करने के लिए ये ट्रे में सब्जी उत्पादन तकनीक को ज़रूर अपनाएं और इसका लाभ उठाएं। तो आइए अब हम आपको सुनवाते हैं तिल की उन्नत खेती। श्री मंगतूराम शर्मा, सहायक निदेशक कृषि विस्तार अलवर से ये भेंट वार्ता।
1: किसान भाइयों, राम राम। देखो आज हमारे साथ हैं श्री मंगतूराम जी शर्मा, सहायक निदेशक कृषि विस्तार अलवर से। आइए इनसे जानते हैं तिल की उन्नत खेती। खरीफ की मौसम में जो तिलन के पैदावार के लिए तिल की जो खेती की जाती है उसकी उन्नत पैदावार कैसे लें, इनकी कुछ विशेष जानकारी श्री मंगतूराम जी से लेंगे। नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को राम राम।
1: सबसे पहले साहब अपन बात करें भाई भूमि की तैयारी और भूमि उपचार किस हिसाब से करें जिससे अपनी तिलन की जो तिल की फसल है वो अच्छी पैदावार दे, उसमें रोग बीमारी कम से कम लगे।
2: किसान भाइयों, खरीफ फसल में तिलहनी फसल और दलहनी फसलों का बड़ा महत्व है। सरकार का वर्तमान स्थितियों को देखते हुए तिलहनी फसल और दलहनी फसलों पर जोर भी दिया जा रहा है। रासायनिक खादों का प्रयोग अधिक होने के कारण हमारी तिलहनी फसलें और दलहनी फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। दिन पे दिन इनका जो बुआई का क्षेत्र है, विशेषकर अलवर की बात करूँ तो बहुत ही कम रह गया है। मैं बात करूँ अब तिलहनी फसल के लिए, जो भूमि की जो तैयारी करते हैं हम, तो उसके लिए सामान्य ही तैयारी करते हैं। जैसा किसान भाइयों आप देखते हो, पहले भूमि में से जो अपने जो अपनी देसी भाषा में बात करें तो झाड़ झंकट वगैरह उनको हटा देते हैं।

0: फिर दो तीन बार उसकी हम जुताई भी कर देते हैं। जुताई करने के बाद में फिर बारिश का समय आ जाता है, और बारिश का समय 20 जून के बाद बाद में आता है, और 20 जून के बाद में हम इसकी बुवाई 15 जुलाई तक का हमें समय होता है, और हम 15 जुलाई तक इसकी
1: इस समय बहुत उपयुक्त समय चल रहा है।
0: हाँ, इस समय किसान भाइयों बहुत ही उपयुक्त समय भी है, और इंद्रदेव की भी मेहरबानी हो रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक हमें भूमि उपचार के ऊपर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हम क्या है, भूमि उपचार नहीं कर पाते हैं। भूमि उपचार इसलिए नहीं करते हैं कि किसान भाइयों को मैंने देखा है ज़्यादातर कि बस आलस्य में ही और भूमि उपचार नहीं करते हैं, जबकि हमें भूमि उपचार निश्चित रूप से करना चाहिए। इससे क्या है कि भूमिगत कीड़ों की रोकथाम के लिए बुवाई से पूर्व भूमि उपचार करना आवश्यक होता है, और इसमें जो सबसे बढ़िया जो हम क्यूनाल फॉस 1.5% अथवा मेलाथियन 5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से बुवाई से पूर्व भूमि में मिलाना चाहिए।
1: जी देखो, इसके बाद अगर अपन बात करें अच्छी पैदावार में जो किस्मों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, तो किस्में कौन कौन सी जो हैं जो अपने क्षेत्र में ज़्यादा कारगर हैं?
0: किसान भाइयों, क्षेत्र के हिसाब से क्षेत्रीय जो हम तिल लेते हैं तो उनकी अलग अलग किस्में, उन्नत किस्में हैं, और हम आप लोगों को बतला रहे हैं कि उन्नत किस्मों का प्रयोग करके ही हम पैदावार में बढ़ोतरी हम कर सकते हैं। जैसे हम बात करें RT46 की, RT46 क्या है कि 100 से 125 सेंटीमीटर ऊंची इस किस्म में पत्ती व फली छेदक कीट तथा जो एक गाल मक्खी होती हैं एवं गेमोसिस रोग का प्रकोप न के बराबर होता है इसमें। दूसरा, इसका जो पौधा है वो पौधे में 4 से 6 शाखाएं होती हैं। तो हम दूसरी किस्म लेते हैं प्रताप C50 लेते हैं, इसके साथ ही RT125 होती है, RT127 होती है, प्रगति है, प्रगति का दूसरा नाम MT75 भी है, RT346 है, और इस 346 को हम चेतक के नाम से भी जानते हैं, RT351 भी है। इस तरह से ये उन्नत किस्में हैं, इनका हम
1: किसान भाई अपने हिसाब से चयन करके और बुआई करनी चाहिए। और अगर देखो ये किस्में आपने जो बताई, किस्मों का चयन किसान भाई कर लेगा और उपयुक्त दुकान से, विश्वास पात्र वाली दुकान से उनको खरीदे, तो बीज दर इसमें कितनी होती है और बीज उपचार के लिए क्या है, कौन सी दवा काम में लेते हैं?
0: किसान भाइयों, बीज उपचार का जैसे भूमि उपचार का महत्व है, इसी तरह बीज उपचार का भी एक अपना अलग ही महत्व है। इससे भी रोग है एवं कीट है इनका प्रकोप फसल पर नहीं पड़ता है, इसलिए हमें इनका प्रयोग उपचार के रूप में हम बीज का जो उपचार है, जैसे हम इसमें हम प्रयोग करें बीज उपचार में, तो बीज उपचार में हम FIR का प्रयोग करते हैं, पहले F फिर I इंसेक्टिसाइड का, R का, इस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं। हमें बीज उपचार जैसे क्लोरोपाइरीफॉस वगैरह है दवा से, उनसे हम उपचारित कर लेते हैं।
1: बिल्कुल कर लेना चाहिए। बीज दर की अगर बात करें तो ये प्रति हेक्टर कितना बीज दर उपयुक्त रहता है?
0: किसान भाइयों, बीज दर में किसानों की सोच ये होती है कि हम यदि अधिक बीज डालेंगे तो हमें अधिक पैदावार मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी पर्याप्त होनी चाहिए जिससे पौधा अपना पूरा विकास कर सके। इसके लिए दो से ढाई किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज पर्याप्त मात्रा में रहता है।
1: जी, इसके अलावा इसमें जो मैनुअल जो क्रियाएं होती हैं जैसे निकाई गुड़ाई है और जो सिंचाई है, इनकी क्या, और जैसे उर्वरक की बात करें तो इनकी कितनी मात्रा और कैसे कैसे आवश्यक होती हैं?
0: किसान भाइयों, हम प्राकृतिक खेती जिसको कहते हैं जैविक खेती, इनकी और हमारा रुझान दिन पे दिन बढ़ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार, आज जब हम देखते हैं कि आज का जो मनुष्य है वो दिन पे दिन रोगों से ग्रसित होता जा रहा है, हम अधिक से अधिक इन दवाइयों का प्रयोग करके, यूरिया DAP इनका प्रयोग करके, और हम अपने शरीर को ख़त्म करने जा रहे हैं, एक तरह से रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो इसको ध्यान में होते हुए हमें प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान देना चाहिए। गोबर की खाद है, इनका प्रयोग

0: खेती में हम अधिक उत्पादन, अच्छा उत्पादन और स्वास्थ्य वर्धक तिल का उत्पादन कर सकते हैं
1: जी। निकाई गुड़ाई कितनी आवश्यक होती है इसमें?
0: इसमें निकाई गुड़ाई जो निराई गुड़ाई हम करते हैं किसान भाइयों, वो निराई गुड़ाई एक बार जब फसल अपने तिल की 15 से 20 दिन की हो जाती है तो उसके बाद में एक निराई गुड़ाई कर देते हैं। इससे क्या होता है, जब हम निराई गुड़ाई करते हैं तो उसमें जो हवा का संचार है वो ठीक प्रकार से होता है, जिससे भी पौधे पर बढ़ोतरी में प्रभाव पड़ता है।
1: और देखो, कोई भी फसल हो उसमें जो कीट बीमारी रहती है वो उसके उत्पादन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। सूक्ष्म में थोड़ा इनके कीट बीमारियों के बारे में और थोड़ी जानकारी दें, कौन कौन सी लगती हैं और क्या उनके उपचार हैं?
0: किसान भाइयों, तिल की जो फसल है उसमें हम पौध संरक्षण के रूप में कि पत्ती एवं फली छेदक कीट लग जाता है, गोल मक्खी, सैन्य कीट, होक, मौत, फड़का इत्यादि लग जाता है। बीमारी की बात करें हम तो झुलसा एवं अंगमारी, छाछिया, जड़ एवं तना गलन, पत्तियों के धब्बे और इस तरह से विषाणु रोग, इस तरह से इनको प्रभावित करती हैं।
1: तो कीटनाशी के रूप में कौन सी दवा काम लेते हैं?
0: किसान भाइयों, कीटनाशी के रूप में हम मोनोक्रोटोफास 36 WSC 1 लीटर या क्यूनालफॉस 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टर की दर से फूल वे फली आते समय छिड़काव करें और आवश्यकता अनुसार 15 दिन के अंतर पर भी हम छिड़काव दोहराते रहें
1: जी। तो देखो, ये तो आपने कीट और बीमारी के बारे में बहुत अच्छे से बताया। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इसमें करीब उपज कितनी बैठ जाती है, जिसे किसान भाई अपने जो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करते हैं, इस फसल को लेने में रुचि दिखाएं?
0: किसान भाइयों, यदि हम उन्नत तरीके से तिल की खेती करेंगे तो हमें उपज भी अच्छी मिलती है, जिससे हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा और उत्पादन अच्छा मिलेगा तो हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। तो इसमें जो उपज 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टर तक हम उपज ले लेते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा उत्पादन है, अच्छा बाजार भाव इसका रहता है
0: जी।
1: आप कुछ विशेष संदेश अपने जो किसान भाई जो कार्यक्रम सुने उनको कुछ खेती के बारे में देना चाहेंगे, जिससे उनका तिल का उत्पादन भी अच्छा और उनकी भूमि भी लगातार उत्पादन देने लायक बनी रहे?
0: किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप गर्मी की जो जुताई है उस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, गर्मी की जुताई करनी चाहिए, बीज उपचार करना चाहिए, भूमि उपचार करना चाहिए। तीसरा जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि तिल में प्राकृतिक जो खाद है, जीवांश खाद है, जैविक खाद है, उनका प्रयोग अधिक से अधिक करें। और किसान भाइयों, जैविक उर्वरक की एक योजना भी चला रखी है, जिसमें सरकार द्वारा हमें 10,000 रुपये की सब्सिडी भी देती है। जो हम खाद तैयार करेंगे वो एक तरह से देसी खाद का, अच्छी खाद का, देसी घी के रूप में जैसे काम करता है ऐसे काम करेंगे
1: जी। जी भंकुराम जी, बहुत अच्छी जानकारी अपने आपने किसान भाई दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।
2: तो किसान भाई, अभी आपने सुनी ये भेंटवार्ता तिल की उन्नत खेती, और देखो कितनी अच्छी तरह से श्री मंगतूराम शर्मा जी ने आपको समझाया। तो इस तरह से इन सब विधियों का यदि हम ध्यान रखें और थोड़ा सा परिश्रम, लगन और मेहनत से यदि हम अपनी खेती करें तो निश्चित रूप से हम अच्छा लाभ ले सकते हैं। लेकिन कारण क्या है कि कई बार हम हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाते हैं। हाँ, यदि मान लो आप समय पर मेहनत नहीं करेंगे, जागरूक नहीं बनेंगे, अपनी मिट्टी को समय समय पर यदि मान लो नहीं जाँच करवाएंगे तो खेती हमें कहाँ से सोना उगलेगी। तो खेती से यदि लाभ लेना है तो पहले हमको खुद को भी परिश्रम करना होगा, तभी हमें लाभ मिल सकता है। तो इसलिए सबसे पहली जरूरत है खेती में परिश्रम से पहले जागरूक होने की, कि हमारी मिट्टी की जांच कराएं और क्या कमी है, किस तरह से इससे अच्छा लाभ ले सकते हैं, उनकी पूर्ति करो और उसके बाद में हम कम मेहनत में भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं ये लोक भजन, उठ जाग लखन मेरे वीर।

भगवान कहने लगे, सोते बेते नार जागे होते हैं हजार, पर भाई बार बार नाए भूमि पे मिले। मुहे पापन को मूल, विधि भयो प्रतिकूल न

भगवान कहने लगे, ऐसी जान तो जो भाई काए ठान तो लड़ाई, जाए जग की लुगाई बात कौन हान की, छोटे भाग में लिखायो छोटे भात को गमायो दाग वंश को लगायो।

तो किसान भाइयों, अभी आपने सुना ये लोक भजन उठ जाग लखन मेरे वीर घनश्याम प्रजापत और साथियों का गाया हुआ। आइए चलते हैं अब जानकारी की ओर। मृदा जनित व्याधियों के उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंद का उपयोग करें। देखिए किसान भाइयों, दलहनी तिलहनी सब्जियों, नकदी फसलों जैसे कपास, मूंगफली, चना, जीरा, इन सब में सर्वाधिक नुकसान मृदा जनित कवकों के द्वारा उत्पन्न जड़ गलन, तना गलन, कॉलर रोट एवं उकटा, इन सब रोगों से होता है। इन बीमारियों की रोकथाम की यदि हम बात करें तो उनके लिए बीज उपचार के काम में आने वाले पौध संरक्षण रसायनों से बीज उपचार किया जाना चाहिए।

इसके अंधाधुंध प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण, मनुष्य एवं जीव जंतुओं पर हानिकारक प्रभाव, इन सबके होने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, रासायनिक कवक नाशियों के प्रयोग के दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए फसलों में लगने वाले जड़ गलन, उकटा रोग, तना गलन, इन सब में भूमि जनित फफूंद रोगों की रोकथाम के लिए जैविक दवा ट्राइकोडर्मा नामक जो मित्र फफूंद विकसित की गई है, ये मृदा जनित फफूंद से पैदा होने वाले रोगों के जैविक नियंत्रण में प्रभावकारी भूमिका निभा रही है। ट्राइकोडर्मा की कार्य विधि की यदि हम बात करें तो देखिए, ट्राइकोडर्मा संवर्धन में इस मित्र फफूंद के असंख्य जीवाणु जीवित अवस्था में होते हैं और इससे आसपास इस मित्र फफूंद की भारी संख्या कृत्रिम रूप से निर्मित हो जाती है। और देखिए किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा चूंकि मिट्टी में स्थित रोग उत्पन्न करने वाले हानिकारक कवकों का प्रतिजैविक है, यह उनकी वृद्धि रोक करके उन्हें धीरे धीरे नष्ट करता है, जिससे क्या होता है, यह हानिकारक कवक फसलों की जड़ों को संक्रमित करके रोग उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद के रूप में मृदा में उपस्थित हानिकारक शत्रु फफूंदों से फसलों की रक्षा करता है। और देखिए, ट्राइकोडर्मा संवर्धन के उपचार के गुण और लाभ की यदि हम बात करें तो ट्राइकोडर्मा जो है वो अनेक फसलों में, जैसे कपास हुआ, मूंगफली, चना, सरसों, अरहर, जीरा, इन सब में भूमि जनित फफूंद रोगों जैसे जड़ गलन है, उकटा है, तना गलन, इन रोगों के नियंत्रण में प्रभावी है। और देखिए, जब फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो ऐसी अवस्था में ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंद संवर्ध एक संवर्ध द्वारा मृदा जनित कवक रोगों को जैविक नियंत्रण करना एक संभव होता है। और रासायनिक कवक नाशियों के प्रति रोग उत्पन्न करने वाले हानिकारक फफूंदों में प्रतिरोध उत्पन्न होने की संभावना रहती है। और देखिए, जब ट्राइकोडर्मा के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता, अतः इस ट्राइकोडर्मा के प्रयोग से मृदा जनित कवक रोगों का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। ट्राइकोडर्मा के प्रभाव से किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं होता, अतः पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता। ट्राइकोडर्मा संवर्ध के प्रयोग से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, पौधों का उचित विकास और अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। ट्राइकोडर्मा संवर्ध का उपयोग मनुष्यों, जानवरों, पक्षियों या लाभकारी कीटों के प्रति हानिकारक रहित होता है, यानी किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंच पाती। और देखिए किसान भाइयों, ये वायुमंडलीय नत्रजन स्थिर करने वाले जीवाणु राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और एजोसोपाइरिलियम तथा फास्फेट विलेयक जीवाणु, जिसे हम पीएसबी आधारित संवर्ध कल्चर के साथ में उपचारित योग्य हैं। ट्राइकोडर्मा संवर्ध से उपचार की विशेषताएं की यदि हम बात करें तो सामान्य परिस्थितियों में उपचार द्वारा फसलों की जड़ों के आसपास प्रभावी रूप में स्थापित हो जाने की अपूर्व क्षमता होती है। और देखिए, कवकनाशी पर होने वाले खर्च में बचत होती है और उपचार करना आसान होता है। और किसान भाइयों, देखिए, प्राकृतिक तौर पर यदि हम बात करें तो विखंडित होने योग्य है तथा भूमि जनित कवक रोग के नियंत्रण का एक सस्ता साधन है। उपयोग की विधि की यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है बीज उपचार। भूमि जो जन्य कवक हैं उनसे ग्रसित होने वाली फसलों के उपचारित किए जाने वाले बीज को किसी साफ बर्तन में रखें और बीजों पर थोड़े से पानी के छींटे दें। अब क्या करें, बीजों में 4 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा संवर्ध प्रति किलो बीज की दर से मिला करके और अच्छी तरह से उलट पर उनको करते रहें और सुनिश्चित करें कि संवर्ध की एक समान परत जो है बीजों के चारों ओर चिपक गई है। अब क्या करें, बीज की बुवाई हम कर सकते हैं। जड़ उपचार की बात करें तो एक बर्तन में 5 लीटर पानी लेकर के और उसमें 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा संवर्ध अच्छी तरह से घोल करके मिला दें तथा रोपित की जाने वाली पौधों की जड़ों को इस घोल में 30 मिनट तक डुबो करके रखें, फिर इन पौधों को जो है रोपण करें। घोल की शेष मात्रा को खेत की जो मिट्टी है उसमें हमको मिला देना चाहिए।

0: मृदा उपचार की यदि बात करें तो बुवाई पूर्व आखिरी जुताई से पहले 1 किलो ट्राइकोडर्मा संवर्ध 30 किलो कंपोस्ट अथवा गोबर की खाद में मिला करके प्रति एकड़ खेत की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें और उसके पश्चात ही हमको बुवाई करनी चाहिए। अब बात आती है नर्सरी उपचार की, तो देखिए नर्सरी में बुवाई से पूर्व 5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र की दर से ट्राइकोडर्मा संवर्ध मिट्टी में मिला दें और फिर बुवाई करें। सावधानी हमको क्या रखनी है, देखिए संवर्ध को सीधी धूप व गर्मी से बचा करके छायादार स्थान में भंडारण करें तथा संवर्ध के पैकेट पर अंकित अंतिम तिथि से पूर्व उसका उपयोग करें। बीज को ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंद से उपचारित करने पर उपचार से पहले एवं बाद में किसी भी अन्य बीज उपचार करने वाले कवकनाशी रसायन जैसे थायरम है, बाविस्टिन, मैनकोजेव, इन सबसे बीज को उपचारित नहीं करें। ट्राइकोडर्मा को बीज उपचार एवं भूमि उपचार में अनुमोदित मात्राओं में प्रयोग करें। भूमि उपचार हेतु ट्राइकोडर्मा की निर्धारित मात्रा को गोबर की खाद में मिला दें और जो है इस तरह से आप राज्य की सभी समन्वित कीट प्रबंधन प्रयोगशाला जो है वहाँ पर भी क्या है कि जो मित्र फफूंद है ट्राइकोडर्मा उसका उत्पादन किया जाता है, तो वहाँ से भी आप सलाह ले सकते हैं। तो अपने नज़दीक जो किसान भाई अपने जहाँ भी जो है व्यवस्था है वहाँ जाकर के इसकी जानकारी और ले सकते हैं। आइए अब आज के मौसम की बात करें, तो अधिकतम जो तापमान है वो 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना और न्यूनतम तापमान जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बाजार भाव की यदि बात करें तो देखो गेहूं के जो बाजार भाव रहे वो 2500 रुपये से 2600 रुपये प्रति क्विंटल, चना के भाव रहे 5200 से 5500 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों के भाव रहे 7200 से 7800 रुपये प्रति क्विंटल, ग्वार के जो भाव हैं वो 4700 से 5500 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा के भाव रहे 2000 रुपये से लेकर के 2100 रुपये प्रति क्विंटल, जौ के भाव रहे 2200 रुपये से लेकर 2350 रुपये प्रति क्विंटल। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री नीरज भगत। अब घड़ी की सुई इशारा कर रही है किसान भाइयों आपसे अनुमति लेने का, इसी के साथ अपने भाई शंभू को दीजिए इजाज़त। जय जवान जय किसान।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम भारती, ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है FM 103.1 MHz।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है FM 103.1 MHz पर। संध्या के 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं अनूप घोषाल की आवाज़ में फिल्म मासूम का ये गीत।

अभी आपने सुना पंकज उदास की आवाज में फिल्म नाम का ये गीत, और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर को। फिल्म दुश्मन में सुनते हैं लता मंगेशकर।

लता मंगेशकर और एआर रहमान को अभी आपने सुना फिल्म रंग दे बसंती में, और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं जतिन की आवाज में फिल्म जो जीता वही सिकंदर से।

ये गीत आपने सुना फिल्म जो जीता वही सिकंदर से, और इस गीत को गाया था जतिन ने। और लीजिए आइए सुनते हैं फिल्म रॉक स्टार का ये गीत, और इस गीत को गाया है ए आर रहमान, जावेद अली और श्रेया घोषाल ने।

फिल्म रॉकस्टार के इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।

बंदी जग में रहना है तो काम छोड़ दे चार, चोरी चुगली जामनी मत के पराई ना, चोरी के दे कराई दे चुगली कर दे खुआर, घर लुटवा दे तेरा जामनी और सर कटवा देना। अरे रे सारी दुनिया यो

चले नहीं बिन मोटर के कोई नंगे पैरों भाग रहा। कहीं ढेर पड़े जर जेवर के कोई कर्ज किसी से मांगे रहा। कोई छिड़क किसी पर नीरे रहा, कोई जला किसी पर आगे रहा। कोई धर्म से अपना मुख मोड़े, कोई ढोपा पोंकुर दाबे रहा। कोई सुख की निंदिया सोता है, कोई पड़ा फिकर में जागे रहा। कोई आशा करता महलों

मालिए हेरा मुनियों के मन भाया तू ही हेरा मोहन मालिए जबी तो सारी

कोई शहंशाह बना दिया, कोई टुकड़े मांगे दर दर के, कोई बना दिया बेखौफ खतर, कोई वक्त गुजारे डर डर के, कोई मौज करे कोई पेट भरे अपने सर बोझा धर धर के, कोई देखे किसी को मगन हुआ, कोई मिला खाक में जर जर के, कोई हंसे ठहाका मार मार, कोई

देखा भाड़िए, हेरा तेरी नजर मेरा कुल दुनिया की, हेरा देखा भाड़िए, जबी तो सारी, जबी तो सारी।

मालिक तेरी सानी का दुनिया में दिलावर कोई नहीं। तू माता पिता तू ही स्वामी सखा देख तेरे बराबर कोई नहीं। हर अफसर का तू अफसर है पर तेरा अफसर कोई नहीं। भोजन दे कीड़ी कुंजर को तेरा लगा भंडारा कहीं नहीं। दिन रात न्या

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

क्या कहा है कभी उन्होंने, जरा गौर फरमाए भाई, सत्संगत में जाके रथ होती बातें बढ़ाना ना चाहिए, कहना चाहिए मुक्के यू

सही है होनहार कन्या वर के रे भाई देर लगाना ना चाहिए होनहार कन्या वर के भाई देर लगाना ना चाहिए। वक्त पड़े

सबसे मिलजुल वैरे बढ़ाना ना चाहिए, कड़वा बोल किसी के दिल पे चोट लगाना ना चाहिए। हेरा निर्यपराध

सुनना चाहिए सब लोग। सोता शेर

0: सुनना चाहिए, सब लोगों की शोर मचाना ना चाहिए बिना बुलाए।
1: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है FM 103.1 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या, वे रात्रि के 9:00 अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर-19 और अंडर-23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और

0: फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4N को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है और मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बने।

0: ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
2: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। एआई आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
3: Provisionally, we're looking at a 10% increase.
4: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
3: अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
1: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: नागालैंड के चूमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
6: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर

0: कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जल डमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and US engage for balanced and commercially meaningful trade pact, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, dismisses media reports of deadlock in trade talks. India's total exports jumps over $232 billion, registering growth of 11.37% during first quarter of current fiscal. Former AAP leader Tahir Hussain and 4 others convicted for killing of IB officer during 2020 Delhi riots. The US and Iran exchange another wave of strikes as dispute over control of Strait of Hormuz raises tension in the region. In cricket, India scripts history beating England by 270 runs in first ever women's test at the Lords. And 16 Indian boxers enter finals at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And now the news in detail. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with US Trade Representative Jamieson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. He added that both sides also exchanged views on the India-EU FTA and explored ways to deepen business ties and expand India's commercial engagement with Spain as a valued partner. Mr. Goyal is currently on a five-day

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं शकील बदायूनी। संगीत है रवि का। फिल्म का नाम है घूंघट।

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है काली घटा।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम की अगली पेशकश है मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद का और फिल्म का नाम है उड़न खटोला।
3: चले आज तुम जहां से

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
5: यह है विविध भारती।
6: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्कार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण पर,
1: जिसे दुनिया चंदन टाकू के नाम से जानती है। और चंदन किसी का एहसान अपने सर पर नहीं रखता। मांगो, क्या चाहती हो?
2: मैं जो मांगूंगी वो आप दे सकेंगे?
1: मांग कर देखो, 10, 20, 25, 50 हजार, 1 लाख।
2: मुझे पैसों की जरूरत नहीं। तो आज की कोटी पर पैसा घुंघरुओं के झनकार के साथ बरसता है, जब चाहूं बटोर सकती हूं।
1: फिर क्या चाहिए?
2: इज्जत चाहिए, जो इस बाजार से बहुत दूर है। आप सब जानिए, मैंने आज तक इज्जत का सौदा नहीं किया है। आवाज बेची है, अदाएं बेची है। आप मुझे एक औरत की जिंदगी दे सकते हैं, एक शरीफ घर दे सकते हैं, आप मुझे इस पाप के दलदल से निकाल सकते हैं।
1: तुम में किसी शरीफ का खून है, ये तुम्हारे खून और आत्मा की पुकार है।

0: वायदा करता हूं, जो कुछ तुम मांग रही हो मैं तुम्हें उसी तरह दूंगा जिस तरह एक बाप अपनी बेटी को जहेज देता है। कल सुबह एक शरीफ आदमी तुम्हें लेने आएगा, बेझिझक उसके साथ चले जाना।
1: सन 1940 से सन 2007 तक अभिनय जगत में सक्रिय रहने वाले अभिनेता प्राण केवल सिकंद की गिनती एशिया के 25 सर्वकालिक महान अभिनेताओं में की जाती है। 12 फरवरी सन 1920 को पुरानी दिल्ली में कोटगढ़ बल्लीबारा में जन्म हुआ था प्राण का। उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद पेशे से सिविल इंजीनियर थे। उनकी माताजी का नाम था रामेश्वरी। युवा प्राण एक मेधावी छात्र थे और गणित पर उनका अच्छा अधिकार था। उनकी पढ़ाई देहरादून, कपूरथला, मेरठ, उन्नाव और रामपुर में हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा प्राण दिल्ली की एक फोटोग्राफी कंपनी में अप्रेंटिस हो गए। फोटोग्राफी के सिलसिले में ही प्राण को शिमला जाना पड़ा, जहां उन्होंने रामलीला के मंचन में भाग लिया। उस रामलीला में मदनपुरी राम बने थे और प्राण बने थे सीता, और प्राण ने सीता की भूमिका निभाई थी।
2: आज चाय भजिया कोर्स नहीं मिलेगा, आज दुकान बंद है।
3: दुकान बंद है?
2: किस खुशी में? तुम्हारी खुशी में। तुम खुश तो मैं भी खुश।
3: अरे मैं क्यों खुश भाई?
2: हम जो बनते हो आधी आधी रात को एक सुंदर जवान लड़की को अपने घर में लाते, उससे खुशर फुशर बातें करते, तो पूछते मुझसे हो गए खुशी किस बात की।
3: किसने कहा तुझे ये सब?
2: एक काले कौए ने।
3: काले कौए ने?
2: हाँ, सुबह सुबह आया था। हकलाता जरूर है लेकिन सच्ची बात सुनाता है।
3: साला रामू गुपचुप सब बता गया तुझे?
2: अरे बड़े खुश नसीब। अच्छा ये बताओ कि अब कब इंतजाम करूँ?
3: किस चीज का?
2: अरे पंडित का, मंडप का, ढोल तमाशे का, बाजे का, बारात का।
3: बस बस बस प्यारे भैया, यही तो तुम में एक कमजोरी है।
2: क्या?
3: आम पके नहीं कि सारे मोहल्ले को दावत दे दी।
2: अरे भैया जब आम लगे हैं तो एक दिन पकेंगे भी, एक बार मुझे उससे मिला दो
3: ताकि तू अपनी बड़बड़ शुरू कर दे।
2: अरे भाई तुमने गड़बड़ की है तो मुझे बड़बड़ करनी पड़ेगी। अरे सुन सुन सुनो, गुस्से मत हो, अगर तुम बोलो तो मैं कोश नहीं बोलूंगा।

0: जो करता है पाता है। अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो खुश नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोले।
1: लाहौर की हीरा मंडी में मौजूद एक दुकान पर संयोग वश प्राण की मुलाकात दल सुख पंचोली की यहाँ नौकरी करने वाले फिल्म लेखक वली मोहम्मद वली से हो गई। सन 1940 में आकर्षक कदकाठी के नौजवान प्राण को दल सुख पंचोली की पंजाबी फिल्म यमला जट में नायक की भूमिका मिली। फिल्म यमला जट बहुत कामयाब रही। इस फिल्म में नूरजहां और दुर्गा खोटे ने भी अभिनय किया था। फिल्म के निर्देशक थे मोती बी गिडवानी। इसके बाद 1941 में प्राण साहब ने फिल्म चौधरी और खजांची में भी अभिनय किया। पंचोली आर्ट्स के बैनर तले 1942 में निर्मित खानदान प्राण साहब की पहली हिंदी फिल्म थी।
2: कैदी नंबर 602
3: हाजिर है।
2: सर झुकाकर बात करो।
3: ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब। झुकेगा तो उसकी चौखट पे या उसके दरबार में झुकेगा।
2: बहुत खूब, मैं ऐसे ही सरों की कदर करता हूं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम दूसरी जेलों में करते रहे हो वो मेरी जेल में ना हो। होगा तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि यह हुआ तो क्यों हुआ। मैं तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड पढ़ चुका हूं।
3: तब तो आपको यह भी मालूम होगा जेलर साहब कि हम जिस जेल में जाते हैं वहां का जेलर या तो अपना तबादला करवा लेता है

0: लंबी छुट्टी पे चला जाता है।
1: लेकिन मैं उस किस्म का जेलर नहीं हूँ। मैं ना तो छुट्टी पर जाऊंगा और ना तबादले की दरख्वास्त करूंगा। तुम्हारा वो रिकॉर्ड है तो हमारा भी एक रिकॉर्ड है। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में न जाए। डिसमिस।
2: सन 1942 से 1946 के मध्य प्राण ने पंजाबी की 21 फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। इनमें से 18 फिल्में सन 1947 में रिलीज हुई, लेकिन 1947 में विभाजन के दौरान उनकी अभिनय यात्रा कुछ समय के लिए थम गई। विभाजन के दौरान प्राण मुंबई आ गए और यहां उन्हें अपनी नई पारी शुरू करने के लिए लगभग 8 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी।

0: मुंबई में रहते हुए उन्होंने मरीन ड्राइव के डेलमर होटल में भी काम किया। मुंबई में मशहूर कहानीकार सादत हसन मंटो और अभिनेता श्याम की मदद से उन्हें शाहिद लतीफ की फिल्म जिद्दी में अभिनय की नई पारी शुरू करने का अवसर मिला।
1: मेरे बात करने का तरीका गलत था।

0: का छोड़ो साहेब, बात गलत था। anyway, have a drink. कल का आपका रम हमारे पे उधार है, जरा चुका देगा।
1: नो थैंक यू, मैं सुबह सुबह नहीं पीता।
0: पर हम तो 24 घंटा पीता है साहेब, आप बड़ा लोग तो टाइम टेबल देखकर काम करता है। वेरी क्लेवर यू बिग पीपल, लेट गो। कोई मतलब का बात है, बोलो।
1: आप ही के मतलब की बात है मिस्टर बरगेंद्र। मैं पूछने आया हूँ आपको कितना पैसा चाहिए।
0: हमको कितना पैसा चाहिए, क्या बोला तुम? हम ठीक सुना नहीं।
1: बिल्कुल ठीक सुना है आपने मिस्टर बरगेंद्र। बहुत अच्छे मछेरे हैं आप, अच्छी मछलियां फांस लेते हैं, और इस बार राजा उसमें फंस गया है। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई नुकसान। कहिए क्या कीमत लगाई है मेरे बेटे को आजाद करने की? 30,000, 50,000।
0: पैसा का किताब लेकर आया तुम? मैन तुम वेट, यू वेट मिस्टर नाथ, अभी बताता है तुमको, यू वेट। देखो, लेकिन तुम बड़ालों के पास सिर्फ पैसा है, बंगला है, मोटर है, सिर्फ पैसा है। यू हैव गॉट ओनली मनी, दिल नहीं है। अगर हम छोटालों के पास इज्जत है, दिल है, खुशी है, और ये जो चीज है ना, उसको हम बेचता नहीं है, समझा तुम?
2: बेचता नहीं है, धंधा करवाता है इससे, धंधा।
1: इज्जत की बातें करने वाले अपनी बेटियों का चारा बनाकर करोड़पतियों के बेटों के आगे नहीं डाला करते, समझे?
3: फिल्म जिद्दी में प्राण साहब ने खलनायक की भूमिका निभाई, और इसके बाद ऐसी भूमिकाएं ही प्राण साहब की पहचान बन गई।
4: तू सुना, कॉलेज का क्या हाल है?
5: ठीक ही है, तो कॉलेज के बारे में क्यों पूछने लगा?
4: वो बचपन में तू किसी किताब से कुछ जानवरों की कहानी सुनाया करता था ना,
5: वो हितोपदेश पंचतंत्र में से।
4: हो, कुछ ऐसा ही था। आज उसकी एक कहानी याद आ गई।
5: कौन सी?
4: वो गीदड़ बिल्ली और खरगोश की।
5: हाँ हाँ हाँ,
4: जब गीदड़ और बिल्ली मिलकर खरगोश मारने की कोशिश कर रहे।
5: हाँ हाँ, क्या बात है, दूसरे क्यों देख रहा? कहने का चाहता है
4: यही कि खरगोश अब भी संभल जा, वरना फंस जाएगा। दो दिन पहले धर्मदास के घर गीदड़ और बिल्ली की दोस्ती अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। जिन पर तुझे बहुत विश्वास है ना, जिनको तू अपने घर का समझता है ना, वही सब मिलकर तेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं।
3: करीब 360 फिल्मों में प्राण साहब ने केवल नेगेटिव रोल किया है,

समझने वालों समझ लो, इसमें

0: एक तरफ होते दिलीप कुमार, देव आनंद या राज कपूर हीरो के रूप में, और उतने ही जानदार रोल के रूप में दूसरी तरफ होते प्राण।
1: सच का झूठ और झूठ का सच बना देने वाला एक ही गवाह, वो है गोलू गवाह। हर केस का सुलझाओ मिनटों में। गोलू गवाह की फीस हर के लिए एक ही है। चोरी के इल्जाम में 25 रुपए, एक्सीडेंट में 30 रुपए, डकैती में 75 रुपए, जायदाद मकान में 100 रुपए और खून के इल्जाम में 200 रुपए। वकीलों से परेशान लोगों के लिए ताकीद है कि वो गोलू गवाह से भेंट करे। अरे गीता पर हाथ रखकर झूठी गवाही और झूठी कसम गाना कोई आसान गल नहीं, वो एक ही कर सकता है। और आप लोगों का दोस्त, आप लोग

0: दर्द गोलू गवा। अरे गोलू गवा AWD मतलब एडवोकेट विदाउट डिग्री। कोई ग्राहक आया?
1: आया सेठ रतिराम।
0: आओ सेठ रतिराम, मलंग हमें क्या करना होगा काम?
1: तलाक का है काम, बीवी पर बच्चली का इल्जाम।
2: मुझे बचा ले भाई, शादी करके बड़ा पछता रहा हूँ, राम कसम मुझे बचा ले।
0: अरे सतनाम सेठ, शादी तो होती है बर्बादी, इसीलिए तो हमने अभी तक नहीं की।
2: गुल ये 100 रुपया गवाही के एडवांस है।
0: सेठ आप बस समझ ले कि तुम्हारा हो गया काम, अब इधर और खड़े रहकर हमें ना करो बदनाम। चलो
1: एक नंबर का यहाँ से सेठ।
0: अरे हमें भी तो भरना है अपना पेट।
3: गोलू भैया।
0: अरे ये गोलू भैया की कौन सी पहन आ गई?
3: सेठ रतिराम की बीवी हूँ, 3 बच्चे लेकर कहाँ जाओ? वो किसी लड़की के चक्कर में आके मुझे तलाक देना चाहते हैं।
0: ओ भाई ये हमें नहीं मालूम, हमारा तंदा गवाही देना, तू ज्यादा पैसे दे दे।
3: उन्होंने तो एक पैसा भी नहीं छोड़ा मेरे पास जो मैं वकील कर सकूं।
0: ओ, यही तो मुसीबत है। ये ले फड़ अपने पति के 100 रुपए, पर मैं गवाही उसी की दूंगा।
4: हिंदी सिनेमा का एक पूरा दौर ऐसा रहा जब प्राण साहब की खलनायकी की प्राण प्रतिष्ठा के बिना फिल्म निर्जीव मानी जाती थी। उनका रुतबा एक हीरो जैसा ही था। उस दौर में फिल्मों की शुरुआती नामावली में उनका नाम अलग से यूं दिया जाता, प्राण भारतीय सिनेमा के प्राण बन गए। अपने जानदार अभिनय से उन्होंने अनेक फिल्मों की निर्जीव कहानी में भी प्राण फूंक दिए। सन 1945 में प्राण ने शुक्ला अहलूवालिया से विवाह किया। उनकी 3 संतानें हैं, अरविंद, सुनील और पिंकी। दादा मुनि उर्फ अशोक कुमार प्राण के घनिष्ठ मित्र थे। 1951 से 1987 के मध्य इन दोनों ने 27 फिल्मों में एक साथ काम किया था और इनमें से 20 फिल्में सुपरहिट रही।

0: फिल्मी दुनिया में प्राण साहब के अन्य प्रिय मित्रों के नाम हैं शम्मी कपूर, प्रकाश मेहरा, किशोर कुमार, दिलीप कुमार और मनोज कुमार। अभिनेता, निर्माता, निर्देशक मनोज कुमार की फिल्म उपकार में प्राण ने मलंग बाबा की यादगार भूमिका निभाई।
1: देख लिया भारत, कई बार मैंने तुझसे कहा कि जी भर कर लोगों पर उपकार कर, मगर पहले अपनी सोच। मगर पगले, तू अभी तक इतना भी नहीं समझा कि राम ने हर युग में जन्म लिया मगर लक्ष्मण फिर पैदा नहीं हुआ।

0: जिन दिनों फोटोग्राफर के रूप में नौकरी करते थे उन्हें महीने में 200 रुपए मिलते थे, लेकिन फिल्म यमला जट के लिए उन्होंने ये काम छोड़ दिया। यमला जट में काम करते हुए उन्हें महीने के 50 रुपए मिला करते थे। अभिनेता दिलीप कुमार के साथ प्राण की पहली फिल्म थी आजाद। इसी फिल्म से दोनों गहरे दोस्त बन गए। जिस फिल्म में प्राण साहब ने पहली बार दोहरी भूमिका निभाई वो थी जंगल में मंगल। इसके बाद इंसाफ और खून का रिश्ता में भी उन्होंने दोहरी भूमिकाएं निभाई। प्राण साहब ने तेलुगु और बांग्ला भाषा की फिल्मों में भी काम किया। खलनायक के रूप में उन्होंने अपनी अनेक भूमिकाओं में हास्य का रंग भी डाला। ये फिल्में थीं कश्मीर की गली, पूजा के फूल और हाफ टिकट।
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
2: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया।
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

गोरी ओ गोरी ओ गोरी बड़के बुद्धन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय

0: सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया।
2: प्राण अनेक संस्थाओं से संबद्ध थे, खेलों से उन्हें बहुत लगाव था। बॉम्बे डायनामोस फुटबॉल क्लब से जुड़ी टीम के वो मालिक थे। यादगार अभिनय और सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 2001 में भारत सरकार ने प्राण साहब को पद्म भूषण के अलंकरण से और सन 2013 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 2013 की 12 जुलाई को इस लोक में अपनी अनेक भूमिकाएं निभाकर महायात्रा पर चले गए प्राण। अपनी अनुपस्थिति में वो अपने प्राणवान अभिनय से अपनी उपस्थिति हमेशा बनाए रखेंगे।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

चाहते हैं बसना धड़कते दिल के हर राग में, चाहते हैं छुपना सांसों की झनकार में, झुक जाएंगे दिल की जानिब, तुम पुकारो तो सही।

देखते ही देखते कर देना घायल, अजी ये तो पहली ही मुलाकात है, बातों ही बातों में दिल चुराने का हुनर, वाह इस हुनर की क्या बात है।

खड़ी लेकिन वहाँ कोई और थी इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम हाथ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी मैं इन पे मरता हूँ।

मेरा खुमार इनको भी है, इनके लिए है मोहतरम, छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाथ देखिए साहिबो, वो कोई और थी, और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

हम दोस्तों रुसवा हुए हम दोस्तों इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

उलझन सच बन गया अगर उलझन फिर कहिए जनाबे मन मेरी क्या खता मुझ पर यकीन अब कम सही मैं सादा दिल मुझे जिम सही इनके लिए ऐ मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये

मंजिल तय हुई, हम सफर भी बन गए, पता न चला ये दो दिल कब एक हुए, हमें पता न चला, मगर फिर भी हमारी उल्फत का चर्चा हर जुबां पे है।

देख लो, सोच लो, अब तो संभलना होगा। मिलना है कल तो आज की रात चलना होगा।

मोड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है, वह आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूक वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने

0: निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का

0: के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आगे दीजिए। जय हिंद।